0: कल्पना कह दो, ये सब क्या है? ये एक ही वस्तु के नाम। और इससे जब मिलित होना, और कौन मिलित हुआ? तो कहने लगे आत्मा। अब ये मिलित होना कैसे है? तो ध्यान देना थोड़ा, अज्ञान और ज्ञान दोनों कैसे हैं? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अज्ञान उसका विपरीत, तो दोनों कैसे हैं? विरोधी है। दोनों कैसे हैं? विरोधी। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों कैसे हैं? का विरोधी। और प्रकाश और अंधकार को मिलाना चाहो तो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। प्रकाश और अंधकार दोनों मिलते नहीं, दोनों में दूरी है, लेकिन दूरी होते हुए भी उनमें मिलना है। अब दूरी होते हुए मिलना कैसा? तो यही विलक्षणता। तो वास्तव में ये कभी मिल नहीं सकते, विरोधी धर्म है, लेकिन फिर भी इनके अंतर्गत मिलने की कल्पना की गई। अब कहो कैसे मिलना? तो इसके लिए उदाहरण देते हो ना, कहा किसी को दो चंद्रमा दिखाई देते, तो दो चंद्रमा दिखाई क्यों देते? कहा आंख पर अंगुली लगा ली है तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगे। तो इसका मतलब आंख देख तो रही है, लेकिन देखते हुए भी क्या देखने लगी? जो जैसा नहीं है वैसा। चंद्रमा एक है, लेकिन एक होते हुए उसने क्या देख लिया? कहा दो देख लिए। और यही स्थिति है यहां। अज्ञान जो है उस ज्ञान को जो है आवृत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या कह देते हैं? कहा आवृतम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत्य जंतवा, ये कह देते हो। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया, और ज्ञान आवृत हो गया कहा तो कहा तेन मुह्यंत्य जंतवा, उसके द्वारा जहां आवृतपना है ज्ञान का वहां पर क्या होगा? कहा जंतवा मुह्यंती, वहां पर जंतु जो है वो क्या है? मोह को ही प्राप्त होंगे। और मोह का मतलब क्या है? विपरीत बुद्धि। मोह वैचित्य अर्थ में धातु से ही मोह शब्द बनता, मोह शब्द बनता, मूढ़ शब्द बनता, जिसका अर्थ होता है वैचित्र देखना, विपरीत देखना। तो जहां पर ये स्थिति है तो वहां पर क्या है? तो वहीं पर कह दिया तेन मोहयंत जंतवा। कौन मोहित होते हैं, कौन विपरीत देखते हैं? तो क्या नाम दिया? जंतवा। जंतु किसे कहते? जायते इत जंतु, जिसका जन्म हो, और जिसका जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, ये निश्चित नियम है। तो अब जो है वहां तक तब तक वो जंतु है, ये संकेत कर दिया। और क्यों जंतु है? तो कहा जब तक अज्ञान है, अज्ञान से आवृत। लेकिन ये अज्ञान की आवृतता कह तो दी जाती है समझाने के लिए, लेकिन किस प्रकार की है? तो ठीक जैसे वो चंद्रमा दो नहीं है, लेकिन उसे दो करके देख रहा है ना। तो क्यों देख रहा है? तो वहां अज्ञान जो है ढका हुआ नहीं है, वो ज्ञान ढका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक देश विशेष में, एकांश में क्या है? उस अंगुली का आ जाना हो गया। उस उतने से ही उसने क्या है? विपरीत देखना शुरू कर दिया। तो अज्ञान की वास्तव में कोई सत्ता भी नहीं। अज्ञान को क्या माना जाता? अंधकार की भी कोई सत्ता नहीं कि है। कुछ लोग तो मानते हैं, नीलम है तमस चलती नैया है कादि, कह देते कि अंधकार की भी सत्ता। लेकिन आकाश में जैसे नीलिमा होती, नीलिमा की जैसे आकाश में सत्ता नहीं, वैसे ही लेकिन प्रतीति होती, प्रतीयमान है, लेकिन वास्तव में नीलिमा की कोई सत्ता आकाश में नहीं। ये सब जानते हो, इतना तो समझ लेते हो, क्योंकि आकाश अवकाश रूप है, आकाश शून्य है, रूप से रहत है, और जहां पर रूप नहीं होगा, आकार नहीं होगा, तो वहां कोई रंग चढ़ ही नहीं। तो आकाश में जो नीलिमा की प्रतीति होती है, तो तलमलिनताम इत्यादि करके कह दिया है, बाला तलमलिनताम अध्यस्यन्ति, वहां जो बाल शब्द से कह दिया ज्ञानी लोग जो है तल की मलिनता का ही अध्यास उसमें कर ली थी। अध्यास का मतलब यह तस्मिन तदबुद्धि, जो जैसा नहीं है उसे वैसा देख लेना, ये अध्यास है। तो अब यहां पर संकेत कर रहे हैं कि है नहीं वैसा, लेकिन वैसा समझ लेना, इसी का नाम है अज्ञान। तो अज्ञान की सत्ता है, या यूं कह दें एक अंश विशेष की विस्मृति का नाम ही क्या है, अज्ञान। अब क्या है विस्मृति, तो वस्तु तो है, लेकिन उस वस्तु की विस्मृति हो जाना ही क्या कहलाता है, अज्ञान कहलाता। जैसे वह सच्चित आनंद रूप है, लेकिन आनंद रूप की विस्मृति हो गई, सत्ता की विस्मृति नहीं हुई, चित्त की विस्मृति नहीं हुई, मैं हूं ये तो सभी कहते हैं, लेकिन मैं सुखरूप हूं ये कहने में असमर्थ। तो विस्मृति कितने अंश में, एक अंश। जैसे सूर्य जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, सूर्य को क्या मानते हो, सूर्य रूपी ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और ये भी मानते हो कि पृथ्वी इसका चक्कर लगाती, लेकिन चक्कर लगाते समय, और अंडाकार भी इसे स्वीकार करते हो, चक्कर लगाते समय जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सम्मुख होता है तो उसे क्या कहते हो, का दिन प्रकाशमय, और जो भाग उसका पृष्ठता में चला जाता है तो उसे क्या कहते हो, रात्रि कहते हो। और इसके लिए आप तर्क भी दे देते हो कि भाई आज भारत में दिन है लेकिन अमेरिका में रात्रि है, तो क्यों, अमेरिका भी पृथ्वी पर ही तो विद्यमान है, तो पृथ्वी का भाग उस समय अमेरिका का पृष्ठ भाग में पड़ रहा है इसलिए अंधकार है, और भारत का जो है सम्मुख पड़ रहा है इसलिए वहां दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अंधकार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, यही तो कहोगे, लेकिन सम्मुखता और विमुखता का केवल रूप है, लेकिन फिर भी सूर्य का अभाव नहीं है, और भारत में रात्रि हो गई तो वहां दिन, क्योंकि सूर्य के बगैर प्रकाश तो हो नहीं सकता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन सम्मुखता विमुखता की बात है, विमुखता में ही अंधकार की प्रतीति होती है, और जहां विमुखता नहीं होती है वहां अंधकार की प्रतीति नहीं होती, संकेत किया। इसलिए रामायण में आप लोग पढ़ते हो क्या, सन्मुख होय जीव मोय जब ही है, जन्म कोट अघ नाशे तब, जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने आ जाएगा तो क्या वह अंधकार रहेगा। ऐसे ही जहां पर यह जीव जो अपने को मैं करके जीव रूप से स्वीकार करने वाला है, और वो भी सूर्य रूपी आत्मा के सम्मुख जब हो जाता है, उधर उसकी दृष्टि हो जाती है, तो वहां पर भी अज्ञान नाम की चीज नहीं रहती, ये संकेत। लेकिन जब तक उसकी सम्मुखता पूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं विस्मृति बैठी है, तब तक ये जीव भाव रहता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, यद्यपि अंधकार और प्रकाश दोनों का कभी भी संयोग संबंध संभव है ही नहीं, क्या नहीं है, मिलना संभव नहीं है, संयोग संबंध नहीं है, माने दो पदार्थ सत्ता वाले हों तभी उनका संयोग संबंध हो सकता है, और एक पदार्थ सत्ता वाला एक पदार्थ की सत्ता नहीं है तो संयोग होगा क्या, तो संयोग संबंध नहीं हो, और संयोग संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिलना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो मिले हुए हैं तब ये कहा जाए तो कैसे, एक की सत्ता एक की सत्ता नहीं, तो मिलना कैसा है, तो कहा वो तादात्म्य रूप, तादात्म मतलब अज्ञान से वो माना हुआ। अज्ञान क्या है, तो भ्रांति कहें, अज्ञान कहें, माया कहें, प्रकृति कहें, कल्पना कहें, कुछ भी कहें, तो इससे जो है वो क्या हुआ है, तो कहने लगे वो संबंध वाला मिला हुआ सा प्रतीत हो रहा।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: வாழும் சைவம் தாத்தாவின் அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனை. இதில் நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிம்மாசன பிரிய. வழங்குபவர் சிவலட்சுமி பூவாளர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாயனம்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karma Shaka, Adhyayam 19.
2: Atha Eko Navimsho Dhyayaha
3: Om
2: Imagyastanamurjasvantandhayapam Prapeenamagne Sarirasya Madhye Utsanjushasva Shatadharamarvant Samudri Yajnasadanamavishasva घृतं मे मिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुष्वधमावाहमादयस्वस्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यं समुद्रादूर्मिर्मधूमा उदारदुपाग्यशुन समामृतत्वमानट घृतस्य नाम गह्यं यदस्ति जिह्वा देवानामृतस्य नाभिः वयन्नाम प्रब्रावाम घृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयाम नमोभिः उपब्रह्मा श्रोणवच्छस्य मानं चतुःशृङ्गो वमीद्गौर एतत्।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ब्रह्मण्यै दैत्यद्रुमकुठाराय नमस्ते शूलपाणये महादनुजनाशाय नमस्ते परमेश्वर अम्बिकापतये तुभ्यं नमः सर्वास्त्रधारक नमस्ते पार्वतीनाथ परमात्मन्महेश्वर नीलकंठाय रुद्र।

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्णप्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय ते नमः वामदेवाय रुद्राय तदाप्यपुरुषाय च अघोराय सुसे

वाहिने रक्ष रक्ष महादेव भीतान्न सकलामरान दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः स्तुत्वैवं देवताः सर्वाः नमस्कारं पृथक् पृथक् चक्रुस्ते परम प्रीताः ब्रह्माद्यास्तु सदाशिवं भगवन् देवदेवेश त्रिपुरान्तकशंकर त्वयि भक्तिः परा मेऽस्तु महादेवानपायिनी सर्वदा मेऽस्तु सारथ्यं तव देवेश शंकर अनुकूलो भव विभो सदा त्वं परमेश्वर।

0: अय जगतां पतये नमः त्वयि भक्तिर्दृढा मेऽद्य वर्धमाना भवत्विति हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

अहंकारात् खानिलाग्न्यां बुभूमय शब्दस्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधोप्यनुक्रमात्। तामसिक अहंकार द्वारा त्रिविध अहंकार मैंने बताया, तमोगुण भाव के अंश से, प्रकृति के तमोगुण भाव के अंश से तामसिक अहंकार की उत्पत्ति, तामसिक अहंकार के अंश से आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत यह अपंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। तामसाच्यु अहंकारत खानीलाग्ने अंबुभूमयः, और ये कैसे हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी क्रमशः शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंध्योप्यनुक्रमा। तो उस आकाश में शब्द गुण वाला आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श गुण वाला वायु की उत्पत्ति, रूप गुण वाला तेज की उत्पत्ति, रस गुण वाला जल की उत्पत्ति और गंध गुण वाला पृथ्वी की उत्पत्ति, ये स्व स्व गुण विशिष्ट पंचमहाभूतों की उत्पत्ति तामसिक अहंकार द्वारा संभव है, अकेले ईश्वर द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर में गुण नहीं है। ईश्वर में, परमात्मा में न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्वगुण है। गुण ही नहीं है तो फिर ये तत्त्व गुण वाले भूतों की उत्पत्ति कैसे संभव होगा शुद्ध ईश्वर से, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। इंद्रियाण्यंच विषया भूतान्यपि ते गुणाः देवा सदा शिवश्चेन्द्रो रुद्रो विष्णु चतुर्मुखः। तुम जिसको शिव कह रहे हो वह तो प्रकृति में पहला क्षोभ महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार में तीन गुण विद्यमान हैं, उस तमोगुण के स्पर्श के चलते तमो अंश में जो पुरुष चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा उस तमोगुण के संसर्ग के चलते शिव उत्पन्न होता है। और तुम कहते हो शिव से जगत उत्पन्न होता है, ले जी कहां से आ गया वो शिव है, महातत्व को किसने उत्पन्न किया? महातत्व को तो उत्पन्न किया प्रकृति ने पहले विकार के द्वारा, फिर उस प्रकृति महातत्व ने अहंकार उत्पन्न किया, अहंकार में जो तमो अंश है उस तमो अंश से पंच महाभूत, पांच गुण और साथ ही उस तमोगुण के अंश से शिव उत्पन्न हो गया। ये तो प्रकृति का तीसरा कार्य है जिसको तुम शिव कहते हो, तमोगुण के अंश से शिव होगा तामसिक। और जिसको तुम विष्णु कह रहे हो वह रजोगुण के अंश से उत्पन्न हुआ है, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से शिव, राजसिक अहंकार से विष्णु, नहीं सात्विक अहंकार से विष्णु और राजसिक अहंकार से ब्रह्मा। तो तुम जिसको त्रिदेव बोल रहे हो, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तो प्रकृति का कार्य महतत्व, महतत्व का कार्य त्रिविध अहंकार, उसका कार्य है ये तीन। हा अन्यथा तो तमोगुण हो तो शिव शिव नहीं रहेगा, रजोगुण हो तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहेगा, सत्वगुण हो तो विष्णु विष्णु नहीं रहेगा, और त्रिविध पंचविध आकाश नहीं रहेगा, पंचविध विषय नहीं रहेंगे। देव सदा शिव चेन्द्रो रुद्रो विष्णु चतुर्मुख, इंद्र भी सब उसी से पैदा हुए, ये तो तमोगुण के अंश से। सात्विकाद अहंकारात अंतकरणम इंद्रियम, अब जीव कैसे उत्पन्न हुए, बोले उस सात्विक जो अहंकार, तामसिक अहंकार से तो आकाश आदि शब्द आदि और शिव उत्पन्न हुए।

0: और ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ, तो बोले उसी सात्विक अहंकार से सबसे पहले अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हुए और उसी से ज्ञान इंद्रियां पांच उत्पन्न हुए, उनके विषय तमोगुण से उत्पन्न हुए ज्ञान इंद्रियां के शब्द स्पर्श आदि, और खुद ज्ञान इंद्रिया उन विषय का ग्राहक ज्ञान इंद्रियां सत्वगुण से उत्पन्न हुए। सात्विकात्स्याद अहंकारात् अंतःकरणम् इंद्रियम् मनोबुद्धि अहंकार चित्तकरणमांतरम्। ये चार भेद वाला अंतःकरण उत्पन्न हुआ और उसमें ये साथ साथ ही ये चार धर्म भी उत्पन्न हो गए उसी अंतःकरण में से, संशय। तो सात्विक अहंकार से अंतःकरण पैदा हुआ तो उसी अंतःकरण में संशय भी पैदा हो गया, उसी अंतःकरण में निश्चय भी पैदा हो गया, उसी अंतःकरण में गर्भ भी पैदा हुआ और उसी अंतःकरण में स्मरण भी पैदा हुआ। तो संशय का संबंध अंतःकरण के मन के साथ जोड़ दिया, निश्चय का संबंध अंतःकरण के बुद्धि के साथ जोड़ दिया, गर्भ का संबंध अंतःकरण के अहंकार के साथ जोड़ दिया और स्मरण का संबंध अंतःकरण के चित्त के साथ जोड़कर ये चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के धर्म के रूप में कार्य के रूप में ये संशय निश्चय गर्भ और स्मरण ये उन अंतःकरणों के विषय उत्पन्न हो गए। ये इंद्रियों के विषय नहीं है। इंद्रियों के विषय क्या हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच ज्ञान इंद्रिय का विषय हो गए और अंतःकरण के विषय नहीं है। अंतःकरण के विषय क्या है? तो बोले संशय निश्चय गर्भ और स्मरण। गर्भ माने अभिनिवेश। तो क्या समझता है मुझे? मैंने मास्टरी की है, डॉक्टर किया है, पीएचडी की है, तो मुझे क्या समझता है? इसको कहते हैं गर्भ। यह अंतःकरण के अंतर्गत का अहंकार का कार्य है, अहंकार का विषय है ये। उसी बात को और आगे स्पष्ट करते हैं। श्रोत्र तद्चुषी जिह्वा घ्राण संज्ञानम ज्ञानेन्द्रियम विदु दिग्वात सूर्य वरुणास्ना सत्यो देवता स्मृत। उसी सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय भी उत्पन्न हो गई और उसी सात्विक अहंकार से फिर इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के देवता भी उत्पन्न हो गए। वो देवता क्या है? दिग देवता कान के, वात वायु देवता त्वचा के, सूर्य ये चक्षु के देवता, वरुण जिह्वा के देवता, अश्विनी कुमार ना सत्यु अश्विनी कुमार ये घ्राण के देवता, ये पांच देवता भी किससे उत्पन्न हुए? महातत्व से उत्पन्न हुआ हुआ त्रिविध अहंकार, त्रिविध में से सात्विक अहंकार से विष्णु और उसी सात्विक अहंकार से अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसी सात्विक अहंकार से संशय निश्चय गर्व और स्मरण, उसी सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां और उसी सात्विक अहंकार से उन ज्ञानेन्द्रियों के अधिदेवता पांच अधिदेवता ये भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। राजसात शिव अहंकारात् कर्मेन्द्रिय समीरिणः। अब तीसरा जो अहंकार है राजसिक अहंकार, उससे पांच कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हुए और पांच समीर उत्पन्न हुए, वायु पंचवायु उत्पन्न हुए। देखो सृष्टि में यही तो सब है, इसके अलावा और क्या है? बोलो, सभी आ गए कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए उस सृष्टि में, उसी में आ गए पृथ्वी वायु तेज और आकाश आ गए, उसी के अंतर्गत आ गए और उसी के अंतर्गत ये अंतःकरण आ गए, उसी के अंतर्गत अंतःकरण के विषय आ गए। उसी में आ गए ये सब देवता आ गए, इंद्रियां आ गई, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच प्राण, और क्या चाहिए जगत में, यही तो जगत है ये सब के सब। कर्म इंद्रियाणि वाक्पाणि पादपायोपस्थकम् प्राणोपान समानश्चोदानव्यानौ च वायवः भूतैस्तु पञ्चभिप्राणैश्चतुर्दशभिरिन्द्रियैः चतुर्विंशति तत्त्वानि सांख्यशास्त्रविदो विदुः। ये सब मिलाकर कार्य कारण पुरुष सबको मिलाकर ये 24 वस्तु ये जगत के पहले ये थे और अभी भी यही हैं, और ये जगत का मतलब है कि यही 24 वस्तु के अंतर्वाती हैं। ये चतुर्विश संख्या तत्व के रूप में मानने वाले होने के कारण, संख्या के रूप में मानने के कारण उनको सांख्य कहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी इसके बारे में कहते हैं आगे, ये श्लोक का अब अर्थ है, वेदांती अब उत्तर दे रहे हैं। अरे भाई तुम जिसको ये सब प्रक्रिया से बता रहे हो तुम सुन लो। सर्वे विकल्पा प्रागासन बीज अंकुर इवात्मनि। तुमने जितनी विकल्प हैं के सामने रखी, पुरुष प्रकृति, पुरुष का प्रकृति में प्रतिबिंब से महतत्व, महतत्व के विकार से त्रिविध अहंकार, तामसिक अहंकार से आकाश आदि पंचभूत, तामसिक अहंकार से शिव रुद्र, सात्विक अहंकार से अंतकरण चतुष्टय, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, सात्विक अहंकार से उन इंद्रियों के अधिदेवता, राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, उसी राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों के अधिदेवता, उसी राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों के कर्म आदान गमन विसर्जन बदन, ये कर्म विषय, और उसी से पंच प्राण। ये जो कुछ विकल्प तुमने बताई है ये सारे के सारे विकल्प उसी सजातीय विजातीय सुगत भेदत्रय शून्य एक शुद्ध ईश्वर में पहले से ही विद्यमान थे। लेकिन कैसे थे? बीजस्यांतरिवांकुरो, ये बीज से पहला अंकुर उत्पन्न हुआ। सांख्यों की प्रक्रिया यही ना है, जैसे पहले से बीज से पहले क्या उत्पन्न होगा? अंकुर, और फिर उस अंकुर से क्या उत्पन्न होगा? 2 पत्ते, फिर कालांतर में 2 के जगह 4 पत्ते, 4 के जगह 8 पत्ते, 8 के जगह 10 पत्ते, पत्तों में वो अंकुर बढ़ता जाएगा, फिर कालांतर में उन पत्तों की जड़ों में से फिर शाखाएं उत्पन्न होंगे, और शाखा के बाद फिर उपशाखाएं उत्पन्न होंगे, उसी में से हजारों पत्ते उत्पन्न होंगे, उसी में से हजारों उपशाखाएं उत्पन्न होंगे, और उसी में से हजारों फल लगेंगे, हजारों फूल लगेंगे। ये सब के सब का कारण एक ही है, बीज। लेकिन बीजावस्था में ये सारा का सारा वृक्ष अपने नाम रूप विकल्प के रूप में नहीं था, अविकल्प के रूप में था, विकल्प के रूप में नहीं था लेकिन अविकल्प के रूप में था। यदि बीज में वृक्ष अविकल्प के रूप में न होता, विकल्प के रूप में रहता है कहोगे, तो इतना छोटा सा बट बीज के अंदर इतना बड़ा बट वृक्ष का विकल्प कैसे समाएगा? तो विकल्प के रूप में तो नहीं, विकल्प शब्द का अर्थ जान समझ रहे हो ना, नाम और रूप, पत्ता एक नाम, पत्ता का रूप, इसलिए शाखा एक नाम, शाखा का रूप, फल एक नाम, फल का रूप, फूल एक नाम, फूल का रूप, ये नाम और रूप को विकल्प कहते हैं। जहां नाम और रूप व्यक्त नहीं हुआ है वहां निर्विकल्प कहते हैं। ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा में ये जगत किस रूप में था? निर्विकल्प के रूप में था, विकल्प के रूप में नहीं था। और विकल्प वही होता है जहां एक से दूसरा होता है, एक की अपेक्षा दूसरा होता है तो वहां विकल्प होता है, और जहां एक की अपेक्षा दूसरा है ही नहीं तो वो क्या हो गया? निर्विकल्प। निर्विकल्प हो गया, वस्तु एक ही है तो वहां निर्विकल्प हो गया, विकल्प उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई समानांतर नहीं है, उसका कोई सजातीय नहीं है, कोई उसका विजातीय नहीं है, कोई उसका स्वगत नहीं है, तो वो हो गया क्या? निर्विकल्प। जैसे आप अकेले हैं कमरे में, उस कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं है, तो आप अकेले होने पर भी आप अकेले नहीं हैं, आप में स्वगत भेद विद्यमान है। आप में स्वगत भेद क्या है? आपका सिर है, सिर से भिन्न हाथ है, हाथ से भिन्न सिर है, ये एक ही में होने वाला ये विकल्प है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? स्वगत भेद। एक ही में भिन्नता सिद्ध होता है जहां, उसको स्वगत भेद कहते हैं। हाथ से सिर अलग, सिर से हाथ अलग, कान से नाक अलग, नाक से कान अलग, कान से हाथ और सिर अलग, कान से सिर और हाथ अलग, कान से नाक सिर हाथ मुख अलग। ये क्या है? ये कई में होने वाले भिन्नता को स्वगत भेद कहते हैं। क्या सृष्टि से पहले यानी वृक्ष उत्पन्न होने से पहले उसी बीज में इस प्रकार के शाखा पत्ते फूल है, धड़ फल ये अलग अलग उसी बीज के अंदर विद्यमान थे स्वगत भेद के रूप में? स्वगत भेद के रूप में न होने के कारण उनको कहा निर्विकल्प। स्वगत भेद के रूप में होता तो सभी कल्प ही होता, निर्विकल्प नहीं होता। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम् प्राक निर्विकल्पम पुनः इदम् जगत। इस समय अलग अलग नाम रूप आदि के विकल्पों के रूप में प्रतीत होता हुआ ये जगत, इस रूप में प्रतीत होने से पहले ये कहां था? तो परमात्मा में इन विकल्पों से रहित था। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध एक परमात्मा था, स्वगत विजातीय और सजातीय भेद से रहित था। परमात्मा परमात्मा दो परमात्मा होते तो वहां कौन सा भेद माना जाता है? सजातीय भेद माना जाता। जैसे अभी सजातीय भेद यहां विद्यमान है, मनुष्य मनुष्य में एक से दूसरे की भिन्नता, इसको क्या बोलते हैं? सजातीय भेद। और मनुष्य और कुर्सी में एक दूसरे में भिन्नता, ये कौन सा भेद मानते हैं? विजातीय। कुर्सी भिन्न है, मनुष्य भिन्न है, कुर्सी कुर्सियों में जो भिन्नता है, एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी की भिन्नता सजातीय भिन्नता। एक ही कुर्सी में हत्था, उसके टांग, उसकी हत्था, उसके पीछे का पीठ का, ये क्या है? स्वगत भेद। ये देख लो, एक ही कुर्सी में हत्था अलग है हाथ रखने वाला, और उस कुर्सी के चार टांग अलग हैं, चारों टांगों में से भी चार अलग अलग हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्वगत भेद। ये कुर्सी अकेले रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, और कुर्सियों के साथ रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, अन्य मनुष्यों के साथ रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, तो वह सावयव होने के कारण, सापेक्षित होने के कारण यह निर्विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कुर्सी है अभी स्वगत भेद के रूप में प्रतीत होने वाला कुर्सी मूल पेड़ में जिस समय यह लकड़ी के रूप में था, क्या यह कुर्सी स्वगत भेद के रूप में था वहां? है? टांग अलग, हत्था अलग, पीठ का अलग, इस रूप में था? है? तो वो क्या वहां कुर्सी वो कुन रूप किस रूप में था? निर्विकल्प के रूप में था। यदि कुर्सी उस पेड़ में न होता तो फिर उस पेड़ से कुर्सी न बनती। पानी में कुर्सी निर्विकल्प रूप में था कि नहीं, बोलो? पानी में कुर्सी निर्विकल्प के रूप में था कि नहीं था? तो फिर पानी में से लकड़ी निकालो, लकड़ी में से कुर्सी बना लो। अब उसकी पानी में निर्विकल्प कुर्सी था तो उसको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पानी को जमीन में लगाओ, उसमें बीज डालो। अरे बाबा, वो सब पानी से नहीं बीज से उत्पन्न हुआ है। हर कार्य अपने कारण में निर्विकल्प के रूप में रहता है। हर कार्य अपने कारण में रहता है, लेकिन निर्विकल्पक में रूप में रहने के कारण द्वैत सिद्ध नहीं होता, ये ध्यान लेना। सांख्य दो कारण को मानते हैं, वेदांत एक कारण को मानता है, और एक कारण को मानने के कारण कार्य कारण में पहले से रहता है। जैसे तेल तिल में पहले से रहता है, तेल सरसों में पहले से रहता है, तभी उस सरसों को तिल को फेलने के बाद तेल प्रकट होता है। प्रकट होने से पहले वहां अव्यक्त रूप में था, प्रकट हो गया तो व्यक्त हो गया। कुर्सी लकड़ी में अव्यक्त था, निर्विकल्प था, लकड़ी से कुर्सी व्यक्त हो गया, सविकल्प हो गया। तो सविकल्प और निर्विकल्प ये दो अवस्था हैं पदार्थों की। कार्य के रूप में सविकल्प के रूप में प्रतीत होता है, वही पदार्थ कारण में निर्विकल्प के रूप में रहता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे पूरा का पूरा वट वृक्ष छोटे से वट बीज के अंदर निर्विकल्प के रूप में संस्कार के रूप में रहता है, बीज मात्र रहता है, और उसी बीज में से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से सारा का सारा वृक्ष प्रकट होता है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में एकमात्र सदाशिव परब्रह्म परमात्मा सजातीय विजातीय स्वगत विकल्प रहित था, और वो परमात्मा में से ये जगत अंकुर की तरह पैदा हो गया और इस जगत वृक्ष के रूप में दिख रहा है। इसलिए गीता में जगत को वृक्ष का ऊर्ध्वमूल मदस्सा का अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद सवेदवित्। आगे मूल वेदांत के हिसाब से अब इस श्लोक का विचार करेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kulachirai Nayanar, presented by Singapore Shankaran Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhaktam, abhi hum sunenge aur ek sant ya Nayanmar ki kahani jinka naam Kulachiraiya tha. Tirugyan Sambandar ke yug mein Nindrasit Nedumaran पांडेराज के शासक थे। वे कून पांड्यन के नाम से भी विख्यात थे। कई महत्वपूर्ण युद्धों में कून पांड्यन का साथ देकर उन्हें विजयश्री दिलाने का श्रेय उनके अमात्य कुलचिरैयार का था। राजा स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे, पर कुलचिरैयार शैव धर्म में स्थिर रहे। यही नहीं, उन्होंने चोल भूमि से तिरुज्ञान संबंधर को आमंत्रित करके पांड्य देश में शिव भक्ति के प्रचार का सराहनीय कार्य किया था। पांड्य देश में मनमेरपुरी नामक गांव में कुलचिरैयार का जन्म हुआ था। शिव भक्त चाहे किसी जाति कुल या अथवा कुल विहीन क्यों न हो, उनकी आराधना शिव रूप में ही वे करते थे। भक्त अकेले आए या मंडली में आए, उनका आदरपूर्वक सत्कार करना, भोजन कराना और साधुओं की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं देकर विदा करना उनका नियमित कार्य था। पांडे रानी मंगेर करसी को शैव धर्म के पालन करने में और उसका संवर्धन करने में पूरा सहयोग अमात्य कुलचिरैयार ने प्रदान किया। 7वीं शताब्दी के तमिलनाडु की यह कथा उस युग के इतिहास पर प्रकाश डालती है। इंसीरर नेडुमरन अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। पल्लव राजाओं के बाद सारे तमिलनाडु को एक छत्र के नीचे लाने का गौरव उन्हें ही प्राप्त हुआ, परंतु राजा जैन धर्म को पालन करने वाले थे। अतः पांड्य देश के लोग भी जैन धर्म स्वीकार करने लगे थे। शैव धर्म में पूरी निष्ठा से युक्त कुलचिरैयार नेडुमरन के प्रधान आमंत्रित थे, पर नरेश ने अपने आमंत्रित को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। राजनीति में नेडुमरन धार्मिक दृष्टि से उदार थे। वे जानते थे कि आमंत्रित कुलचिरैयार और रानी मंगईकरसी द्वारा शैव धर्म के प्रचारक तिरुज्ञान संबंधर को आमंत्रित किया है ताकि शैव धर्म का प्रसार हो सके, परंतु उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। आज की स्थिति भिन्न है। लोग सत्ताधारी के स्वर में स्वर मिलाते हैं, अतः सत्य का धर्म का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। कुलचिरैयार का जीवन उच्च आदर्शों से युक्त और अनुकरणीय है, इसी कारण उन्हें नायनमारों की श्रेणी में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Perumalai Kurumba Nayanar, presented by Singapore Shankaran Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek dakshin bharatiya santiya Nayanmar ki kahani jinka naam Perumalai Kurumbar hai. Tamil Nadu ke Mellai pradesh ki rajdhani Perumalai nagari mein ek dhani vyakti rehta tha jiska naam Kurumbar tha. Unki nishtha santon aur shiv bhakton ke seva mein thi. Bade prem se unka aadar satkar karna, prem purvak bhojan karana, जाते समय दान दक्षिणा देकर विदा करना उनका प्रतिदिन का व्यवहार था। इसमें उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था। एक बार कुरुम्बर ने नंबी आरोह की योग सिद्धियों के विषय में सुनकर उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया। सुंदर मूर्ति संत या नायनमार को ही नंबी आरोह कहा गया है। दर्शन करते ही उनका हृदय ऐसा विभोर हुआ कि कुरुम्बर ने उसी क्षण उन्हें गुरु धारण कर लिया और उनके नाम को ही तारक मंत्र मानकर योग साधना का मार्ग ग्रहण किया। दृढ़ विश्वास पूर्वक गुरु के पवित्र नाम को ही ईश्वर साधना के मार्ग में ग्रहण करके कुरुम्बर को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो गईं। एक दिन कुरुम्बर को अपनी योग सिद्धि द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके गुरु नंबी आरूर कैलाश यात्रा पर प्रस्थान कर चुके हैं, अर्थात उन्होंने देह त्याग दी है। कुरुम्बर ने विचार किया, गुरुदेव कैलाश की ओर चले गए, गुरु के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, पुतली के बिना आंख का क्या प्रयोजन है। स्वयं भी कैलाश जाने का निश्चय किया। उसी समय ध्यान समाधि में बैठ गए, अपनी जीवात्मा को योग साधना द्वारा कपाल के ब्रह्म रंध्र से बाहर निकाला और गुरु से पहले कैलाश पहुंचे। पेरिय पुराणम में सामान्यतः ऐसे संतों का वर्णन है जो किसी सिद्धांत या परंपरा को अपना जीवन लक्ष्य बनाकर उसका पालन दृढ़ता पूर्वक करते हैं। कुरुम्बर और तिरुमलर दो संत इसके अपवाद हैं। कुरुम्बर ने सुंदर के नंबियारूढ़ नाम को ही तारक मंत्र के रूप में धारण करके योग साधना की और दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की। आजकल शून्य में हाथ हिलाकर विभूत सेब या घड़ी निकालने के चमत्कार को ही ब्रह्मवश सिद्धि माना गया है। यह तो यक्षिणी विद्या है, इनका अष्ट सिद्धियों अनिमा लघिमा महिमा आदि से कोई संबंध नहीं। जिनके पास ये सिद्धियां आ जाती हैं, वे साधारण जादूगरों की तरह उनका प्रदर्शन नहीं करते। अत्यंत आवश्यक होने पर ही लोक कल्याण की भावना से वे इनका प्रयोग करते हैं। योग समाधि में बैठकर कुंडलिनी को जगाकर अपनी जीवात्मा को सहस्रार में ले आना और कपाल वेदन करके इच्छानुसार देह त्याग करना योगियों के लिए एक संभव क्रिया है। कुरुम्बर ने निष्काम भाव से एकाग्रचित्त होकर मंत्र का निरंतर जाप करके योग के मार्ग में सफलता प्राप्त की। वडलोर के ज्योति उपासक रामलिंग स्वामी का कथन है कि भूखे को अन्न खिलाना, शाकाहारी होना, किसी जीव को हिंसा न करना, इन व्रतों का पालन करते हुए जीवन को योगमय बनाने से किसी भी स्थिति में ईश्वर के चरणों को प्राप्त किया जा सकता है।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Dhyaya Nityam Mahesham Rajat Girinivam Charu Chandravatansam रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणेर व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथशिष्यं श्री शंकराचार्यमतास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सुमार्दधारिणे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

चंद्र से खर रक्षमा चंद्र से खर रक्षमा चंद्र से खर रक्षमा ओम ओम ओम प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस विषय पर प्रवचन चल रहा है। अभ्यास के लिए 87वां श्लोक 87 असनम गरलम फणीकलापो वसनम चर्म च वाहनम महोक्ष मम दास्यसि किम् किमस्ति संभो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि यदा कृताम्भो निदिशेदु वन्दन करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानि ते लंघित पद्म संभवस् तदा शिवार्चास् तव भावनक्षमः नतिभिर्नुतिभिस्त्वमीश पूजा विधिभिर्ध्यानसमाधिभिर्न तुष्ट धनुषा मुसलेन चास्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि शम्भो अहमुद्योगविदासुते प्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे

0: அசனம் கரலம் பணிகலாபோ வசனம் சர்மச்ச வாஹனம் மோக்ஷ மமதாஸ்ய சிக்கிம் கிமஸ்தி சம்போ தவ பாதாம்புஜ பக்திமேவ தேஹி சிவானந்த லஹரி மே பஹுத் சே அன்மோல் ரத்ன ஹை. உன் ரத்னோ மே சே ஏக் யே பி ஹை, யே ஸ்லோக் பி ஹை, ஜோ முஜே பஹுத் ஹி அச்சா லக்தா ஹை. ஏகோ பாரி ஜபாந்தவா சிரி நவோ வியாப்தம் தமோ மண்டலம், படா ஹி சுந்தர் ஸ்லோக் ஹை. ஐசே ஐசே பஹுத் சே ஸ்லோக் ஹை ஜோ சாதக் சிவ பக்த நித்ய நிரந்தர் குன்குனாத்தே ரஹ சக்தே ஹை, ரஹனா சாஹியே. பகவான் சங்கராச்சாரிய ஜி இஸ் ஸ்லோக் கே த்வாரா பகவான் சிவ சே கஹ ரஹே ஹை, மானோ கே மஹாராஜ் மே ஆப்கி பக்தி கர் ரஹா ஹூ, ஔர் உஸ் பக்தி கி பதௌலத் சன்சார் மே பஹுத் குச் பானி கி ஆசா நீ ரக் சக்தா. சன்சாரி லோக் ஆசா கர்தே ஹை, லேக்கின் மே உன் சன்சாரியோ மே சே நஹீ ஹூ ஜோ ஆப்கி பக்தி கி பதௌலத் குச் பானா சாஹதே ஹை. குச் விரோதாபாசி ஸ்லோக ஹை இஸ்மே, இஸ் ஸ்தோத்ர மே. பஹலே தோ கஹா கி மஹாராஜ் ஆப் அப்னே பக்தோ கோ க்யா நஹீ தே சக்தே. பஹுத் குச் தே சக்தே ஹோ, க்யோங்கி ஆப்கே பாஸ் பஹுத் குச் ஹை தேனே கே லியே. கிசி சீஸ் கி கமி நீ ஹை. ஷாய் இசி ஆசா சே சபி லோக் ஆப்கி ஆராதனா கர்தே ஹை, ஆப்கி பக்தி கர்தே ஹை. அப் இஸ் ஸ்லோக் சே சங்கராச்சாரிய கேதே ஹை ஆப்கே பாஸ் தேனே கே லியே ஹை க்யா, குச் பி நீ ஹை. ஆப்கி பக்தி கர்க்கே லோகோ கோ மிலேகா க்யா, குச் நீ மிலேகா, குச் ஹோ தப் ந மிலே. யே விரோதாபாசி ஸ்லோக் ஹை. இஸ்ஸே பஹலே ஜோ ஸ்லோக் ஹை, சத்தாயிஸ்வா ஸ்லோக், உஸ்மே குச் ஐசே பாவ வியக்த கியா ஹை கி ஆப்கே பாஸ் பஹுத் குச் ஹை. கரஸ்தே ஹே மாத்ரவ் சத்தாயிஸ், உஸ்மே நீ ஹை, மே ஆப்கோ பதா. யே சிவானந்த லஹரி கை ஹை, வோ தோ தீன் சால் பஹலே இஸ்கி வியாக்யா ஹோ சுகி ஹை, கேசட் சுன் லேனா. கரஸ்தே ஹே மாத்ரவ் கிரிசா, சம்போதன ஹே கிரிசா, ஹே கிரிசா, கரஸ்தே ஹே மாத்ரவ் நிகடஸ்தே தனபதவ் है। सोने का पहाड़ तो आपके हाथों में ही है, हेमाद्र हेम माने सुवर्ण, तो सोने का हिमाल देखने की इच्छा हो तो नेपाल आ जाओ ना। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, अब अक्टूबर के बाद फरवरी मार्च तक सुबह और शाम दोनों टाइम आपको सोने का हिमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह जो सनराइज होता है तो सूर्य का जब प्रथम किरण उस हिमालय में पड़ता है, सफेद हिमालय में नवोदित भगवान सूर्य का जब किरण पड़ता है तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सोने का पहाड़ खड़ा है, बड़ा ही मोहक होता है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर आते जाते हैं तो वह हिमाल फिर चांदी में बदल जाता है। रजतगिरि निभम चारुचंद्रावतंसम, बाद में रजतगिरि हो जाता है, पहले हेमाद्री सोने का होता है, बाद में फिर चांदी का होता है, दिन भर चांदी का रहता है। जब शाम को सूर्य अस्ताचल को जाने लगते हैं सनसेट, उसके अंतिम किरण फिर वो हिमालय में पड़ते हैं, फिर सोने का हो जाता है, वो बिल्कुल गोल्डन सुवर्णमय, क्या मोहक हो जाता है और पूरी तरह सूर्यास्त हो जाने के बाद वह फिर हिमालय लोहे के रूप में बदल जाता है। रात भर अंधकार के अंदर ढका रहता है, दिन भर चांदी, रात भर लोहा, लेकिन बीच में 10 मिनट के लिए सुबह, 10 मिनट के लिए शाम को, खाली 10 मिनट भी नहीं, 10 मान लो 10-12 मिनट के लिए बिल्कुल गोल्डन है, इतना क्या मोहक हो जाता है। आपको फ्री दिखा देंगे, आप आइए। उस बात को शंकराचार्य जी संकेत कर रहा है, आश्रम के तरफ से आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, हर चीज की सुविधा वहां मिलेगी। अब आप अपने आप से दुखी हो जाएं तो भगवान जाने, आप अपने घुटनों से दुखी हो, अपने कमर से दुखी हो, अपने पेट से दुखी हो, अपने सिर से दुखी हो, तो उसका तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, है ना? बाकी जो व्यवस्था की दृष्टि से आपको गर्म पानी मिलेगा, है, टॉयलेट बाथरूम अटैच कमरे मिलेंगे, है, भोजन बढ़िया मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्जी वेजिटेबल फूड सब ऑर्गेनिक मिलेगा, और बढ़िया हवा पानी, बापा, चारों तरफ रुद्राक्ष का जंगल है, 500 पेड़ हैं रुद्राक्ष के, क्या शिवमय रुद्रवन है, रुद्रवन उसके बीच में आश्रम है, न कुत्ते हैं न कुक्कुड़ हैं वहां, है? क्योंकि चोटी पर खाली आश्रम ही है, कोई बस्ती है ही नहीं आसपास में, बस्ती न होने से न मुर्गे हैं न कुत्ते हैं, पक्षी कलरव क्या कोयल है, बढ़िया सुंदर है। प्रसंग क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं, करस्थे हेमाद्रव, सोने का पहाड़ तो आपके हाथ में है, और निकटस्थे धनपतव, कुबेर तो आपके नजदीक हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो आप क्या नहीं दे सकते हो भक्तों को, बोलो। इसीलिए सारी दुनिया आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि आप सबको देते हो, लुटाते हो। गृहस्थे स्वरभूजाम अमर सुर भी ही, स्वरभूजाम अमर सुर भी भूजा भू जा स्वर भूजा स्वर्ग का वृक्ष, भू माने पृथ्वी, भू से उत्पन्न हुए कौन, वृक्ष, तो वृक्ष का नाम क्या है, भूजा, भू तस्मात जात इति भूजा, कौन सा वृक्ष, स्वर भूजा, कल्प वृक्ष तो आपके घर में ही है, क्या कमी है उनके पास। जिसके आंगन में गृहस्थे, घर के आंगन में ही कल्प वृक्ष खड़ा हो, तो दुनिया को क्या नहीं दे सकता है वो, बोलो, उसके पास किस चीज की कमी रहेगी। गृहस्थे स्वरभूजाम अमर सुर भी ही, और देवताओं की गाय अमर सुर भी, देवताओं की गाय, देवताओं की गाय का मतलब कामधेनु जी, अमर सुर भी, और साथ ही चिंतामणि गणे, जो चिंतन करो वो उपस्थित हो जाए, चिंतामणि, चिंतामणि का तो आपके खड़ा हूं है, बोलो। अब क्या नहीं दे सकते आप, बोलिए। शिरस्ते सीतांशौ, देख लो, अमृत तो आपके मस्तक में ही पड़ा हुआ है, चरण युगल थे अखिल सुबह, संसार में जितनी भी शुभ और मंगलमय वो सब के सब आपके चरण में बैठे हैं। जब ये सारी चीज संपदा आपके पास है, तो आप दुनिया को देने में कंजूस क्यों करते हो, हैं?
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: ये कुछ भक्ति या सत्संग में जाना था, दर्शन के लिए जाना था, और यहां मां कहती है कि मैं नहीं जाने दूंगी. और प्रचंड क्रोध आया. इतने बालक के लिए वो क्रोध बराबर नहीं था, क्योंकि ये बड़े लोगों को ही इतना क्रोध आ सकता है, पर ये बालक का क्रोध कुछ ज्यादा ही था. और वो क्रोध उनकी मां कुएं में से पानी निकाल के 2-3 घड़े पानी उनके सर पे डालती थी, तब भी क्रोध शांत होता था. तो हमेशा वो मां बोलती रहती थी कि नक्की ये शिवजी ने, मैं मांगने को गई तो एक कोई भूत पिशाच कोई ऐसा लेके मेरी झोली में डाल दिया है. पर समझना कि ये जो हम भूत पिशाच भी शिवजी की डोली में से कोई डाल दिया ना, शिवजी ने अगर ये भूत दे दिया तो वो बनेगा ना विवेकानंद. इतना याद रखना. तो वो बात याद आ गई कि ऐसा निश्चित होगा. तो देखिए, भूत प्रेत बनना, प्रेत योनि यानी कुछ योनि का ठिकाना नहीं बना है, कोई जगह पे ठहर नहीं सकते. तो कहीं भी ऐसा अमंगल कर्म हो गए कि अगर प्रेत योनि भी हमें मिल जाए, हाँ अतिशय पाप हो तो प्रेत योनि भी मिल जाए, तो भी एक बार भी ये जीवन में शिव का नाम ले लिया तो जाएंगे कहाँ हम? हाँ, जाएंगे वो शिव जी के है पास. कोई ऐसा है जो ये भूत प्रेत को भी रखता है, त्याज्य को भी रखता है, अमंगल को भी, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत से मेरा अमंगल होगा ऐसा डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो आत्मतत्व, वो खुद वो आत्मतत्व है. इसी प्रकार आप मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो शिव तत्व हूँ ऐसा जान लेंगे. ये जो शिव है वो आपके भीतर ही है ऐसा जब आप जान लेंगे, तब आपके लिए कोई भूत, कोई पिशाच, कोई अमंगल, कोई दाएं से जाओ बाएं से जाओ छुओ मत ऐसा करो, ये सब कुछ ठहर जाएगा, रुक जाएगा. ये सब गलत है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ. मैं आपका उपहास करना नहीं चाहती हूँ, आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, पर इससे भी ऊपर कुछ है जो आपको प्राप्त करना है. इसमें जो समय जाता है वो समय शिवजी परमात्मा का नाम लेने के लिए उपयोग करो. इसीलिए ये जो साधना है उसमें हमें बार बार आपको थोड़ा सतर्क करना पड़ता है. तो कहे कि भूत प्रेतों की सोबत है और आप लगाते क्या है मेकअप? भाई मेकअप हम ही नहीं करते खाली, हाँ हाँ शिवजी भी लगाते हैं. क्या लगाते हैं? वो बोले भस्म है. भस्म का लेप करना वो आपका शौक है. भस्म या देखिए भस्म ये वासना का प्रतीक है. क्या ये शरीर मन बुद्धि का संघात, और वो भस्मीभूत हो जाता है स्मशान में. स्मशान में जैसे शरीर मन बुद्धि का संघात भस्मीभूत हो गया, तो आप जानकर भी अभी वो शरीर से तो किसी की आसक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो भस्म हो गया है. इसी प्रकार जीते जी आपके तत्व का ज्ञान मुझे मिल जाए तो मेरा शरीर भाव जो है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, ऐसा भाव अगर भस्मीभूत हो गया तो वो क्या करते हैं कि भाई ये त्रिपुण क्यों लगाते हैं सन्यासी? क्यों त्रिपुण लगाते हैं? क्यों भस्म लगाते हैं? ये वासना क्षय का प्रतीक है कि मेरी सब मुझे वासना मई समझने की गलती मत करना. इसीलिए बाह्य आडम्बर को ना बोला.

क्या रहता है, भाई इसके सिर में बहुत घमंड है। देखो प्रेम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम दूसरे के लिए, अगर प्रेम की बात की तो हम क्या कहते हैं कि इसके दिल में प्रेम किधर है, हाँ क्या बोलते हैं शब्द कि भाई इसके सीने में, इसके दिल में, उसके हृदय में प्रेम है, उसके सिर में प्रेम है, ऐसा कभी सुना है? हाँ, और उसके हृदय में क्रोध है, अहंकार है, गुमान है, गर्व है, ऐसा कभी सुना है? वो कहाँ होता है? सिर में होता है। हाँ, तो ये जो गुमान जो है, वो गुमान का लेश भी ये परमात्मा के पास नहीं है। खोपड़ी भी, स्कल भी, शिर भी क्या चीज है, उसको भी आभूषण करके वो लटका सकते हैं। ये जो अहंकार जो है, अहंकार पूरी तरह से वश में है। अलंकार क्या है? अलंकार पहनने वाले के वश में है ना अहंकार। अलंकार आपने हाथ में पहना तो हाथ में ही रहेगा, भी हाथ वाली यहां नहीं आ सकती, यहाँ गला का हार सर में नहीं चढ़ सकता, हाँ सर का हार पैर में नहीं जा सकता। अलंकार पहनने वाले के ऊपर, उसके हाथ में ये सब अलंकार वशीभूत होते हैं। इसी प्रकार ये जो अलंकार रूपेण किसी के अभी याने, ये जो सिर में जो अहंकार है, जो गर्व है, शिव के पास ये गर्व नहीं होता। गर्व को उन्होंने अपने काबू में, अपने कब्जे में रख लिया है। इसी प्रकार हमें ये ब्रह्म तत्व, ये शिव तत्व प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेरा घमंड है, मेरा जो गर्व है, मेरा जो अहंकार है, उसे अर्पित कर देना है परमात्मा को, शिव जी को, गुरु को अर्पित कर देना है। ये मेरा जो अहंकार है वो मैं आपको, क्योंकि आप ये माला पहनते हैं तो एज एन ऑर्नामेंट, एज ए गिफ्ट टू यू आई गिव इट टू यू। आप मेरी खोपड़ी को पहन के घूमते रहना है शिव जी। अगर शिव जी को आपको दान करना भी है तो आपका अहंकार अगर दान कर दिया, आपका गर्व अगर दान कर लिया, तो उसको भी स्वीकार करके उनके गले में आप लग जाएंगे। और फायदा हमें क्या होगा, हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और जिस क्षण आप अहंकार से मुक्त हो गए, आप वो परमात्मा शिव साक्षात ब्रह्म इसी क्षण बन जाते हैं। तो ऐसी बात करके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, अब जो बात आती है, अब तक जो बात की इसमें अर्थवाद आ गया, स्तुति आ गई, प्रार्थना आ गई, माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया। अब हकीकत में करना क्या है, ये शिव तत्व क्या है, इतना समझ लेने के बाद देखिए, आप एकदम ही किसी को मिलते हैं तो तुरंत ही ऐसा ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने में लग जाते हैं। क्या करते हैं पहले तो, हाँ पहले जानते हैं कहाँ रहता है, बैकग्राउंड क्या है, क्या है, फिर थोड़े दिन के, थोड़े महीने के बाद, थोड़े साल के बाद आप उनके साथ थोड़ा व्यवहार अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, पहले ही दिन तो नहीं ना, बोले नहीं। तो इसी प्रकार पहले ही दिन मैं आपको बता दूं कि भाई चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम वो शिव आप है, तो उसके आगे तो कुछ बोलना रहता ही नहीं है। पर जो शिव, जो ब्रह्म आप है, तत्वमसि है गुरु, बारंबार आप बताते रहते हैं तत्वमसि, वो तत् ब्रह्म तू है, वो ब्रह्म है क्या, उसका वैभव क्या है? तो इतना ही वैभव है कि मुझे और आपको भी गले में जो लटका सकता है। हाँ, हम किसी को भी सुनते हैं, ऐसा है हमारा अहंकार कि किसी का भी सुने, हाँ किसी का नहीं सुने, ऐसे अहंकार को भी परमानेंट गले में लटकाने वाले, हमको जला के भस्म करने वाले भी है ये शिवजी। ऐसा उनका प्रभाव है, ऐसी उनकी महिमा है। अगर आपको उन तक पहुंचना है तो उनकी महिमा को आत्मसात करना आपकी फर्ज है। इतना सब जानने के बाद थोड़ा जब परमात्मा के प्रति उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तो अब जो करवाना है पुष्पदंत जी को, उसमें हमें प्रवेश करते हैं। किसमें? शिव जी का जो यथार्थ स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें अब प्रवेश करते हैं। तो ये प्रवेश करके बोलते हैं, मन प्रत्यक चित्ते सविधम अव धायात मरुत, कहते हैं बाह्य, श्लोक नंबर 25 की बात कर रहे हैं, प्ररुष्य द्रोमाण प्रमद सलिलो संगीत दृश, कहते हैं बाह्य विषय जो है, आप कैसे हैं, है परमात्मा आपका आंतरिक स्वभाव कैसा है? देखिए, जिसको भूत पिशाच भी चल जाते हैं, हाँ भूत पिशाच जैसे भी

सहचर चल जाते हैं, भस्म भी चल जाती है जिसे, सब कुछ अमंगल भी जिसके जिसको एग्जॉस्ट कर देते हैं चल जाता है, तो वो व्यक्ति होगा कैसा? हाँ, टोटली अनकंसर्न अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो ऐसा होगा, जो बाह्य जगत से जरा भी आसक्त न हो, एकदम ही अनकंसर्न हो, वही ऐसा होगा, सब कुछ चल जाता है। तो भाई ये शिवजी है कैसे? जहर भी पी लिया वो भी चल गया, सर्प भी दे तो सर्प भी डाल देते हैं हाथ में और मस्ती से रहते हैं। तो ये मस्ती, ये आह्लाद, ये आनंद और पूरे महादेवम महात्मानम महाध्यानम परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः महाध्यानम, इतना सब कुछ होने के बाद हमारे हमको पता लगे कि सेकंड फ्लोर पे सर्प आ गया है, तो यहाँ बैठे बैठे हम क्या करेंगे? ध्यान होगा क्या? सेकंड फ्लोर पे आया है कोई, सर्प लेके आया है, तो यहाँ सब कुछ, सब दरवाजे, सब कुछ बंद है, तो भी क्या होगा कि अभी ये कब समय हो, कब हम भागे यहाँ से? हाँ, और यहाँ तो पूरे शरीर में सर्प है, तो भी ध्यान लगता है। कहना क्या चाहते हैं? हाँ, के सर्प है, विष है, विषय रूपी विषय है, वो इतने तक चिपके होंगे तो भी आपका अंतर स्वरूप है उसे आप जान लो, तो ये विषयों का विष जो है वो आपका आभूषण बनेगा, आपसे द्वेष, आप वो आपको विष जो है वो प्रभावित नहीं कर सकेगा। ये ज्ञान को, ये परम तत्व को आप प्राप्त कर लीजिए। कौन से परम तत्व को? आप खुद वो शिव है आपके भीतर, जो अहम अहमतया जो रह रहा है, जो अभिव्यक्त हो रहा है हर हमेशा, तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो सत्ता और स्फूर्ति हम सबको दे रहा है, वो जो तत्व जो है उसे आप जान लीजिए, ऐसा कहा है। तो वो तत्व शिवजी, और शिवजी जैसे ही वो हम जो है वो कैसे है वो बता रहे हैं कि मन में, मन को हृदय में स्थिर करके, मन यहां यहां चंचलता से जाता है ना, उसे हृदय में स्थिर करके अनेक प्रकार से प्राणायाम जो करते हैं, अनेक प्रकार के अष्टांग योग का जो साधन करते हैं, यानी जो श्रेष्ठ योगी है जो आपको पाने के लिए ये सब करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो आपको मैं पाऊंगा इस बात से पहले से ही रोमांचित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, आनंदित जो हो जाते हैं, ऐसे योगी जैसे अमृत के कुंज में डुबाए गए हो। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी, यहां कहा है कि शम दम तितिक्षा अष्टांग योग यम नियम आसन समाधि प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब कुछ जो भी हम परमात्मा को प्राप्त करने के, देखिए मात्र शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राप्त करने के लिए ये सब किया, तो उसमें वो व्यक्ति के ऊपर वो चीज पाने का आनंद नहीं होगा, वो करते होंगे वो क्षण भी नहीं होगा। इन सब किसके लिए किया जाता है? अगर ईश्वर प्रत्यर्थ शिव प्रत्यर्थ ही किया जाए, तो जाने कि कोई आदमी को पूरे अमृत के कुंज में डुबा के बाहर निकाला हो, ऐसे पूरी क्षण वो अभी आपको पाया भी नहीं है तो भी वो आनंद में ही रहता है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा मनीषा पंचक में लिखा है, यत्सव

अनुतः क्या कहते हैं कि ये जो आप तो पूरे समुद्र है, सागर है, उसका एक बूंद का आचमन करने से भी आनंदित हो जाते हैं, तो अगर जो ज्ञानी जन है वो तो आपके सागर के अंदर ही पड़े हुए, वहीं तैरते हैं, वहीं सब कुछ क्रीड़ा करते हैं, तो उनके आनंद की तो मैं अवधि की बात ही क्या कर सकूं, मैं बोल भी नहीं सकता, वो आनंद को मैं देख भी नहीं सकता, तो ऐसा आनंद मैं प्राप्त करूं, इत्येषा मनीषा मम, ऐसी मेरी बुद्धि हो। तो ऐसे जो है अनिर्वचनीय तत्व को अपने अंतकरण में याद करके आनंद का अनुभव करते हैं, वही तत्व आप हो। यानी पुष्पदंत जी यहां कहना चाहते हैं कि आपका अनुभव कहां हो सकता है, अंतकरण में हो जाता है। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। चित्त याने अंतकरण का जो भाग है वो चित्त है, जब एकाग्र होता है अंतकरण, अंतकरण की जो वृत्ति एकाग्र होती है, कोई एक विषय का चिंतन करती है, सजातीय वृत्ति प्रवाह से परमात्मा का नाम स्मरण करती है, या अपने जो स्वभाव है उसके बारे में सोचती है, तो तब उसको चित्त कहा जाता है। संकल्प विकल्प करता है तब मन जैसे कहा जाता है, ऐसे एकात्मिका अंतकरण वृत्ति को चित्त कहा जाता है, और ये चित्त में निधिध्यासन करके वो परमात्मा को प्राप्त करना है। यानी हमें क्या समझना है कि कुछ भी हो परमात्मा मिलेगा तो कहां मिलेगा, आंतर हृदय गुहा में ही मिलेगा। तैतरीय उपनिषद ने कहा है यो वेद निहितम गुहायाम। तो साधन कौन सा है, हमारे आत्म साक्षात्कार का अंतिम साधन क्या है, तो ये चित्त रह जाएगा, एक का आत्मी का, ये सजातीय वृत्ति प्रवाह जो है ये प्रवाह रह जाएगा। ये प्रवाह से निधिध्यासन सतत किया तो उसकी जो अनुभूति जो है, निधिध्यासन की जो असर है, जो हवा है, वो क्या है, वो असर जो है वो आत्म साक्षात्कार है। तो ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे, श्रवण और मनन से विचिकित्सा करनी है, यानी जो मल विक्षेप और आवरण नामक जो दोष है वो निकाल देने हैं शरीर मन बुद्धि के संघात से, और शुद्ध हो गया मन, उससे वो जो चित्त जो है वो एक जगह पे ठहरने की क्षमता को प्राप्त करेगा। जो मन का जो चांचल्य है, हाँ, यहाँ यहाँ विषयों में जो घूमता रहता है, विषयों में घूमता रहता है, ये जो मन के अंदर मन का चांचल्य, यानी क्या कि दूसरों के बारे में जानने की जो उत्सुकता है, दूसरों के बारे में जानने का जो स्वभाव है, जो आदत है, भीतर जो ये छू गया है, एक व्यसन है, ये जो स्वभाव जो है ये मन का, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, हाँ, ये जानने का स्वभाव आपके भीतर है तो गलत नहीं है, पर इतना जान लीजिए कि ऐसा स्वभाव मेरा है तो आप वहां से निकल सकेंगे। इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार ही आपका अंतिम ध्येय है तो अन्यम वाचो विमुंचेत, बाकी हम पूरे जगत को कहां, आप यहां आए इतने को ही तो बताते हैं, पूरे जगत को हम कहां बताने गए कि भाई अन्य वाचा छोड़ो, यही छोड़ने में तकलीफ हो जाती है। हाँ, कितने सालों का श्रवण करके धीरे धीरे ये प्रपंच छूटता है, ये प्रपंच छूटता है क्या, हाँ, दूसरों के लिए जानने की उत्सुकता छूटती है क्या, बातें करने की उत्सुकता छूटती है क्या, यही इतना संपर्क शिव का संपर्क है, गुरु यानी शिव ज्ञानी, उनके संपर्क है तो भी बातें जानने की उत्सुकता होती है, तो बाहर की तो बात ही छोड़ो, तो उसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, पर नहीं जाना कि यह है वो गुनाह है, और जानने के बाद नहीं छोड़ा वो तो एकदम ही गुनाह है। बेटर लक नेक्स्ट बर्थ, हम तो नेक्स्ट बर्थ की बात करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम की तो बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है कि इतना शुद्ध चित्त होगा उसी में वो परमात्मा की जो स्थिति है, परमात्मा का जो ब्रह्म का रूप है, निर्गुण रूप है, वो वहीं से पता लगेगा, वहीं धारण किया जाएगा, उसके अलावा नहीं होगा। अन्यम वाचो विमुंचेत, ये सब कुछ नहीं जानेंगे तो चलेगा, एटलीस्ट शरीर मन बुद्धि का ये जो है उसका सदुपयोग करके वो परम तत्व में पहुंच जाइए। दूसरों क्या कर रहे हैं, क्या है, गलती से भी कुछ भी दूसरों को पूछिए ही मत, ये प्रश्न आपके मन में आया तो विष के समान पी जाइए, गले में रख दीजिए, शंकर भगवान को याद कीजिए, नहीं विष बाहर निकालिए, दूसरे को क्यों कलुषित कर रहे हैं, और आंतर भी नहीं रहना, भीतर जानने की चेष्टा उबलती रही तो हम जो भी कुछ बोलेंगे वो बाहर निकल जाएगा।
आप सोचिए, कोई संत यहाँ आके बोलते हैं मैं नहीं, कोई भी संत यहाँ आके बोलता है तो अपनी जगह से आने का कष्ट कष्ट तो नहीं लगता। आप बहुत अच्छी तरह हमें लाते हैं और ले जाते हैं, उसकी बात नहीं है, पर आपके साथ एक घंटे के लिए बोलने के लिए 23 घंटे रुकते हैं। हाँ, इतना सोचना, इतना भी अगर विचार आ गया तो बोलना कि ये आपके लिए हो रहा है, हमारे लिए भी, सबका कल्याण हो रहा है। तो ये जो रुकना है, आप 23 घंटे जब तक आप श्रवण करते हैं जिंदगी भर, दूसरे श्रवण तक बीच में क्या है, आपको रोकना है। हमारे मन में 23 घंटे यही विचार आता है कि दूसरी सुबह 7:30 बजे बस मुझे तैयार रहना है। हाँ, एक ही लक्ष्य है, ये पूरे 23 घंटे में हमारा तो लक्ष्य ये एक ही है ना। तो अगर दूसरा प्रवचन आपको कोई भी संत का दूसरा प्रवचन में हम जाएंगे तो कोई और आएगा, उसके प्रवचन तक बीच में क्या करना है, मात्र प्रतीक्षा करनी है, मात्र इच्छा रखनी है और प्रपंच नहीं करना है। ये क्या गया, कौन गया, कैसा गया, ये कोई जीवन है क्या, क्यों बर्बादी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा करेंगे तो ही चित्त शुद्ध होगा और तो ही ये शिव कौन है वो सुनने से भी समझ में आ सकेगा। अब कहते हैं कि हे शिव जी, ऐसे अनिर्वचनीय अहम तत्व से, कठोपनिषद में इसीलिए कहा है अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। हाँ, परमात्मा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अस्ति तत्व से ही मिलेगा। मैं हूं भी नहीं हूं, और फिर हूं भी नहीं आता है। अभी मैं हूं वो कहने के लिए मैं ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। सी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फीलिंग, इट इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। सिर्फ मेरा होना ही काफी हो जाता है, वो आप जो है ना वही शिव तत्व है। पर जगह तो दो उसे फील करने की, तो आप जगह छोड़ो। हाँ, कितने विषयों से, कितनी आसक्ति से, कितने प्रायोरिटी और कितने विचारों से हमने एक करके रखा है, इतनी प्रायोरिटी दूसरे को क्यों दी है। हाँ, वो भी शरीर मन बुद्धि का संगात है, उसके भीतर भी उसका अपना छोटा परमात्मा है। यो वेद निहितम गुहायाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, ऐसा कहा है ना। कोई एक ही जाति में मैं हूं, कोई एक ही देश में हूं, इसी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों में अर्जुन जी में जाया हूं, ऐसा तो नहीं है। सब में है तो सबके भीतर वो परमात्मा है, वो उसका ख्याल रखेंगे ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा संपर्क बढ़ा दिया है अपने चित्त में, उसे आप निकाल दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, तो वो परमात्मा अहम वृत्ति से अंदर स्वयं स्फुरित जो है वो आपको दिखने लगेगा। आप अपने जो आवरण जो है, पंचकोशात्मक आवरण जो है, उसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिए। तो कहते हैं शिवजी जो है परमात्मा, आप जो अहम बुद्धि से, अंतकरण वृत्ति से भीतर शुद्ध चैतन्य रूप से बैठे हैं, वो हमें पता नहीं लगे तब तक क्या करना है। मैंने बोला ना कि 23 घंटा हम रुकते हैं, तो हम सबको जब रुकते हैं तो क्या करना है, तो बोले कि शिवजी की अनेक मूर्तियां बाहर बाह्य रूप से शिवजी यानी शिव तत्व, ब्रह्म तत्व जो उनका प्रगटीकरण किया है, बस उन्हीं की आराधना, उनको देख के वो परमात्मा का स्मरण करना है। भाई पूरा दिन तो पूरे घड़ी तो हम वो ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकते ना, आप कहते हैं तो पूरा दिन 24 घंटे हम निधिध्यासन कैसे कर सकते हैं, कौन कहता है आपको करने के लिए। पर करना क्या है, इतनी जो शिव की मूर्तियां हैं उनको आप जब भी देखो तब तो आप शिव जी को याद करेंगे ना, और उतना ही किया तो भी आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो शिव जी कहां कहां है वो हम पुष्पदंत जी के मुख से ही सुनेंगे। वो कहते हैं शिव की अनेक मूर्तियां है, त्वमर्कस्त्वम सोमः, त्वमसि पवनस्त्वम हुतवः, त्वमापस्त्वम व्योम, त्वमु धरणीरात्मा त्वमिति च। ऐसा कहते हैं कि हे प्रभो, आप ही सूर्य हो। बात खत्म हो गई। अभी सूर्य को देखा, सूर्य तो दिखता ही है ना, बिना प्रयत्न दिखता है। आप खोलो, सूर्य तो है ही, लाना नहीं पड़ता, वो है ही। सूर्य को देखा, शिवजी याद आ गए। पर हम क्या करते हैं, सूर्य को देखा अनदेखा कर देते हैं, सूर्य से जो कुछ दिखता है उसी में लग जाते हैं। हाँ, वो देखने की बात ही नहीं की है आपको, कहाँ गए, कहाँ से लाए, क्या पहना, क्या ओढ़ा, कितना लिया, कितने को लिया, कूपन है, डिस्काउंट है, ये सब बातें। हाँ, क्यों करनी है। और वो बातों का भी एक समय होता है। हाँ, ध्यान रखना, मलाइजा रखना। हाँ, वो देश और काल का कुछ तो ख्याल करना। बोले सूर्य ही आप, अब सूर्य को देख लिया और समाधि लगनी चाहिए।
सूर्य से जो दिखता है वो नहीं, सूर्य को देख के ही लगना चाहिए आ हा वो शिव है। अच्छा शिव याद आए तो उनका मेकअप याद आ जाना चाहिए, उनका मेकअप याद आया तो आ हा उनका रथ, ये पृथ्वी को देखा अरे इसे रथ बनाया था तो शिवजी इसके ऊपर तो चढ़े ना, तो ये पृथ्वी को मैं जहां छू वहां शिव के चरण मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। इतना तो काफी है आह्लाद होने के लिए, शरीर में रोमांच करने के लिए इतना तो काफी है, पर जगह कहाँ है इतना सोचने की। हाँ जगह बनाइए, आप ही चंद्र है, चंद्र को देख लिया तो भी वो याद आने चाहिए, आप वायु है, आप अग्नि है, आप जल है, आप पृथ्वी है, और आप कौन है ये सबको जानने वाला, कौन जानता है ये पृथ्वी है ये जल है, मैं जानता हूं ना, वो जानने वाले भी आप ही है। आपसे ही सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके मैं ही आपको जानता हूं, ये कोई भीतर से जानने वाला जो है ना कि ये मैं पृथ्वी तत्व को हाथ लगा रहा हूं, तो हाथ लगाने की सत्ता स्फूर्ति देने वाले ही आप हैं, हाथ आप ही लगा रहे हैं। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा हाँ, वृक्ष थई फूली रहो आकाशे, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशे। ये कहाँ है नरसिंह मेहता हाँ, और कहां तक हमें जाना है, हमारी यात्रा ये होनी चाहिए, लगना चाहिए ये जीव, ये जो मैं हूं ये कोई छोटी घटना नहीं है कि आप ये ब्रह्म है, आप ये परब्रह्म है, भीतर वो परमात्मा को लेके बैठे हैं हाँ, उसे आप क्या धरा रहे हैं हाँ। जगत के विषय आपकी वासनाओं से मलिन हुए ये सब रूप अंदर उसको देख, तू देखिए और उसके पास से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि तू मुझे अच्छा ही दिखा, परमात्मा मुझे कभी बुरा मत दिखा, पर तूने मुझे कितना बुरा दिखाया, भीतर से तो वही देख रहा है ना, कानों से कितने प्रपंच सुना है वो परमात्मा को, अब वो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि अच्छा अच्छा मुझे सुना, पर तूने मुझे प्रपंच क्यों सुना है हा? कहां कहां हम ले गए वो परमात्मा को, क्या क्या खिलाया, क्या क्या बोले हा? बहुत सतर्क रहे, अगर साधक कहते हैं अपने आप को तो सतर्क रहना, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, जो चाहे वो करना। इसी प्रकार आपके विषय में जो परिपक्व बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, वो परिच्छिन्न यानी कि मर्यादित वाणी जो है वो भले कहे, फिर भी ये सृष्टि में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो आप है, यानी जो सब में परमात्मा को नहीं देख सकता, कोई कहता है यही परमात्मा है और दूसरी जगह नहीं है, ऐसे कहने वाले जो है उनकी बुद्धि परिपक्व अभी नहीं हुई है, ऐसे भले आपको कोई कोई विषय में जाने, पर मैं तो मानता हूं कि आप सचराचर सभी जगह प्रवृत्त हुए हैं। अब कहते हैं कि आपके जो सगुण स्वरूप है, बरसों तक सूर्य चंद्र आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यानी सब कुछ में ये परमात्मा को देखने की चेष्टा की, प्रैक्टिस की, अन्यम वाचो विमुंचेत करके साधन बनाए रख के, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता राग द्वेष छोड़कर ये सब कुछ किया, तब क्या होगा, तब परमात्मा का जो ओमकार का रूप, देखिए ये कलयुग का प्रभाव है कि ये हमें जानने को मिलता है, बाकी ये अभी सतयुग या द्वापर युग में होते ना तो गुरु दो सेकंड के लिए भी हमें सहन नहीं कर सकते, हमें बिठाए नहीं देख सकते, जब तक ये साधन हमारा बराबर न हो तब तक रुकना पड़ा, इंद्र को 101 साल तक रुकना पड़ा, हमारी क्या बात है हाँ, रुकना पड़ता है। ये तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ये परम तत्व के जो घोड़ रहस्य है वो हमें मिलते हैं, और उसकी मर्यादा हम नहीं रखेंगे तो तत्व तो अपनी मर्यादा रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं हाँ, अपने सामने आपके पास अपने संपर्क में आते भी वो अपने महिमा को छुपाने की शक्ति रखते हैं हाँ, तो ये ध्यान रखना। अब जो बताते हैं वो शिव का परम पद ओमकार स्वरूप है, ये ओमकार मैं दो मिनट जरा ज्यादा लूंगी, आप जरा भी हिलना डुलना कोई चिंता मत करना प्लीज, ये जो शिव का ओमकार स्वरूप जो है उसका वर्णन किया, ये पूरा ओमकार स्वरूप वर्णन करने के लिए मांडुक्य उपनिषद जो है वो उद्धृत हुआ है, कठोपनिषद में भी कहा है, नचिकेता ने जब पूछा कि ये परमात्मा जो है, ये आत्मा जो है आता है जाता है, ये सब बातें बताई, तब यमराजा ने मृत्यु के देव ने अमर तत्व का उपदेश दिया, वहां भी क्या कहा है कि भाई ऐसे आप नहीं जा सकते, ये श्वेत केतु की तरह तत्वमसी बोल दिया और श्वेत केतु ने वो जो तत्व है वो आत्मसात कर लिया, अरे
पर वो करने के लिए कैसी चित्त की शुद्धि होगी? तो हम जो यहाँ जो जिस प्रकार जीवन जी रहे हैं उसमें क्या वो संभवित है? सबके लिए संभवित नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर नचिकेता को भी आलंबन दिया गया तो हमारे लिए वो आलंबन है ही, वो मस्त हो गया। अभी उनके लिए हो गया तो हमारे लिए तो ये कर्तव्य हो गया। तो क्या कहा? एतद् आलंबनम श्रेष्ठम, एतद् आलंबनम परम, सर्वे वेदा यत् पदमावनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतद्। क्या कहा? संग्रहेण। सब वेद जिस पद का आलंबन करते हैं, जिस पद को समझाते हैं, पूरा वेद हा? जिसे प्राप्त करने के लिए घर छोड़े जाते हैं, योगी बने जाते हैं, ब्रह्मचर्य बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं सिर्फ उसी को जाने के लिए। तो ये कोई तत्व ऐसा है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, जिसकी बात वेद करते हैं, वो कौन है? तो बोले, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ओम इति एतद। ये ओम के बारे में, ओम जो है वो सोच लीजिए, तो ये ओम कौन है? तो ये ओम शिवजी है। जब तक हम ओम को नहीं जानते, आप शिवजी को जानिए, उनके प्रकार को जानिए, उनके आडंबर को जानिए, और फिर धीरे धीरे वो कौन है वो जानिए। तो यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है जब ओमकार रूप ये शिवजी है, ऐसा मैं बता सकता हूँ। तो कहते हैं, हे शरण देने वाले महादेव, अ उ और म त्रयीम तीसरो वृत्ति ही त्रिभुवन मथो त्रीनपि सुरान अकाराद्य ही वर्ण ही, अकार उकार और मकार ये वर्ण से कहे जाने वाले, जाने जाने वाले, अकार यानी जागृत अवस्था, मकार स्वप्न अवस्था, उकार स्वप्न अवस्था, मकार सुषुप्ति अवस्था, तीन वेद जो है इसी में से निकले हैं, रोग यजु और साम, तीन वृत्तियां जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन भुवन जो है भू भुवः स्वः, तीन देव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब तत्व को जो प्रदर्शित प्रकाशित करता है, ये सब तत्व जिस तत्व में से निकलते हैं, देखिए जो तत्व में से जो निकलता है वो कारण, वो तत्व उससे तो बड़ा ही होगा, उससे तो सूक्ष्म ही होगा, और वो सूक्ष्म तत्व को तुरीय कहते हैं। और ये जो तुरीय तत्व है उसमें से ये शरीर मन, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण सब भेद जो है वो व्याप्त हुए हैं, निकले हुए हैं, और उसका जो ध्वनि जो है, उसका जो प्रगटीकरण है, तो प्रगटीकरण का कुछ रूप तो होना ही चाहिए ना, तो ये ओमकार का ध्वनि है, ओमकार के ध्वनि से ये सब प्रगटीकरण हुआ है। ऐसे ओमकारमय शिव परमात्मा है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे परमात्मा को हम भी प्राप्त कर सके, ऐसी परमात्मा और गुरुजनों से प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: नमः
1: हरिः ॐ।
2: ॐ नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ॐ नमः शिवाय।
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 26. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: लेकिन मिला हुआ नहीं, और जब तक मिला हुआ प्रतीत हो रहा है तब तक ये जो नियम है जन्म और मरण ये समाप्त होने वाला. ये कब होगा? तो कहने लगे ये तब होगा जब ये मिले हुए का भ्रम है वो नष्ट हो जाए. तो क्या होगा? तो कहने लगे फिर जन्म मरण होगा ही नहीं, सत्ता एक है. जब दूसरी सत्ता ही नहीं है तब उसके अंदर इच्छा का उदय नहीं होगा, और इच्छा का उदय नहीं होगा तो बगैर कामना के जन्म होता ही नहीं, तो फिर मैं तू आदि भी नहीं होगा. ये संकेत किया. अब इस सिद्धांत पर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना की गई, और प्रार्थना के अंत में तीन बार कहा. क्या कहा? ओम शांति शांति शांति. और जिसका अर्थ क्या किया गया? त्रिविध ताप की शांति हो. क्या कहा? त्रिविध ताप की शांति हो. तो त्रिविध ताप क्या बतलाए? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि. आध्यात्मिक तापों को कह दिया गया क्या? व्याधि रूप और आदि रूप. व्याधि होती है हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में, और आदि होती है सूक्ष्म शरीर में. तो सूक्ष्म शरीर का रोग विकार और स्थूल शरीर के विकार को ही हम क्या मानते हैं? काये विकार ही दुखद हैं, यही तो दुख के कारण. तो इसको कह दिया आध्यात्मिक दुख. और फिर उसके बाद जो है आदि भौतिक, जो हिंसक आदि जंतुओं से आदि होने वाले जो दुख हैं, हैं? तो उनको क्या कह दिया? कहा वो आदि भौतिक हो गए, पदार्थ विशेषों से होने वाले. और जो है वृष्टि अनावृष्टि आदि जो ये दुख हैं, इनको क्या कह दिया? कहा दैविक दुख कह दिया. अब वेदांत की तो बात है ही, लेकिन सांख्य शास्त्र भी यहां पर थोड़ा स्वीकार करता. क्या कहता? दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टा सा पार्थ चेन नई कांति तो अत्यंता भावा. क्या मतलब? कहा दुख त्रयाभिघाता, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र क्या है? तीन दुखों से अविघातित है. तीन दुखों का उसके ऊपर अविघात हो रहा. उन तीन दुखों में कोई न कोई दुख उसके पीछे पड़ा हुआ, ये समझ लो. तो तीन दुखों से ये संसार का जीव जो है क्या है? प्रताड़ित हो रहा है. किसी को शारीरिक दुख, यदि शरीर से स्वस्थ है तो मानसिक दुख, मन से स्वस्थ नहीं. और इनसे भी यदि स्वस्थ है तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ये सब दुख आ जाते. या कहीं आतंकवादी है धमाका बोल देते, ये सारे दुख आ जाते. तो ये इस प्रकार के जो दुख हैं वो कहीं न कहीं इन दुखों से प्रताड़ित हो रहा. अब जो है जब दुखों से प्रताड़ित हो रहा है तो उसके अंतर्गत स्वाभाविक इच्छा होती है कि दुख मां भूत, मेरे को दुख न हो. किंतु सुख की प्राप्ति हो। इसलिए शांति मंत्र में बार बार सन्नो सन्नो है, मेरे लिए जो है समन करो देवताओं से प्रार्थना। ये किसी ने नहीं कहा कि दुख दो, दुख का समन करने के लिए सुख की प्रार्थना की। और जब सुख की प्रार्थना की और सुख के लिए कह रहे कि हमें सुख हो, तो अब ये सुख कब हो, कैसे होगा, ये समस्या आई। और जब तक ये सुख नहीं होगा, दुख की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक शांति नहीं। शांति का मतलब क्या, जहां पर किसी प्रकार का विकार न रह जाए। जब तक लहरें उठेंगी तब तक समुद्र को शांत कह सकते हो। जहां किसी प्रकार की लहर न उठे उसे क्या कहोगे, शांत। तो शांति तभी होगी हमारे में भी जब कोई इच्छा ही न हो, ठीक है। तो जब कामना से रहत हो जाएंगे तभी जाकर के क्या होती, का शांति होती। और कामना जब तक रहेगी तो नियम बतला दिया तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। पुनः इच्छा होगी, इच्छा से हम कर्म करेंगे, कर्म से फल मिलेगा, फल का भोग होगा, भोग होने पर वो समाप्त हो जाएगा, पुनः उसकी इच्छा होगी और पुनः इच्छा होगी तो पुनः फल, और ये चक्कर चलता, ये नियम है। अब जो है तो कहने लगे इन दुखों से कैसे निवृत्ति हो, सुख की शांति की हमें प्राप्ति हो। तो वहां शंखकार ने भी संकेत किया कि ये तीन दुख जो है प्रत्येक प्राणी को प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ अंशों में मतभेद भी है, लेकिन यहां पर इतना स्वीकार करते हैं तो इन दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तो उन्होंने उपायों की चर्चा की। दुखत प्रया विघाता जिज्ञासा तत् अपघात के हेतु, जो तीन दुखों का अपघात हो रहा है उन तीन दुखों को भी अविघातित कर देना, उनका भी अपघात कर देना। अर्थात जो हमारे ऊपर घात कर रहे हैं हम उसी के ऊपर घात कर दें तो वही समाप्त हो जाएगा, तो हम कैसे हो जाएंगे, का सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो दुख हमारे ऊपर अविघात कर रहे हैं ऐसे उन दुखों के ऊपर हम अपघात कर सकें। तो कहा ये कब होगा, अर्थात दुखों को समाप्त कर सकें तो ये कब होगा, तो उसके लिए उपाय बतलाए। का दृष्टा सपार्थ, सपार्थ पार्थ शब्द नहीं अपार्थ शब्द है, दृष्टा सा पार्थ ऐसा शब्द, तो संधि तोड़ देंगे तो हो जाएगा दृष्ट स अपार्थ। अपार्थ माने निवारण करना, दूर करना। तो एक तो दृष्ट उपाय है, कैसे उपाय हैं, दृष्ट उपाय। दृष्ट उपाय का मतलब जो दृष्टि का विषय है, अर्थात लौकिक उपाय। हम लौकिक उपायों के द्वारा दुख को दूर कर सकते हैं। संकेत किया भाई तापमान बढ़ गया, बुखार आ गया, तो बुखार की निवृत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दृष्ट उपाय एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, तो इनको लेकर के हम क्या करेंगे, उस औषधि को ग्रहण करेंगे और उस औषधि के द्वारा हमारे उस ताप का समन हो जाए। तो क्या हो जाए, दृष्ट उपाय के द्वारा जो आध्यात्मिक दुख है शारीरिक आदि, उसकी हम निवृत्ति कर लें। ये आ गया। आगे संकेत किया कि ठीक है भाई, दृष्ट उपायों के द्वारा इनकी निवृत्ति हो जाएगी। कुछ दृष्ट उपाय हैं और कुछ ऐसे हैं कि उन्हीं की निवृत्ति होगी, सबकी दृष्ट उपायों से निवृत्ति नहीं। अब जैसे हिंसक जंतु हैं, शत्रु आदि हैं, उनसे दुख की निवृत्ति करने के लिए भी हम उपाय कर लेंगे। इस प्रकार के मकान बना लेंगे, ऐसी सुरक्षा कर लेंगे, अस्त्र शस्त्र रख लेंगे है ना, और ऐसी पुलिस जो है लगा देंगे, तो ये सब जो है क्या है, तो ये दृष्ट उपाय के अंतर्गत। अब कहने लगे जो अनावृष्टि वृष्टि आदि जो इस प्रकार से दैवी आदि हैं उनकी निवृत्ति किससे हो, ये तो दृष्ट उपाय हो, तो उसके लिए कह दे आनुश्रविक। वहां पर उन्होंने संकेत किया उनके लिए आनुश्रविक। आनुश्रविक का मतलब है माने उपासना, उसके मतलब क्या है, उपासना। जो दृष्ट उपाय है वो तो कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, पराक्रम के द्वारा होने वाली, तो पराक्रम के द्वारा अपने पुरुषार्थ से हम अपने दृष्ट उपायों से हम उन दुखों की निवृत्ति कर लेंगे। लेकिन जो ऐसे दैवीय हैं वृष्टि अनावृष्टि आदि, कहा उनका हम क्या करेंगे, उनसे निवृत्ति कैसे करेंगे, तो कहने लगे आनुश्रविका, और भी दैवी जो हैं, तो उनके लिए आनुश्रविका माने उपासना। उनकी निवृत्ति किससे हो जाएगी? का उपासना के द्वारा, उन देवों की हम उपासना करेंगे, और देवों की उपासना करेंगे तो देवा देव जो है हमारे ऊपर अनुकंपा करेंगे तो उनकी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यज्ञ विशेषों के द्वारा यदि वृष्टि नहीं हो रही है तो वृष्टि करा लेना, और अधिक वृष्टि हो रही है तो वृष्टि को न्यून कर लेना, ऐसे ऐसे यज्ञों का भी विधान है। और आप तो सुनते ही हो, महाराज जनक ने भी यज्ञ की, और कब की? अनावृष्टि को लेकर, और जब यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हुआ तो वृष्टि हो गई। ये सब चर्चाएं आती। तो अब यहां पर जो है ये सब उपाय बतला दिए, लेकिन वहीं पर सांख्य शास्त्र कहने लगा कि आत्यंतिक निवृत्ति करने में यह उपाय भी असमर्थ हैं। वेदांत तो मानता है, लेकिन सांख्य ने भी यह स्वीकार किया। क्या कहा? कि आत्यंतिक निवृत्ति करने में ये उपाय भी असमर्थ है। निवृत्ति तो कर सकते हैं, लेकिन एक कालिक कर सकते हैं, एक अवधि तक कर सकते हैं, सर्वथा ये निवृत्ति कर सकते नहीं। अरे वही हमने टेबलेट आज ले लिया, आज बुखार चला गया, अब कोई नियम तो है नहीं कि कल नहीं आएगा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, फिर आ सकता है। और इसी प्रकार से वृष्टि अनावृष्टि ये भी सब। तो कहने लगे कि आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। हमने यज्ञ आदि कर्म करके स्वर्ग आदि को भी प्राप्त कर लिया, सुख मिला, शांति हुई, लेकिन वो भी कैसी है? काल में बंधी हुई। आत्यंतिक निवृत्ति सर्वदा वह निवृत्ति नहीं, क्योंकि गीता तो कहता ही है छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, लेकिन वहां सांख्य शास्त्र ने भी कहा छायत्वं च स्वर्गादे। ये स्वर्ग आदि भी क्या है? छह सील है, क्योंकि इनमें भी छह सील के वो नियम विद्यमान है। अज्ञान कृत माया कृत जो नियम की जिस चर्चा की, वो नियम वो व्यवस्था वहां पर विद्यमान, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग के पश्चात फिर जो है मृत्युलोकम विसंति, फिर मृत्युलोक में। क्यों? वो बैलेंस आपने कर दिया, लेकिन बैलेंस कब तक रहेगा? आप बैलेंस का वो करते रहोगे तो किसी न किसी दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। है भाई, कुबेर का ही खजाना क्यों न, एक एक पैसा यदि रोज निकालते रहो तो धीरे धीरे न्यूनता को प्राप्त हो जाए, और न्यून हो गया तो आप सभी चाहते पूर्ति हो, तो कामना ज्यों की त्यों बनी रहेगी और जन्म मरण भी ज्यों का त्यों। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति संभव नहीं। लेकिन यहां संकेत क्या करते हैं? तीन बार कहा शांति से, माने तीनों तापों की हमारी क्या हो जानी चाहिए? निवृत्ति। एक उदाहरण याद आ गया, ये सुख स्वर्ग सुख यज्ञ आदि उपासनाओं से होने वाला वो कितना है? तो अवंतिका का राजा बड़ा ही धार्मिक था, वो अवंतिका मानी ही ऐसी गई परंपरा ही उसकी थी, उसने इतने यज्ञ किए, उन यज्ञों के प्रभाव से वह जो है इंद्रलोक पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंचा, इंद्रलोक में पहुंचा, और वहां के सुख को उसने प्राप्त किया, काफी समय तक वो वहां रहा। लेकिन जब काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन इंद्र ने उसे बुलाया, और इंद्र ने बुला करके कहा कि भाई तुम्हारे पुण्य तो अभी है बाकी, बैलेंस तो आपका है, लेकिन समय बहुत व्यतीत हो गया है, ये बैलेंस तुमको तभी प्राप्त होगा और यहां तभी तक रह सकते हो। कब तक? कहा बैलेंस भी होना चाहिए और बैलेंस का कोई साक्षी होना चाहिए, बगैर साक्षी के तुम यहां रह सकते? जब ऐसा कहा तो उसने कहा वाह, हमारे लिए साक्षी कौन नहीं होगा, हमने जो है इतने यज्ञ किए कि उन्होंने यज्ञों के प्रभाव से चरवणवती नाम की नदी प्रवाहित हो गई, जिसे चंबल कहते आज, उसका पहले नाम था चरवणवती। कह यज्ञ प्रवाहित होगी तो मुझे कौन नहीं जानता? तो कहा ठीक है, फिर गवाही को लेके आओ। वो आए, और जब आए पृथ्वी लोक में, देखा जहां जाए तो जहां पर जंगल था वहां नगर खड़ा हो गया, जहां नगर था वहां खंडहर खड़े हुए, और अब देखने लगे परिचित कोई मिले, कोई परिचित मिला ही नहीं, जिससे कहें उस वही कह दे कि मैं नहीं जानता। चारों तरफ घूमते घूमते ढूंढते रहे लेकिन कोई गवाही नहीं मिला, क्योंकि संसार का नियम है चलायमान गतिमान। अब जब कोई नहीं मिला तो बेचारे परेशान हुए, परेशान होकर के उसी नदी के किनारे जाकर के मस्तक पकड़ करके बैठ गए। और जब बैठ गए तो वहां चर्चा आती कि वहां से कछुआ रेंगता हुआ दिखाई दिया। उस कछुए ने संकेत किया कि भाई तुम दुखी क्यों हो, तो उन्होंने अपने दुख को अभिव्यक्त किया कि साक्षी चाहिए और कोई साक्षी हमें मिल रहा नहीं। हजारों वर्ष बीत गए, उसने कहा चिंता न करो मैं साक्षी दूंगा। क्या कहा? मैं साक्षी दूंगा। कहा आप साक्षी कैसे दोगे? कहा जब तू यज्ञ करता था तो मेरी पीठ जो है, और ये सर्वत्र चाहती है कि समुद्र में भी किसने आश्रय दिया, तो कहा उसी कच्छप ने। ठीक है, अवतार भी कच्छप हुआ। और मानस में जहां कल्पना तुलसीदास ने की तो वहां भी क्या कहा? परम रूप में कच्छप सोई, ये शब्द दिया। वहां तीन प्रकार के मंथनों की जहां चर्चा की उन्होंने, तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि सारे साधन तो अलग अलग बदल दिए गए लेकिन जो है एक चीज नहीं बदली, सारे साधनों में परिवर्तन हुआ, प्रवाह हुआ लेकिन एक चीज में परिवर्तन नहीं हुआ। कहा किसमें नहीं हुआ? तो कहले कछुआ बहीरा, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे जो है सीता की छवि का मंथन हो, चाहे वो भरत रूपी समुद्र का मंथन हो, और चाहे जो आरण्यक कांड के अंतर्गत जिसको जो है ब्रह्म पयोज मंदर ज्ञाना करके जहां संकेत किया वहां ब्रह्म का जो है मंथन किया हो, वहां पर भी उन्होंने संकेत किया कि परम रूप में कच्छप सोई, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तब जो है वहां पर ये जब संकेत आया तो आगे कथा छोड़ो, इतना ही सार लेना है। तो अब जो है उसने कहा जब कछुए ने, तो इसका मतलब क्या? उस कच्छप से संकेत क्या किया? जो सारे विचारों की आधारशिला है, हमारा अंतःकरण विचार करने में मंथन करने में कब समर्थ होता? यदि वो चेतना न हो, वही कछुआ है, वही आत्मा ही कछुआ है, उसके बगैर ये कोई भी क्रिया चल सकती नहीं। प्रकृति भी कोई भी क्रिया करती है तो प्रकृति में भी कार्य करने की सामर्थ्य नहीं, जड़। लेकिन कब करती है? तो कहने लगे करती उसी के आश्रय को लेकर, बगैर उसके आश्रय के अंधकार की सिद्धि भी प्रकाश के बगैर हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया। और वो कच्छप कौन है? तो कहा आत्मा ही है, वो कोई और दूसरा नहीं, वही आश्रय है। अब ऐसे उस आश्रय का जब हमें बोध होता है तो वो हमारा साक्षी बनता है। इसलिए कहा भी गया है कि सुसुप्ति के ज्ञान की स्मृति कराने वाला कौन है? सुसुप्ति में, क्योंकि वहां ये बुद्धि तो थी नहीं, मन भी नहीं था, इंद्रियां भी नहीं थी, फिर सुख से सोया ये किसने कहा? तो कहा तो बाणी ने, और इंद्रियों के और अंतःकरण के बल से कहा, लेकिन कहा ये तो प्रसुप्त पड़े थे, इनको तो ये ज्ञान हुआ ही नहीं, फिर जो है ये किसने कहा? तो क्या कहा? कहा इनका जो आश्रय, इनको जो चेतना देने वाला है, ये संकेत किया केन उपनिषद में कि मन जिसका मनन करने में असमर्थ है। लेकिन मन को मनत्व प्रदान करने वाला कौन है? एन मनसा न मनते एन आहोरम मनोमतम तदेव है, उसको ही क्या है विद्धि माने जानो, वो ज्ञान की तरफ संकेत। तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं कि इस प्रकार से जब जो है हम जब उस आत्मा को जो मूल है निष्का सबका, जिसके आश्रय में रह करके ये सब प्रवर्तमान होते हैं और जिसके आश्रय के बगैर ये सब प्रवर्तमान नहीं हो पाते, तो वो जो है वो क्या है? वही है मूल। लेकिन उसी मूल को लेकर के प्रवृत्ति में हमें क्या हो गया? कहा उसी के स्वरूप को हमने नहीं जान पाए, उसके स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर, और उसके स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए तो स्वरूप उसका क्या? सतचित आनंद। तो सतचित को तो हम जान रहे हैं, सामान्य ज्ञान तो है लेकिन विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान का न होना यही क्या है? अज्ञान है। और इसी अज्ञान की मिलित अवस्था को लेकर के ये सारे संसार का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, ये सारा नियम चल रहा है। अब कहने लगे इस अज्ञान की यदि निवृत्ति हो जाए तो जो है क्या होगा, तो ये जो तीनों तापों की शांति कही गई तो आत्यंतिक जो है शांति प्राप्त। तो अंत में जो हम आत्यंतिक शांति चाहते हैं तो उपनिषद का उद्देश्य भी है, इसलिए प्रारंभ में ही संकेत करते कि हमको कहां जाना है, लक्ष्य क्या है, तो आत्यंतिक शांति की प्राप्ति करना, तीनों दुखों की सर्वथा निवृत्ति करना, ये जो है चर्चा यहां आई। अब जब ये प्रसंग आया शांति पाठ के द्वारा, तब प्रश्न यही हुआ अपने कि कर्म से कौन सा कर्म करें जिससे ये शांति मिलेगी, या कौन सी उपासना करें जिससे ये शांति मिलेगी। तो जहां तक मायिक प्रवाह है वहां तक नियमबद्धता है, वहां तक कर्म भी फलीभूत होता है, उपासना भी फलीभूत होती है, लेकिन वो फलीभूत होते हैं वो आत्यंतिक शांति दे पाते नहीं। उनका उनकी उपादेयता है, कर्म की उपादेयता, उपासना की उपादेयता व्यावहारिक पक्ष में है, मायिक पक्ष में है, लेकिन जहां पर आत्यंतिक शांति की बात है वहां इनका कोई उपयोग नहीं। ये भाष्यकार उठाने जा रहे हैं भूमिका के अंतर्गत, क्यों? नियम ये है, वार्तिककार आचार्य श्रेसुर ने लिखा वार्तिक के अंतर्गत, उन्होंने चर्चा की अर्थो अर्थी दच्छो दुजो अहम बुद्ध इति मतिमान कर्म सूत्रोधिकारी, संकेत किया जब तक इस प्राणी के अंतर्गत यह है कि मैं अर्थी हूं, अर्थात मैं पदार्थवान हूं, और अर्थात अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैंने पदार्थों को प्राप्त किया, मैं पदार्थों वाला हूं, ये बोध है। अर्थी दक्षो, मैं ज्ञानवान हूं, मैं निपुण हूं, बुद्धिमान हूं, ये ज्ञान प्रवीणता का ज्ञान है, और ये भी अहम बैठा हूं। और कहने लगे अर्थी दक्षो दुजो हम, मैं उत्तम कुल में दुज परिवार में जो है पैदा होने वाला उत्तम कुल का व्यक्ति ये, और कहने लगे इतना ही नहीं बुद्ध इति मतिमान, और मैं विद्वान हूं, ऐसी यदि मति है, ऐसी अंतःकरण की वृत्ति है, ऐसा यदि अपने को मानता है तब तक वो व्यक्ति कर्म का अधिकारी है, तब तक उसे कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कर्म की जो है उपादेयता यहीं तक बतलाई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठत्य, कब तक? ये स्थिति जब तक है, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं रहेगी तब तक उसके लिए एक ही श्लोक में कह दिया, दो श्लोक वहां पर किए, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, ऐसा जो है उसके लिए कोई कर्म की बाध्यता नहीं। तो ये संकेत, तो वही यहां पर उन्होंने कहा कि अर्थी दक्षो दुजो हम बुद्ध इति मतिमान कर्म सूत्रोधिकारी, तब तक वो है कर्म का उसे परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कहा कि कर्म का परित्याग मत करो अर्जुन, और कर्म का परित्याग ये तुम्हारे लिए फलदायी नहीं हो, लेकिन कर्म में से किसका त्याग करना है तो आगे संकेत कर दिया कामना, कि कामना ही कर्म करवाती है, और कामना यदि नहीं रहेगी तो कर्म होते हुए भी वो कर्म कोई सुख दुख नहीं किंतु शांति प्रदान कर देगा। तो इसलिए यहां पर संकेत किया कि ऐसा जब तक है तब तक वो कर्म का अधिकारी। आगे संकेत किया आत्मा रामो परमो परिब्राण उपरति ब्रह्म विद्याधिकारी, ये संकेत किया जो आत्मा राम हो चुका है तो ऐसा जो, और संसार से जिसकी उपरति हो चुकी है, परिब्राट जो हो चुका है, परिब्राट का मतलब है परितः, भ्राज्यते इति परिब्राट, चारों तरफ जिसकी गति वो परिब्राट कहलाता, तो ऐसा जो है और सर्वत्र से वो उपरम हो चुका है, कहीं पर भी अर्थात उपरम तभी होगा तो इच्छा रहेगी नहीं जब उपरमता हो जाएगी, जब तक हमारी उसमें राग की स्थिति होती है तब तक इच्छा होती, लेकिन जहां से उपराम हो जाएंगे तो उसके प्रति कोई इच्छा ही नहीं होगी। और ऐसा जो है कहने लगे वही है ब्रह्म विद्या का अधिकार। और ये सब कहकर के क्या बता, इत्थम भेदे विवक्षन मुभयोर वह सह, कहने लगे इस प्रकार से इन भेदों को बतलाते हुए आगे संकेत किया, नारम नीरम सुशीतम वैश्वानरंच, माने अग्नि को और शीतल जल को, किस लिए, त्रिशोच्छेद कामः पिवेश, कोई प्यास बुझाने के लिए क्या करे, अग्नि और ठंडे जल को मिलाकर के पिए तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। ऐसे ही संकेत किया कि कर्म और ये ज्ञान दोनों मिलकर के मिलाकर के तुम चाहो कि इस प्रकार से कर्म भी बना रहे ज्ञान भी बना रहे, ये दोनों रह नहीं सकते। जहां वो ज्ञान होगा तो वही ज्ञान जो है अज्ञान करता है, संकेत में। तो वहां पर जो है जैसे अग्नि और जो है ठंडे जल को पी करके जो है शांति नहीं मिल सकती, पिपासा हमारी शांत नहीं हो सकती, ऐसे ही कर्म आदि को लेकर के उपासना आदि को आचार्य शंकर संकेत करते हैं। तब इसका उपाय क्या है, तो वो संकेत के कर दिया गया कि जब जो है हम अधिष्ठान रूप आत्मा का विशेषतया बोध प्राप्त कर लेते हैं तभी ये त्रितापों की शांति होती, ऐसा यहां उद्देश्य है। इसको लेकर के ही यहां जो अंत में सब संकेत किया, ओम शांति शांति, पहले तो देवताओं के लिए वो बल मांगा कि ऐसे ज्ञान तक हम कब पहुंचेंगे, तो वहां तक नियम का प्रवाह चला, तो नियम के अंतर्गत देवताओं से प्रार्थना करना, उनकी अनुकंपा को स्वीकार करना अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और वो जब हो जाएगा तब जाकर के जो है मुख्य जो लक्ष्य था उसके लिए संकेत किया कि हमें जो है शांति प्रदान करने समय हो गया, अधिकतर सब आगे कर। ओ
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shivam.org। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन श्वेताश्वतर उपनिषद प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री उमेशानंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। देखो यहां क्यों ऐसा बोल रहा है, 12वां अध्याय में गीता के 12वां अध्याय में बतलाया भगवान ने, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निश्य मत्परः अनन्येव अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामिन शिरस्पार्थ मय्यावशित चेतसाम। वहां भगवान ने क्या बतलाया, ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्निश्य, सब कर्म मेरे को त्याग मेरे ऊपर छोड़ देता है, सन्यास्त माने त्याग देता है। धन्यवाद। ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्निश्य।

어디예요? 이 바다래요. 되고 야트라 자스민 부르시 마차테 스와디하 마라넴 크리트와 이차디나 포르옥타 디아나 니르마타네나 바유 야트라 아디루지테 샵담 아벽탐 카로테 레사카디 카라나. 되고 야트라 자스민 부르시 यात्रा वायु और अविरुद्धते है ना, इसका अर्थ करते हैं यात्रा माने जस्मिन पुरुषे, हाँ जिस पुरुष में स्वदेह मरणेम कृत्वा प्राणवाम स उत्तरारणिम, वो श्लोक ले लेना, स्वदेह मरणेम कृत्वा प्राणवाम स उत्तरारणिम ध्यान निर्मथना अभ्यासा देवम पश्य निगूढ़वात, श्लोक कहाँ आया? पहले अध्याय में. हाँ, यत्र जस्मिन् पुरुषे, जिस पुरुष में स्वदेह मरणेम कृत्वा मिच्छते, आपने देह को अरणी बना करके, स्वदेह अरणेम कृत्वा मिच्छते, कैसे मिच्छते, प्राणवम सा उत्तर अरण्य, एक एक लकड़ी से मथन नहीं होगा, याद रखना. हाँ, केवल उत्तर अरणी ले लो अथवा केवल आधा अरण्य ले लो, नहीं होगा. हाँ जी, बात मच्छते ही मथन करते, ये संसार जो है ना, ये संसार मथन क्रिया से पैदा हुआ है. हाँ, ये सारा संसार जो है ना, मंथन क्रिया का फल है. हाँ, तो कहते हैं जस्मिन् पुरुषे मच्छते स्वदेह मरणम कृत्वा इत्यादि ना, जो पहले मंत्र बतलाया पूर्वोक्त ध्यान निर्मथन है ना, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा. तो मंथन क्या हुआ, ध्यान करना. हाँ, तो पहले क्या चाहिए, ये ध्यान से योग दर्शन आया है ना, योग दर्शन में. हाँ, चित्र की निरुद्ध है, पर पहले का धारणा ध्यान, फिर समाधि. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगा, योग आठ अंग है योग का, याद रखना. एक कमी हो जाए तो अंगहीन माना जाता है, योग नहीं होगा. जैसे समझो हमारा शरीर है, पूर्ण अंग है, इसमें कान नहीं है तो बहरा कहेगा, नाक नहीं है तो नकड़ा कहेगा, आंख नहीं है तो अंधा कहेगा, एक आंख नहीं है तो काना कहेगा, हाथ नहीं तो लूला लंगड़ा कहेगा, पैर नहीं तो लंगड़ा कहेगा. क्यों? अंगा भंगा, अंगहीन कहेंगे. ऐसे योग में आठ अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान फिर समाधि. समाधि है नहीं बात. तो यम क्या चीज है? इंद्रिय निग्रह. यम कहते अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमहा, ये इसका कितना हुआ, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच हुआ यम. नियम क्या चीज है? शोष संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आने नियमा, यम नियम. इसके बाद आसन आता है. आज तुम आसन बना लगा करके बैठ गया, जम नियम है नहीं तो योग होगा क्या? हाँ, कोई समा कोई बगीचा में जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं, नाक दबाना शुरू कर देते, मालूम पड़ता मैं बड़ा भारी योगी हूँ. हाँ, ऐसा योग अभ्यास करता रहता है. हाँ, इसका नाम योग नहीं होता. पहले अहिंसा वृत्ति तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए. हाँ, अहिंसा सत्य आना चाहिए, सच्चाई आना चाहिए. अहिंसा सत्य अस्त्य आना चाहिए, धोखा देने का, चोरी करने का, बेईमानी करने का नहीं आना चाहिए. हाँ, फिर परिग्रह से रहित होना चाहिए. ये सब तो है नहीं एक भी. फिर संतोष संतोष शोष शोष पवित्रता तो है नहीं. शोष संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नहीं, हमारे जीवन में तो है ही नहीं. हाँ, चला गया कहाँ, समाधि लगाने के लिए, प्राणायाम करने के लिए. हाँ, लग जाएगा. हिंगी गार्डन में योग करता है बहुत से, हमने पहले पहले घूमते थे ना. हाँ, हिंगी गार्डन में या नाना नानी में भी कभी कभी जाता हूँ ना, देखता हूँ. ऐसे बैठते हैं, ऐसे आंख ऐसे ऐसे कर देखता, हमको कोई देखता है कि नहीं दिखता है? हम तो योग कर रहे, हमको दिखता है कि नहीं दिखता? वो आंख वो कल बताए ना,

0: कैसे ध्यान करना था, ये आंख बंद करके आंख खोल करके, ये आधा आंख बंद करके आधा आंख खोल करके कैसे करते हो? मंत्र मैंने कहा। तो कहने का मतलब सोस संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदानी नियम है, फिर आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम कितना नंबर का आता है? प्राणायाम कुंभक। प्राणायाम तीन प्रकार का, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक, रेशक पूरा कुंभक, रेशक करो पूरा करो। अभी यहां से प्राण अभिमिथ्यते यात्रा, इसमें पहले आया था प्राण अभिमिथ्यते यात्रा, वायु मानी प्राण, जहां वायु मथन होता है, ऊपर नीचे जाना बंद हो जाता है, बिल्कुल सीमा होती है, आने तो कहां होता है ऐसा, उस पर ध्यान करो, आया था। तो इसमें बात प्राणायाम पूरा क्रेशा कुंभ के बाद धारणा प्रत्यार आएगा, और प्राणायाम में आएगा प्राणायाम प्रत्यार फिर धारणा। तो धारणा कहाँ? देशबंध चित्तस्य धारणम, किसी एक देश में चित्त को लगा देने का, समझोगे नहीं? अब कहाँ लगाओगे? नासिकाग्र में लगाओगे कि ललाट में लगाओगे, कि सहसा में लगाओगे, कि सामने दीपक रखा उसमें लगाओगे, और कि आपने जिसको छोड़ करके आया उसमें लगाओगे? हाँ, वो तो बढ़िया है। आज्ञ चक्र में, सहस्राधर में नहीं, अनाहत में नहीं, भ्रिकुटी में नहीं, मूलाधर। देखो हमारे शरीर में षट चक्र होता है, मूलाधारम स्वादिष्ठानम मणिपुरम अनाहतम विशुद्धाक्यम अज्ञान षट चक्राणी भावयेत। ये योगियों के लिए आयो, सबके लिए नहीं। हाँ, जो योगी होगा ना उनके लिए मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधारम गुद उत्तरी वर्तन, गुह्य स्थान में, ऊपर स्थान में, गुह्य के ऊपर स्थान में मूलाधार चक्र रहता है, लिंगमूल में मणिपुर रहता है, मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र रहता है, नाभि में मणिपुर चक्र रहता है, हानि बा हृदय में अनाहत चक्र रहता है, कंठ से विशुद्ध ऐक्य चक्र रहता है, भ्रिकुटी में अनाहत यह रहता है, भ्रिकु आज्ञा चक्र रहता है, और सहस्रार चक्र। अब सहस्रार चक्र भेद करके योगी लोग जाता है, हाँ ब्रह्मलोक में जाता है, योगी लोग जाता है, सब नहीं जाएगा, और आता है तो जाता था जोगी लोग यहां से, पर जीव जब प्रवेश करता है माता के गर्भवास में, इस सहस्राक्ष से ये माता से यहां से इसको कहते रंध्र, ब्रह्म रंध्र, रंध्र माने छेद, इधर एक छेद होता है, वो छेद के अंदर से प्रवेश करता है जीवात्मा। तो जीवात्मा जब जन्म लेता है तो देख लेना टक टक टक टक पिलता रहता है, तो इसमें तेल मालिश करके, तेल लगा लगा करके मालिश को कड़ा कर देता है, क्यों इसे भाग न जाए, नहीं तो जीव भाग जाता है। हाँ, ये कड़ा करते, और जाते वक्त जीव कहां से कौन से दरवाजे में जाएगा? हाँ, नव दरवाजे से किसी एक दरवाजे में जाएगा। अब जिसका जथा कर्म जथा श्रुतम जथा साधनम, जिसका जैसा कर्म होगा, जैसा श्रवण आदि ज्ञान का उपभोग मनन निध्यासन होगा, जैसा उसका उपासना आदि होगा, उसी के अनुसार उसका रास्ता तय होता है। कोई मुख से जाता है, कोई नासिका से जाता है, कोई आंख से जाता है, कोई कान से जाता है, कोई मलमूत्र से जगह में जाता है, कोई ब्रह्मरंध्र छोड़ करके योगियों के जैसे जाएगा। जाने के रास्ता तो अनेक है, पर आने का रास्ता एक ही है। तो मूलाधारम स्वादिष्ठानम मणिपुरम अनाहतम विशुद्धाख्यम आज्ञा चक्र, फिर सहस्राक्ष। तो तुम ध्यान किस में करोगे? योगी लोग नाभि में करेगा, हृदय में करेगा, आज्ञा चक्र में करेगा, भ्रू चक्र में करेगा, जिसको जितना सुविधा होती है ना ऐसा ध्यान करने का होता है। अधारणा पंचनाडिकम, धारणाकार को जिस स्थान में तुमको लगता है ना चित्त वृत्ति लग जाती है उसमें लगाओ। तो कितना देर तक लगाना चाहिए? कम से कम तो कहा धारणा पंचनाडिकम, पांचनाडी माने दो घंटा, दो घंटा तक धारणा करो। ध्यानम षष्ठी नाडिकम, साठ नाडिका, कितना हुआ? हाँ, षष्ठी छाठ साठ सिक्सटी धारणा ध्यान षष्ठी नाडिकम समाधि दिनद्वार पर्यंतम, समाधि बारह दिन के लिए, ये योग दर्शन बताते हैं। तो कितना देर तक धारणा करते हो, ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो? तो ये अभ्यास करने के लिए, जो अभ्यास करता है योगियों के लिए है। तो आपका ध्यान करना बैठोगे तो कहां भी ध्यान करोगे? तो नाभि कमल में करोगे, हृदय कमल में करोगे, एक अंतर कहां करोगे? हाँ, हृदय कमल में करो। हाँ, भगवान हृदय में रहते हैं ना। अहम आत्मा गुडा के सर्वभूताश्रय, अहम आदेश मध्यम से भूताना मंत्री वश, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ा निमाया, कहे के नहीं? तो ये मतलब कहने का धारणा ध्यान, धारणा के बाद ध्यान। तो धारणा के परिपक्व अवस्था का नाम ध्यान है। याद रखना, ध्यान अलग चीज नहीं है। आपने जहां चित्तवृत्ति को लगाया उसमें आकर परिपक्व पांच घंटा हो गया, इसके बाद धारणा ध्यान आएगा। और ध्यान के परिपक्व अवस्था को नाम समाधि। तो समाधि में क्या होता है? समाधय चित्तवृत्ति निरोध, जिसमें अवस्थायाम, जिस अवस्था में चित्त के तमाम वृत्तियां समाहित हो जाता है, समाहितायाम सति चित्तवृत्तो। हाँ, तो समाहितायाम सति चित्तवृत्त, तमाम चित्तवृत्तियों जहां जाकर समाहित हो जाता है एक साथ, याद रखना, एक साथ समाहित हो जाता है, उसका नाम समाधि। समाधि माने कब्रिस्तान, बताया था कल, क्या लगे नहीं? समाधि माने कब्रिस्तान। महात्मा का समाधि देखा कि नहीं देखा? महात्मा लोगों का समाधि, महात्मा मरने की बात भी पूजा होते हैं, महात्मा की अंत्य की पूजा होती है, जिंदा की पूजा होती है, मरने के बाद भी पूजा होते हैं, समाधि की पूजा होती है महात्माओं की। पंजाब में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, ज्ञानेश्वर का समाधि पूजा होती है ना, जीवित, वो जीवित समाधि थे। हाँ, तो चलिए, यत्र जस्मिन् पुरुषे मिथ्यते स्वदेह मरणे कृत्वा इत्यादिना पूर्वोक्त ध्यान निर्मथनेन वायुर् यत्र अभिरुध्यते शब्दम अव्यक्तम रेशकादिकरणात्, वागे ना, सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोम सोम माने चंद्रमा, सोम माने सोमरस, सोम माने शांति, सोम माने कमल, आनंद अतिरिच्यते अरेक धर्म सेवया तत्र तस्मिन् जगदान तभ प्राणायाम समाधि विशुद्ध अंतकरणेन संजायते। देखा, सोम यत्र अतिरुच्यते, इसी का अर्थ कर रहा है, अनेक जन्म सेवया, जन्मांतर सहस्रशु तपो ज्ञान समाधि भी, ये आगे आएगा। अनेक धर्म संसिद्ध ततो जाते परांगते आया कि नहीं गीता में अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाते परांगति परम गति का प्राप्ति कब होगा अनेक जन्म जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रसायते जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी क्यों तप ज्ञान समाधि यज्ञदाना तप कर्म पावनाने मनीषी ने बतलाएगी नहीं गीता के 18वां अध्याय में भगवान ने बतला दिया यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यम यज्ञ दान तपस्व पावनाने मनीषी नाम जब तक यज्ञ दान तप आदि निष्कम भाव से याद रखना करोगे नहीं तो अंतकरण शुद्ध होगा नहीं यज्ञ दान तप कर्म पावनाने मनीषी नाम मनीषियों को पवित्र करता है यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम ये त्याग नहीं करना चाहिए यज्ञ भी करना चाहिए अग्नि जत्र मिथ्यते अभी मिथ्यते उसी का ये जत्र अग्नि मंथन होता है यह मंथन के बिना अग्नि प्रकट नहीं होगा अभी अग्नि प्रकट नहीं होगा आहुति डालोगे नहीं आहुति डालोगे नहीं तुमको स्वर्ग कौन ले जाएगा स्वर्ग ले जाने के लिए आहुति डालना पड़ेगा कि नहीं हाँ अग्नि अग्निकर्म अग्निकर्म यज्ञ कर्म को अग्निकर्म कहते हैं हाँ तो कहते हैं अनेक जन्म सेवया अनेक जन्मों से तुमने तपो ज्ञान समाधि यज्ञ दान तप कर्म आदि करते आए यज्ञदान तप कर्म आदि करते करते तत्र तस्मिन् यज्ञदान तप तप प्राणायाम प्रत्याहार समझ लेना प्राणायाम के बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि शुद्ध अंतकरण शुद्ध अंतकरण में संजायते किम संजायते मन संजायते समुत्पद्यते मन उत्पन्न होता है मन तदाकार ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी वृत्ति जो है ना मन बनेगा परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकरम देखा वो बोला मन उत्पन्न होता है आपका मन को अनिवार्य जो मन उत्पन्न होता है वो जगह में जत्र मन अभिनिष्पद्यते है वायु अभिनिष्पद्यते है मन तत्र संजायते तो मन तत्र संजायते कहा अग्नि जत्र अभिरुद्धते एक जगह और दूसरा वायु जत्र सम अभिरुद्धते दूसरा है और जहां सोम जत्र अधिरिच्छते तत्र मन समझाएते ये तत्र मन समझा मन को तीन जगह में लगाना याद रखना यज्ञदान तप कर्म करोगे तो मन शुद्ध होगा मन हुआ लगेगा शुद्ध अंतकरण में ही परमात्मा का दर्शन होता है अशुद्ध अंतकरण में क्यों नहीं होता है परमात्मा तो सब जगह में रहता फिर के दर्शन क्यों नहीं होता है अभी देखो जल है समुद्र में या बरसात हो रही है तालाब के जल गंदा हो गया नदी का जल गंदा हो गया और दिन का समय है सूर्य उदय हुआ अथवा रात्रि के समय चंद्रमा उदय हुआ अब वो जल में मलिन जल में तुम सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब देख सकते हो आकाश में सूर्य भी है नीचे जल भी है उपाधि भी है भी क्यों नहीं देख सकते हो जल मलिन है मलिन जल में दर्शन नहीं होता है तो ऐसे जब तुम्हारा अंतकरण मलिन रहेगा तो मलिन अंतकरण में आप परमात्मा का दर्शन होगा तो परमात्मा है कि नहीं सब जगह में तो परमात्मा जो सब जगह में है हमारे अंतकरण में भी है हमारे अंतकरण में भी है कि नहीं तो हमारा अंतकरण में होता हुआ परमात्मा को हम क्यों नहीं देख सकते तो जैसे अंतकरण या मलिन जल में सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब दिखने में नहीं आता है ऐसे अशुद्ध अंतकरण में परमात्मा का दर्शन नहीं होता तो अंतकरण परमात्मा को दर्शन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कोई बात यह बता रहा देखो परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकर मन समुत्पद्यते तत्र वो निशे जो है ना तत्र लिखा वहां लिखना तस्मिन् जगतः तपो प्राणायाम समाधि भी शुद्ध अंतकरण है। तत्र माने उस अंतकरण में मिला ना, पंक्ति मिलेगी नहीं, वो देख लेना। तत्र तस्मिन् जगतः तप प्राणायाम समाधि शुद्ध अंतकरण में मन संजायते समुत्पद्यते है, मन उत्पन्न होगा। तो मन उत्पन्न होगा माने मन पैदा होता ऐसा नहीं, मन तदाकर वृत्ति वाला बनेगा, ब्रह्माकार वृत्ति परमात्माकार वृत्ति बनेगा। हरि ओम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karmashaka, Adhyayam 19.
2: Atha Eko Navimsho Dhyayaha
3: Om
2: Imagyastha Namurjasvantan Dhyapam Prapeenam Agne Sarirasya Madhye Utsanjushasva Shatadha Aramarvant Samudri Yagya Sadana Mavishasva घृतं मीमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुष्वधमावाहमादयस्व स्वाहा आकृतं वृषभवक्षि हव्यं समुद्रादूर्मिर्मधूमा उदारदुपाग्यशुना समामृतत्वमानट घृतस्य नाम गह्यं यदस्ति जिह्वा देवानामृतस्य नाभिः वयन्नाम प्रब्रावाम घृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयाम नमोभिः उपब्रह्मा शृणवच्छस्य मा

0: कन्या इव वहतु मे तवाउ अञ्जिञ्जाना अभि चाकशिमी
1: यत्र सोमः सूयते यत्रायज्ञो घृतस्य धारा अभि तत्पावन्ते
2: अभ्यर्षत सुष्टुते।

0: स्तोमश्च यजुश्च रक्षसामा च बृहच्च रथन्तरम् च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापातेः प्रजा अभूमवेत् स्वाहा। इति एकोनविंशोऽध्यायः।
1: ॐ ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

नमस्तुभ्यं त्रिलोकीनंदनाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय वसुदेवाय ते नमः। संकर्षणा

विष्टरश्रवसेतुभ्यं नमः सत्यमयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः। नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वै नमः। ब्रह्मगाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्त्वीश तपसा फलदायिने। स्तुत्याय स्तुतये नित्यं स्तुतिसंप्रीतचेतसे। श्रुत्याचारप्रसन्नाय श्रुत्याचारप्रियाय च चतुर्विधस्वरूपाय।

ताम पुत्रलाभोसी वायुर्वेगवतांसी नित्यकर्मसु सर्वेषु संध्योपास्तिर्भवान्मतः।

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्ण प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय।

0: जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिर्दृढा मेऽद्य वर्धमाना भवत्विति। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।

चतुर्मुखाः। तुम जिसको शिव कह रहे हो वह तो प्रकृति में पहला क्षोभ महत्त्वत्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार में तीन गुण विद्यमान हैं, उस तमोगुण के स्पर्श के चलते तमो अंश में जो पुरुष चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा उस तमोगुण के संसर्ग के चलते शिव उत्पन्न होता है। और तुम कहते हो शिव से जगत उत्पन्न होता है, लेव जी कहां से आ गया वो शिव है? महातत्व को किसने उत्पन्न किया? महातत्व को तो उत्पन्न किया प्रकृति ने पहले विकार के द्वारा, फिर उस प्रकृति महातत्व ने अहंकार उत्पन्न किया, अहंकार में जो तमो अंश है उस तमो अंश से पंच महाभूत, पांच गुण और साथ ही उस तमो गुण के अंश से शिव उत्पन्न हो गया। ये तो प्रकृति का तीसरा कार्य है जिसको तुम शिव कहते हो। तमो गुण के अंश से शिव होगा तामसिक, और जिसको तुम विष्णु कह रहे हो वह रजोगुण के अंश से उत्पन्न हुआ है, राजसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से शिव, राजसिक अहंकार से विष्णु, नहीं सात्विक अहंकार से विष्णु और राजसिक अहंकार से ब्रह्मा। तो तुम जिसको त्रिदेव बोल रहे हो, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तो प्रकृति का कार्य महतत्व, महतत्व का कार्य त्रिविध अहंकार, उसका कार्य है ये तीन। हा अन्यथा तो तमोगुण हो तो शिव शिव नहीं रहेगा, रजोगुण हो तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहेगा, सत्वगुण हो तो विष्णु विष्णु नहीं रहेगा, और त्रिविध पंचविध आकाश नहीं रहेगा, पंचविध विषय नहीं रहेंगे। देव सदा शिव चेन्द्रो रुद्रो विष्णु चतुर्मुख, इंद्र भी सब उसी से पैदा हुए। ये तो तमोगुण के अंश से सात्विकात् स्याद् अहंकारात् अंतःकरणम् इन्द्रियम्। अब जीव कैसे उत्पन्न हुए? बोले उस सात्विक जो अहंकार, तामसिक अहंकार से तो आकाश आदि शब्द आदि और शिव उत्पन्न हुए, और ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ? तो बोले उसी सात्विक अहंकार से सबसे पहले अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हुए, और उसी से ज्ञान इंद्रियां पांच उत्पन्न हुए, उनके विषय तमोगुण से उत्पन्न हुए ज्ञान इंद्रिया के शब्द स्पर्श आदि, और खुद ज्ञान इंद्रिया उन विषय का ग्राहक ज्ञान इंद्रियां सत्वगुण से उत्पन्न हुए। सात्विकात् स्याद् अहंकारात् अंतःकरणम् इन्द्रियम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तकरणम् अंतरम्। ये चार भेद वाला अंतःकरण उत्पन्न हुआ, और उसमें ये साथ साथ ही ये चार धर्म भी उत्पन्न हो गए उसी अंतःकरण में से, संशय। तो सात्विक अहंकार से अंतःकरण पैदा हुआ तो उसी अंतःकरण में संशय भी पैदा हो गया, उसी अंतःकरण में निश्चय भी पैदा हो गया, उसी अंतःकरण में गर्भ भी पैदा हुआ और उसी अंतःकरण में स्मरण भी पैदा हुआ। तो संशय का संबंध अंतःकरण के मन के साथ जोड़ दिया, निश्चय का संबंध अंतःकरण के बुद्धि के साथ जोड़ दिया, गर्व का संबंध अंतःकरण के अहंकार के साथ जोड़ दिया, और स्मरण का संबंध अंतःकरण के चित्त के साथ जोड़कर ये चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के धर्म के रूप में, कार्य के रूप में, ये संशय निश्चय गर्भ और स्मरण ये उन अंतःकरणों के विषय उत्पन्न हो गए। ये इंद्रियों के विषय नहीं है। इंद्रियों के विषय क्या हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय का विषय हो गया।

0: और अंतकरण के विषय नहीं है। अंतकरण के विषय क्या है तो बोले संशय निश्चय गर्भ और स्मरण। गर्भ माने अभिनिवेश। तो क्या समझता है मुझे, मैंने मास्टरी की है, डॉक्टर किया है, पीएचडी की है, तो मुझे क्या समझता है, इसको कहते हैं गर्व। यह अंतकरण के अंतर्गत का अहंकार का कार्य है, अहंकार का विषय है यह। उसी बात को और आगे स्पष्ट करते हैं। श्रोत्र चक्षुषी जिह्वा घ्राण संज्ञानम ज्ञानेन्द्रियम विदु दिग्वात सूर्य वरुणासना सत्यो देवता स्मृत। उसी सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय भी उत्पन्न हो गई और उसी सात्विक अहंकार से फिर इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के देवता भी उत्पन्न हो गए। हा, वो देवता क्या है? दिग देवता कान के, बात वायु देवता त्वचा के, सूर्य चक्षु के देवता, वरुण जिह्वा के देवता, अश्विनी कुमार ना सत्यु अश्विनी कुमार ये घ्राण के देवता। ये पांच देवता भी किससे उत्पन्न हुए? महातत्व से उत्पन्न हुआ हुआ त्रिविध अहंकार, त्रिविध में से सात्विक अहंकार से विष्णु और उसी सात्विक अहंकार से अंतकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसी सात्विक अहंकार से संशय निश्चय गर्व और स्मरण, उसी सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां और उसी सात्विक अहंकार से उन ज्ञानेन्द्रियों के अधिदेवता पांच अधिदेवता ये भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। राजसात शिव अहंकारात् कर्मेन्द्रिय समीरिण। अब तीसरा जो अहंकार है राजसिक अहंकार, उससे पांच कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुए और पांच समीर उत्पन्न हुए, वायु पंचवायु उत्पन्न हुए। देखो सृष्टि में यही तो सब है, इसके अलावा और क्या है? बोलो, सभी आ गए कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए उस सृष्टि में, उसी में आ गए पृथ्वी वायु तेज और आकाश आ गए, उसी के अंतर्गत आ गए और उसी के अंतर्गत ये अंतकरण आ गए, उसी के अंतर्गत अंतकरण के विषय आ गए, उसी में आ गए ये सब देवता आ गए, इंद्रियां आ गई कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां पंच प्राण, और क्या चाहिए जगत में? ये तो जगत है, ये सब के सब कर्म इंद्रियाणि वाक्पाणी पादपायुपस्थकम् प्राणोपान समान चोदान व्यानौ च वायवः भूतैस्तु पंचभिः प्राणैः चतुर्दशभिरिन्द्रियैः चतुर्विंशति तत्त्वानि सांख्यशास्त्रविदो विदुः। ये सब मिलाकर कार्य कारण पुरुष सबको मिलाकर ये 24 वस्तु ये जगत के पहले ये थे और अभी भी यही हैं और ये जगत का मतलब है कि यही 24 वस्तु के अंतपाती हैं। ये चतुर्विश संख्या तत्व के रूप में मानने वाले होने के कारण, संख्या के रूप में मानने के कारण उनको सांख्य कहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी इसके बारे में कहते हैं आगे, ये श्लोक का अब अर्थ है। वेदांती अब उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई तुम जिसको ये सब प्रक्रिया से बता रहे हो तुम सुन लो। सर्वे विकल्पा प्रागासन बीज अंकुर इवात्मनि। तुमने जितनी विकल्प हैं के सामने रखी, पुरुष प्रकृति, पुरुष का प्रकृति में प्रतिबिंब से महत्त्व, महत्त्व के विकार से त्रिविध अहंकार, तामसिक अहंकार से आकाश आदि पंचभूत, तामसिक अहंकार से शिव रुद्र, सात्विक अहंकार से अंतकरण चतुष्टय, सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां, सात्विक अहंकार से उन इंद्रियों के अधिदेवता, राजसिक अहंकार से पांच कर्मेंद्रियां, उसी राजसिक अहंकार से पांच कर्मेंद्रियों के अधिदेवता, उसी राजसिक अहंकार से पांच कर्मेंद्रियों के कर्म आदान गमन विसर्जन बदन, ये कर्म विषय, और उसी से पंच प्राण, ये जो कुछ विकल्प तुमने बताई है, ये सारे के सारे विकल्प उसी सजातीय विजातीय सुगत वेदत्रय शून्य एक शुद्ध ईश्वर में पहले से ही विद्यमान थे। लेकिन कैसे थे? बीजस्यांतरिवांकुरो, ये बीज से पहला अंकुर उत्पन्न हुआ। सांख्यों की प्रक्रिया यही ना है, जैसे पहले से बीज से पहले क्या उत्पन्न होगा? अंकुर। और फिर उस अंकुर से क्या उत्पन्न होगा? दो पत्ते। फिर कालांतर में दो के जगह चार पत्ते, चार के जगह आठ पत्ते, आठ के जगह दस पत्ते, पत्तों में वो अंकुर बढ़ता जाएगा। फिर कालांतर में उन पत्तों की जड़ों में से फिर शाखाएं उत्पन्न होंगे, और शाखा के बाद फिर उपशाखाएं उत्पन्न होंगे, उसी में से हजारों पत्ते उत्पन्न होंगे, उसी में से हजारें हजारों उपशाखाएं उत्पन्न होंगे, और उसी में से हजारों फल लगेंगे, हजारों फूल लगेंगे। ये सब के सब का कारण एक ही है, बीज। लेकिन बीजावस्था में ये सारा का सारा वृक्ष अपने नाम रूप विकल्प के रूप में नहीं था, अविकल्प के रूप में था। विकल्प के रूप में नहीं था लेकिन अविकल्प के रूप में था। यदि बीज में वृक्ष अविकल्प के रूप में न होता, विकल्प के रूप में रहता है कहोगे, तो इतना छोटा सा बट बीज के अंदर इतना बड़ा बट वृक्ष का विकल्प कैसे समाएगा? तो विकल्प के रूप में तो नहीं, विकल्प शब्द का अर्थ जान समझ रहे हो ना, नाम और रूप, पत्ता एक नाम, पत्ता का रूप, इसलिए शाखा एक नाम, शाखा का रूप, फल एक नाम, फल का रूप, फूल एक नाम, फूल का रूप, ये नाम और रूप को विकल्प कहते हैं। जहां नाम और रूप व्यक्त नहीं हुआ है वहां निर्विकल्प कहते हैं। ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा में ये जगत किस रूप में था? निर्विकल्प के रूप में था, विकल्प के रूप में नहीं था। और विकल्प वही होता है जहां एक से दूसरा होता है, एक की अपेक्षा दूसरा होता है तो वहां विकल्प होता है, और जहां एक की अपेक्षा दूसरा है ही नहीं तो वो क्या हो गया? निर्विकल्प, निर्विकल्प हो गया। वस्तु एक ही है तो वहां निर्विकल्प हो गया, विकल्प उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई समानांतर नहीं है, उसका कोई सजातीय नहीं है, कोई उसका विजातीय नहीं है, कोई उसका स्वगत नहीं है, तो वो हो गया क्या? निर्विकल्प। जैसे आप अकेले हैं कमरे में, उस कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं है, तो आप अकेले होने पर भी आप अकेले नहीं हैं, आप में स्वगत भेद विद्यमान है। आप में स्वगत भेद क्या है? आपका सिर है, सिर से भिन्न हाथ है, हाथ से भिन्न सिर है, ये एक ही में होने वाला ये विकल्प है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? स्वगत भेद। एक ही में भिन्नता सिद्ध होता है जहां, उसको स्वगत भेद कहते हैं। हाथ से सिर अलग, सिर से हाथ अलग, कान से नाक अलग, नाक से कान अलग, कान से हाथ और सिर अलग, कान से सिर और हाथ अलग, कान से नाक सिर हाथ मुख अलग, ये क्या है? एक ही में होने वाले भिन्नता को स्वगत भेद कहते हैं। क्या सृष्टि से पहले यानी वृक्ष उत्पन्न होने से पहले उसी बीज में इस प्रकार के शाखा पत्ते फूल है धड़ फल ये अलग अलग उसी बीज के अंदर विद्यमान थे स्वगत भेद के रूप में? स्वगत भेद के रूप में न होने के कारण उनको कहा निर्विकल्प। स्वगत भेद के रूप में होता तो सभी कल्प ही होता, निर्विकल्प नहीं होता। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम् प्राक निर्विकल्पम पुनः इदम् जगत। इस समय अलग अलग नाम रूप आदि के विकल्पों के रूप में प्रतीत होता हुआ ये जगत, इस रूप में प्रतीत होने से पहले ये कहां था? तो परमात्मा में इन विकल्पों से रहित था। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध एक परमात्मा था, स्वगत विजातीय और सजातीय भेद से रहित था। परमात्मा परमात्मा दो परमात्मा होते तो वहां कौन सा भेद माना जाता है? सजातीय भेद माना जाता है। जैसे अभी सजातीय भेद यहां विद्यमान है, मनुष्य मनुष्य में एक से दूसरे की भिन्नता, इसको क्या बोलते हैं? सजातीय भेद। और मनुष्य और कुर्सी में एक दूसरे में भिन्नता, ये कौन सा भेद मानते हैं? विजातीय। कुर्सी भिन्न है, मनुष्य भिन्न है, कुर्सी कुर्सियों में जो भिन्नता है, एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी की भिन्नता, सजातीय भिन्नता। एक ही कुर्सी में हत्था, उसके टांग, उसकी हत्था, उसके पीछे का पीठ का, ये क्या है? स्वगत भेद। ये देख लो, एक ही कुर्सी में हत्था अलग है हाथ रखने वाला, और उस कुर्सी के चार टांग अलग है, चारों टांगों में से भी चार अलग अलग हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्वगत भेद। ये कुर्सी अकेले रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, और कुर्सियों के साथ रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, अन्य मनुष्यों के साथ रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा। तो वह सावयव होने के कारण, सापेक्षित होने के कारण यह निर्विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कुर्सी है, अभी स्वगत भेद के रूप में प्रतीत होने वाला कुर्सी, मूल पेड़ में जिस समय यह लकड़ी के रूप में था, क्या ये कुर्सी स्वगत भेद के रूप में था वहां? है? टांग अलग, हत्था अलग, पीठ अलग, इस रूप में था? है? तो वो क्या वहां कुर्सी वो कुन रूप किस रूप में था? निर्विकल्प के रूप में था। यदि कुर्सी उस पेड़ में न होता तो फिर उस पेड़ से कुर्सी न बनती। पानी में कुर्सी निर्विकल्प रूप में था कि नहीं, बोलो? पानी में कुर्सी निर्विकल्प के रूप में था कि नहीं था? तो फिर पानी में से लकड़ी निकालो, लकड़ी में से कुर्सी बना लो। अब उसकी पानी में निर्विकल्प कुर्सी था तो उसको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पानी को जमीन में लगाओ, उसमें बीज डालो। अरे बाबा, वो सब पानी से नहीं बीज से उत्पन्न हुआ है। हर कार्य अपने कारण में निर्विकल्प के रूप में रहता है, हर कार्य अपने कारण में रहता है, लेकिन निर्विकल्पक में रूप में रहने के कारण द्वैत सिद्ध नहीं होता, ये ध्यान देना। सांख्य दो कारण को मानते हैं, वेदांत एक कारण को मानता है, और एक कारण को मानने के कारण कार्य कारण में पहले से रहता है। जैसे तेल तिल में पहले से रहता है, तेल सरसों में पहले से रहता है, तभी उस सरसों को तिल को फेलने के बाद तेल प्रकट होता है। प्रकट होने से पहले वहां अव्यक्त रूप में था, प्रकट हो गया तो व्यक्त हो गया। कुर्सी लकड़ी में अव्यक्त था, निर्विकल्प था, लकड़ी से कुर्सी व्यक्त हो गया, सविकल्प हो गया। तो सविकल्प और निर्विकल्प ये दो अवस्था हैं पदार्थों की। कार्य के रूप में सविकल्पक के रूप में प्रतीत होता है, वही पदार्थ कारण में निर्विकल्पक के रूप में रहता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे पूरा का पूरा वट वृक्ष छोटे से वट बीज के अंदर निर्विकल्प के रूप में संस्कार के रूप में रहता है, बीज मात्र रहता है और उसी बीज में से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से सारा का सारा वृक्ष प्रकट होता है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में एकमात्र सदाशिव परब्रह्म परमात्मा सजातीय विजातीय स्वगत विकल्प रहित था और वो परमात्मा में से ये जगत अंकुर की तरह पैदा हो गया और इस जगत वृक्ष के रूप में दिख रहा है। इसलिए गीता में जगत को वृक्ष का ऊर्ध्वमूल मदशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद सवेदवित्। आगे मूल वेदांत के हिसाब से अब इस श्लोक का विचार करेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kulachirai Nayanar, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum sunenge aur ek sant ya Nayanmar ki kahani jinka naam Kulachiraiya tha. Tirugyan Sambandar ke yug mein Nindrasit Nedumaran पांडिराज के शासक थे। वे कूम पांड्यन के नाम से भी विख्यात थे। कई महत्वपूर्ण युद्धों में कूम पांड्यन का साथ देकर उन्हें विजयश्री दिलाने का श्रेय उनके अमात्य कुलचिरैयार का था। राजा स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे, पर कुलचिरैयार शैव धर्म में स्थिर रहे। यही नहीं, उन्होंने चोल भूमि से तिरुज्ञान संबंधर को आमंत्रित करके पांड्य देश में शिव भक्ति के प्रचार का सराहनीय कार्य किया था। पांड्य देश में मनमेरपुरी नामक गांव में कुलचिरैयार का जन्म हुआ था। शिव भक्त चाहे किसी जाति कुल या अथवा कुल विहीन क्यों न हो, उनकी आराधना शिव रूप में ही वे करते थे। भक्त अकेले आए या मंडली में आए, उनका आदरपूर्वक सत्कार करना, भोजन कराना और साधुओं की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं देकर विदा करना उनका नियमित कार्य था। पांडे रानी मंगेर करसी को शैव धर्म के पालन करने में और उसका संवर्धन करने में पूरा सहयोग अमात्य कुलचिरैयार ने प्रदान किया। 7वीं शताब्दी के तमिलनाडु की यह कथा उस युग के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नेंसीरर नेडुमरन अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। पल्लव राजाओं के बाद सारे तमिलनाडु को एक छत्र के नीचे लाने का गौरव उन्हें ही प्राप्त हुआ, परंतु राजा जैन धर्म को पालन करने वाले थे। अतः पांड्य देश के लोग भी जैन धर्म स्वीकार करने लगे थे। शैव धर्म में पूरी निष्ठा से युक्त कुलचिरैयार नेडुमरन के प्रधान आमंत्रित थे, पर नरेश ने अपने आमंत्रित को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। राजनीति में निपुण नेडुमरन धार्मिक दृष्टि से उदार थे। वे जानते थे कि आमंत्रित कुलचिरैयार और रानी मंगईकरसी द्वारा शैव धर्म के प्रचारक तिरुज्ञान संबंधर को आमंत्रित किया है ताकि शैव धर्म का प्रसार हो सके, परंतु उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। आज की स्थिति भिन्न है। लोग सत्ताधारी के स्वर में स्वर मिलाते हैं, अतः सत्य का धर्म का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। कुलचिरैयार का जीवन उच्च आदर्शों से युक्त और अनुकरणीय है, इसी कारण उन्हें नायनमारों की श्रेणी में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Perumalai Kurumba Nayanar, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek dakshin bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani jinka naam Perumalai Kurumbar hai. Tamil Nadu ke Mellai pradesh ki rajdhani Perumalai nagari mein ek dhani vyakti rehta tha jiska naam Kurumbar tha. Unki nishtha santon aur shiv bhakton ke seva mein thi. Bade prem se unka aadar satkar karna, prem purvak bhojan karana, जाते समय दान दक्षिणा देकर विदा करना उनका प्रतिदिन का व्यवहार था। इसमें उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था। एक बार कुरुम्बर ने नंबी आरोह की योग सिद्धियों के विषय में सुनकर उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया। सुंदर मूर्ति संत या नायनमार को ही नंबी आरोह कहा गया है। दर्शन करते ही उनका हृदय ऐसा विभोर हुआ कि कुरुम्बर ने उसी क्षण उन्हें गुरु धारण कर लिया और उनके नाम को ही तारक मंत्र मानकर योग साधना का मार्ग ग्रहण किया। दृढ़ विश्वास पूर्वक गुरु के पवित्र नाम को ही ईश्वर साधना के मार्ग में ग्रहण करके कुरुम्बर को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो गईं। एक दिन कुरुम्बर को अपनी योग सिद्धि द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके गुरु नंबी आरूर कैलाश यात्रा पर प्रस्थान कर चुके हैं, अर्थात उन्होंने देह त्याग दी है। कुरुम्बर ने विचार किया, गुरुदेव कैलाश की ओर चले गए, गुरु के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, पुतली के बिना आंख का क्या प्रयोजन है। स्वयं भी कैलाश जाने का निश्चय किया। उसी समय ध्यान समाधि में बैठ गए, अपनी जीवात्मा को योग साधना द्वारा कपाल के ब्रह्म रंध्र से बाहर निकाला और गुरु से पहले कैलाश पहुंचे। पेरिय पुराणम में सामान्यतः ऐसे संतों का वर्णन है जो किसी सिद्धांत या परंपरा को अपना जीवन लक्ष्य बनाकर उसका पालन दृढ़ता पूर्वक करते हैं। कुरुम्बर और तिरुमलर दो संत इसके अपवाद हैं। कुरुम्बर ने सुंदर के नंबियारूर नाम को ही तारक मंत्र के रूप में धारण करके योग साधना की और दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की। आजकल शून्य में हाथ हिलाकर विभूत सेब या घड़ी निकालने के चमत्कार को ही ब्रह्मवश सिद्धि माना गया है। यह तो यक्षिणी विद्या है, इनका अष्ट सिद्धियों अनिमा लघिमा महिमा आदि से कोई संबंध नहीं। जिनके पास ये सिद्धियां आ जाती हैं, वे साधारण जादूगरों की तरह उनका प्रदर्शन नहीं करते। अत्यंत आवश्यक होने पर ही लोक कल्याण की भावना से वे इनका प्रयोग करते हैं। योग समाधि में बैठकर कुंडलिनी को जगाकर अपनी जीवात्मा को सहस्रार में ले आना और कपाल वेदन करके इच्छानुसार देह त्याग करना योगियों के लिए एक संभव क्रिया है। कुरुम्बर ने निष्काम भाव से एकाग्रचित्त होकर मंत्र का निरंतर जाप करके योग के मार्ग में सफलता प्राप्त की। वडलोर के ज्योति उपासक रामलिंग स्वामी का कथन है कि भूखे को अन्न खिलाना, शाकाहारी होना, किसी जीव को हिंसा न करना, इन व्रतों का पालन करते हुए जीवन को योगमय बनाने से किसी भी स्थिति में ईश्वर के चरणों को प्राप्त किया जा सकता है।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Dhyaya Nityam Mahesam Rajat Girinivam Charu Chandravatansam रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणेर व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथशिष्यं श्री शंकराचार्य मथस्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सुमार्दधारिणे ओम शांतिः शांतिः शांतिः।

0: ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस विषय पर प्रवचन चल रहा है। अभ्यास के लिए 87वां श्लोक 87। असनम गरलम फणीकलापो वसनम चर्म च वाहनम महोक्ष मम दास्यसि किम् किमस्ति सम्भो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि यदा कृताम्भो निदिशे दुवन्दन करस्थलाध कृतपर्वताधिपः भवानिते लङ्घित पद्मसंभवस् तदा शिवार्चास् तव भावनक्षमः नतिभिर्नुतिभिस्त्वमीश पूजा विधिभिर्ध्यानसमाधिभिर्न तुष्टौ धनुषा मुसलेन चास्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि शम्भो अहमुद्योगविदा सुते प्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि असनं गरलं फणीकलापो वसनं चर्म च वाहनं मोक्ष मम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि शिवानंद लहरी में बहुत से अनमोल रत्न हैं। उन रत्नों में से एक ये भी है, ये श्लोक भी है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एको बारी जबान दवा छिरी नभो व्याप्तम तमो मंडलम, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। ऐसे ऐसे बहुत से श्लोक हैं जो साधक शिव भक्त नित्य निरंतर गुनगुनाते रह सकते हैं, रहना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ही इस श्लोक के द्वारा भगवान शिव से कह रहे हैं मानो कि महाराज मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, और उस भक्ति की बदौलत संसार में बहुत कुछ पाने की आशा नहीं रख सकता। संसारी लोग आशा करते हैं, लेकिन मैं उन संसारियों में से नहीं हूं जो आपकी भक्ति की बदौलत कुछ पाना चाहते हैं। कुछ विरोधाभासी श्लोक हैं इसमें, इस स्तोत्र में। पहले तो कहा कि महाराज आप अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकते, बहुत कुछ दे सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। किसी चीज की कमी नहीं है, शायद इसी आशा से सभी लोग आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। अब इस श्लोक से शंकराचार्य जी कहते हैं आपके पास देने के लिए है ही क्या, कुछ भी नहीं है। आपकी भक्ति करके लोगों को मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हो तब न मिले। ये विरोधाभासी श्लोक है। इससे पहले जो श्लोक है 27वां श्लोक, उसमें कुछ ऐसे भाव व्यक्त किए हैं कि आपके पास बहुत कुछ है। करस्थे हे माद्रव 27 उसमें नहीं है, मैं आपको बता, ये शिवानंद लहरी का ही है। वो तो 3 साल पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है, कैसेट सुन लेना। करस्थे हे माद्रव गिरीशा, संबोधन है गिरीशा। हे गिरीशा करस्थे हे माद्रव निकटस्थे धनपतौ, सोने का पहाड़ तो आपके हाथों में ही है। हे माद्र हेम माने सुवर्ण, तो सोने का हिमाल देखने की इच्छा हो तो नेपाल आ जाओ ना। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, अब अक्टूबर के बाद फरवरी मार्च तक सुबह और शाम दोनों टाइम आपको सोने का हिमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह जब सनराइज होता है तो सूर्य का जब प्रथम किरण उस हिमालय में पड़ता है, सफेद हिमालय में नवोदित भगवान सूर्य का जब किरण पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सोने का पहाड़ खड़ा है। बड़ा ही मोहक होता है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर आते जाते हैं तो वह हिमाल फिर चांदी में बदल जाता है। रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम, बाद में रजतगिरि हो जाता है। पहले हेमाद्री सोने का होता है, बाद में फिर चांदी का होता है, दिन भर चांदी का रहता है। जब शाम को सूर्य अस्ताचल को जाने लगते हैं, सनसेट, उसके अंतिम किरण फिर उस हिमालय में पड़ते हैं, फिर सोने का हो जाता है वो, बिल्कुल गोल्डन सुवर्णमय, क्या मोहक हो जाता है। और पूरी तरह सूर्यास्त हो जाने के बाद वह फिर हिमालय लोहे के रूप में बदल जाता है। रात भर अंधकार के अंदर ढका रहता है, दिन भर चांदी, रात भर लोहा, लेकिन बीच में 10 मिनट के लिए सुबह, 10 मिनट के लिए शाम को, खाली 10 मिनट भी नहीं, 10 मान लो 10-12 मिनट के लिए बिल्कुल गोल्डन है। इतना क्या मोहक हो जाता है। आपको फ्री दिखा देंगे, आप आइए। उस बात को शंकराचार्य जी संकेत कर रहा है, आश्रम के तरफ से आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, हर चीज की सुविधा वहां मिलेगी। अब आप अपने आप से दुखी हो जाएं तो भगवान जाने, आप अपने घुटनों से दुखी हो, अपने कमर से दुखी हो, अपने पेट से दुखी हो, अपने सिर से दुखी हो, तो उसका तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, है ना? बाकी जो व्यवस्था की दृष्टि से आपको गर्म पानी मिलेगा, है, टॉयलेट बाथरूम अटैच कमरे मिलेंगे, है, भोजन बढ़िया मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्जी, वेजिटेबल फूड, सब ऑर्गेनिक मिलेगा, और बढ़िया हवा पानी, बापा, चारों तरफ रुद्राक्ष का जंगल है, 500 पेड़ हैं रुद्राक्ष के, क्या शिवमय रुद्रवन है, रुद्रवन, उसके बीच में आश्रम है, न कुत्ते हैं न कुक्कुड़ हैं वहां, है? क्योंकि चोटी पर खाली आश्रम ही है, कोई बस्ती है ही नहीं आसपास में, बस्ती न होने से न मुर्गे हैं न कुत्ते हैं, पक्षी कलरव क्या, कोयल, बढ़िया सुंदर है। प्रसंग क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं, करस्थे हेमाद्रव, सोने का पहाड़ तो आपके हाथ में है, और निकटस्थे धनपतव, कुबेर तो आपके नजदीक हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो आप क्या नहीं दे सकते हो भक्तों को, बोलो। इसीलिए सारी दुनिया आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि आप सबको देते हो, लुटाते हो। गृहस्थे स्वरभूजाम अमर सुर भी ही, हाँ? सुरभुजाम अमर सुरभि, भुजा भुजा स्वर भुजा स्वर्ग का वृक्ष, भू माने पृथ्वी, भू से उत्पन्न हुए कौन वृक्ष, तो वृक्ष का नाम क्या है भुजा, भू तस्मात जात इति भुजा, कौन सा वृक्ष स्वर भुजा, कल्प वृक्ष तो आपके घर में ही है, क्या कमी है उनके पास, जिसके आंगन में गृहस्थे घर के आंगन में ही कल्प वृक्ष खड़ा हो तो दुनिया को क्या नहीं दे सकता है वो, बोलो उसके पास किस चीज की कमी रहेगी। गृहस्थे स्वरभुजाम अमर सुरभि ही, और देवताओं की गाय अमर सुरभि, देवताओं की गाय, देवताओं की गाय का मतलब कामधेनु जी, अमर सुरभि, और साथ ही चिंतामणि गणे, जो चिंतन करो वो उपस्थित हो जाए, चिंतामणि चिंतामणि का तो आपके खड़ा हूं है, बोलो अब क्या नहीं दे सकते आप बोलिए, शिरस्ते सीतांशौ, देख लो अमृत तो आपके मस्तक में ही पड़ा हुआ है, चरण युगल थे अखिल शुभ, संसार में जितनी भी शुभ और मंगलमय वो सब के सब आपके चरण में बैठे, जब ये सारी चीज संपदा आपके पास है तो आप दुनिया को देने में कंजूस क्यों करते हो है?
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ये कुछ भक्ति या सत्संग में जाना था, दर्शन के लिए जाना था, और यहाँ माँ कहती है कि मैं नहीं जाने दूंगी, और प्रचंड क्रोध आया। इतने बालक के लिए वो क्रोध बराबर नहीं था, क्योंकि ये बड़े लोगों को ही इतना क्रोध आ सकता है, पर ये बालक का क्रोध कुछ ज्यादा ही था, और वो क्रोध उनकी माँ कुएं में से पानी निकाल के 2-3 घड़े पानी उनके सर पे डालती थी तब भी क्रोध शांत होता था। तो हमेशा वो माँ बोलती रहती थी कि नक्की ये शिव जी ने, मैं मांगने को गई तो एक कोई भूत पिशाच कोई ऐसा लेके मेरी झोली में डाल दिया है, पर समझना कि ये जो हम भूत पिशाच भी शिवजी की डोली में से कोई डाल दिया ना, शिवजी ने अगर ये भूत दे दिया तो वो बनेगा ना विवेकानंद, इतना याद रखना। तो वो बात याद आ गई कि ऐसा निश्चित होगा। तो देखिए, भूत प्रेत बनना, प्रेत योनि यानी कुछ योनि का ठिकाना नहीं बना है, कोई जगह पे ठहर नहीं सकते, तो कहीं भी ऐसा अमंगल कर्म हो गए कि अगर प्रेत योनि भी हमें मिल जाए, हाँ अतिशय पाप हो तो प्रेत योनि भी मिल जाए, तो भी एक बार भी ये जीवन में शिव का नाम ले लिया तो जाएंगे कहाँ हम, हाँ जाएंगे वो शिव जी के पास, कोई ऐसा है जो ये भूत प्रेत को भी रखता है, त्याज्य को भी रखता है, अमंगल को भी, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत से मेरा अमंगल होगा ऐसा डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो आत्म तत्व है। इसी प्रकार आप मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो शिव तत्व हूँ ऐसा जान लेंगे, ये जो शिव है वो आपके भीतर ही है ऐसा जब आप जान लेंगे, तब आपके लिए कोई भूत, कोई पिशाच, कोई अमंगल, कोई दाएं से जाओ बाएं से जाओ छुओ मत ऐसा करो, ये सब कुछ ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ये सब गलत है ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, मैं आपका उपहास करना नहीं चाहती हूँ, आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, पर इससे भी ऊपर कुछ है जो आपको प्राप्त करना है। इसमें जो समय जाता है वो समय शिवजी परमात्मा का नाम लेने के लिए उपयोग करो, इसीलिए ये जो साधना है उसमें हमें बार बार आपको थोड़ा सतर्क करना पड़ता है। तो कहे कि भूत प्रेतों की सोबत है और आप लगाते क्या है मेकअप, भाई मेकअप हम ही नहीं करते खाली, हाँ हाँ शिवजी भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो बोले भस्म है, भस्म का लेप करना वो आपका शौक है। भस्म या देखिए भस्म ये वासना का प्रतीक है, क्या ये शरीर मन बुद्धि का संघात, और वो भस्मीभूत हो जाता है स्मशान में। स्मशान में जैसे शरीर मन बुद्धि का संघात भस्मीभूत हो गया, तो आप जानकर भी अभी वो शरीर से तो किसी की आसक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो भस्म हो गया है। इसी प्रकार जीते जी आपके तत्व का ज्ञान मुझे मिल जाए तो मेरा शरीर भाव जो है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, ऐसा भाव अगर भस्मीभूत हो गया तो वो क्या करते हैं कि भाई ये त्रिपुंड क्यों लगाते हैं सन्यासी, क्यों त्रिपुंड लगाते हैं, क्यों भस्म लगाते हैं, ये वासना क्षय का प्रतीक है कि मेरी सब मुझे वासना मई समझने की गलती मत करना। इसीलिए बाह्य आडंबर को ना बोला है कि उससे आप तय मत करना कि ये ऐसा है वैसा है, मैंने तो कभी कहा भस्मीभूत करके ये जगत को, पूरे जगत को मैंने भस्म रूप से मेरे अंग पे लगा दिया है, ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरी महिमा है। अभी ऑर्नामेंट्स भी पहनने पड़ेंगे ना, ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा कुछ पहने बिना निकलने का, तो क्या करते हैं वो जो खोपड़ी जो है स्कल, उसकी माला पहनते हैं। ये सब आपकी रीत है, वो अमंगल है, फिर भी है वरदाता स्मरण, आपका अगर स्मरण भी किया तो आप मंगल स्वरूप हो जाते हो। खोपड़ी की माला पहनते हैं यानी क्या कि सब कुछ, ये सर में क्या रहता है भाई, इसके सिर में बहुत घमंड है। देखो प्रेम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम दूसरे के लिए, अगर प्रेम की बात की तो हम क्या कहते हैं कि इसके दिल में प्रेम किधर है, हाँ क्या बोलते हैं शब्द कि भाई इसके सीने में, इसके दिल में, उसके हृदय में प्रेम है, उसके सिर में प्रेम है, ऐसा कभी सुना है? हाँ और उसके हृदय में क्रोध है, अहंकार है, गुमान है, गर्व है, ऐसा कभी सुना है? वो कहाँ होता है? सिर में होता है। हाँ तो ये जो गुमान जो है वो गुमान का लेश भी ये परमात्मा के पास नहीं है, खोपड़ी भी, स्कल भी, शिर भी क्या चीज है उसको भी आभूषण करके वो लटका सकते हैं। ये जो अहंकार जो है, अहंकार पूरी तरह से वश में है। अलंकार क्या है? अलंकार पहनने वाले के वश में है ना अहंकार, अलंकार आपने हाथ में पहना तो हाथ में ही रहेगा, भी हाथ हाथ वाली यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ गला का हार सर में नहीं चढ़ सकता, हाँ सर का हार पैर में नहीं जा सकता, अलंकार पहनने वाले के ऊपर उसके हाथ में ये सब अलंकार वशीभूत होते हैं। इसी प्रकार

क्योंकि आप ये माला पहनते हैं तो एज एन ऑर्नामेंट एज अ गिफ्ट टू यू आई गिव इट टू यू, आप मेरी खोपड़ी को पहन के घूमते रहना है शिव जी। अगर शिव जी को आपको दान करना भी है तो आपका अहंकार अगर दान कर दिया, आपका गर्व अगर दान कर लिया तो उसको भी स्वीकार करके उनके गले में आप लग जाएंगे और फायदा हमें क्या होगा, हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और जिस क्षण आप अहंकार से मुक्त हो गए आप वो परमात्मा शिव साक्षात ब्रह्म इसी क्षण बन जाते हैं। तो ऐसी बात करके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, अब जो बात आती है, अब तक जो बात की इसमें अर्थवाद आ गया, स्तुति आ गई, प्रार्थना आ गई, माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया। अब हकीकत में करना क्या है, ये शिव तत्व क्या है, इतना समझ लेने के बाद देखिए, आप एकदम ही किसी को मिलते हैं तो तुरंत ही ऐसा ट्रांजैक्शन में बिजनेस में वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने में लग जाते हैं। क्या करते हैं पहले तो, हाँ पहले जानते हैं कहाँ रहता है, बैकग्राउंड क्या है, क्या है, फिर थोड़े दिन के थोड़े महीने के बाद थोड़े साल के बाद आप उनके साथ थोड़ा व्यवहार अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, पहले ही दिन तो नहीं ना, बोले नहीं। तो इसी प्रकार पहले ही दिन मैं आपको बता दूं कि भाई चिदानंद रूप शिवो हम वो शिव आप है, तो उसके आगे तो कुछ बोलना रहता ही नहीं है। पर जो शिव जो ब्रह्म आप है, तत्वमसी हे गुरु, बारंबार आप बताते रहते हैं तत्वमसी वो तत् ब्रह्म तू है, वो ब्रह्म है क्या, उसका वैभव क्या है, तो इतना ही वैभव है कि मुझे और आपको भी गले में जो लटका सकता है। हाँ हम किसी को भी सुनते हैं, ऐसा है हमारा अहंकार कि किसी का भी सुने, हाँ किसी का नहीं सुने, ऐसे अहंकार को भी परमानेंट गले में लटकाने वाले, हमको जला के भस्म करने वाले भी है ये शिवजी। ऐसा उनका प्रभाव है, ऐसी उनकी महिमा है। अगर आपको उन तक पहुंचना है तो उनकी महिमा को आत्मसात करना आपकी फर्ज है। इतना सब जानने के बाद थोड़ा जब परमात्मा के प्रति उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तो अब जो करवाना है पुष्पदंत जी को उसमें हमें प्रवेश करते, किसमें, शिव जी का जो यथार्थ स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें अब प्रवेश करते हैं। तो ये प्रवेश करके बोलते हैं, मन प्रत्यक चित्ते सविधम अव धायात्त मरुत, कहते हैं बाह्य श्लोक नंबर 25 की बात कर रहे हैं, प्ररुष्य द्रोमाण प्रमद सलिलो संगीत दृश, कहते हैं बाह्य विषय जो है, आप कैसे हैं, है परमात्मा आपका आंतरिक स्वभाव कैसा है। देखिए जिसको भूत पिशाच भी चल जाते हैं, हाँ भूत पिशाच जैसे भी सहचर चल जाते हैं, भस्म भी चल जाती है जिसे, सब कुछ अमंगल भी जिसके जिसको एग्जॉस्ट कर देते हैं चल जाता है, तो वो व्यक्ति होगा कैसा। हाँ टोटली अनकंसर्न अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो ऐसा होगा जो बाह्य जगत से जरा भी आसक्त न हो, एकदम ही अनकंसर्न हो, वही ऐसा होगा, सब कुछ चल जाता है। तो भाई ये शिवजी है कैसे, जहर भी पी लिया वो भी चल गया, सर्प भी दे तो सर्प भी डाल देते हैं हाथ में और मस्ती से रहते हैं। तो ये मस्ती, ये आह्लाद, ये आनंद, और पूरे हाँ महादेवम महात्मानम महाध्यानम परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः, महाध्यानम, इतना सब कुछ होने के बाद हमारे हमको पता लगे कि सेकंड फ्लोर पे सर्प आ गया है तो यहाँ बैठे बैठे हम क्या करेंगे, ध्यान होगा क्या, सेकंड फ्लोर पे आया है कोई सर्प लेके आया है तो यहाँ सब कुछ सब दरवाजे सब कुछ बंद है तो भी क्या होगा कि अभी ये कब समय हो, कब हम भागे यहाँ से, हाँ और यहाँ तो पूरे शरीर में सर्प है तो भी ध्यान लगता है। कहना क्या चाहते हैं, हाँ के सर्प है, विष है, विषय रूपी विषय है, वो इतने तक चिपके होंगे तो भी आपका अंतर स्वरूप है उसे आप जान लो तो ये विषयों का विष जो है वो आपका आभूषण बनेगा, आपसे द्वेष आप वो आपको विष जो है वो प्रभावित नहीं कर सकेगा। ये ज्ञान को, ये परम तत्व को आप प्राप्त कर लीजिए। कौन से परम तत्व को, आप खुद वो शिव है आपके भीतर, जो अहम अहमतया जो रह रहा है, जो अभिव्यक्त हो रहा है हर हमेशा तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में, जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो सत्ता और स्फूर्ति

हम सबको दे रहा है, वो जो तत्व जो है उसे आप जान लीजिए, ऐसा कहा है। तो वो तत्व शिवजी और शिवजी जैसे ही वो हम जो है वो कैसे है वो बता रहे हैं कि मन में, मन को हृदय में स्थिर करके, मन यहां यहां चंचलता से जाता है ना, उसे हृदय में स्थिर करके अनेक प्रकार से प्राणायाम जो करते हैं, अनेक प्रकार के अष्टांग योग का जो साधन करते हैं, यानी जो श्रेष्ठ योगी है जो आपको पाने के लिए ये सब करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो आपको मैं पाऊंगा इस बात से पहले से ही रोमांचित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, आनंदित जो हो जाते हैं, ऐसे योगी जैसे अमृत के कुंज में डुबाए गए हो। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी यहां कहा है कि शम दम तितिक्षा अष्टांग योग यम नियम आसन समाधि प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब कुछ जो भी हम परमात्मा को प्राप्त करने के, देखिए मात्र शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राप्त करने के लिए ये सब किया, तो उसमें वो व्यक्ति के ऊपर वो चीज पाने का आनंद नहीं होगा, वो करते होंगे वो क्षण भी नहीं होगा। इन सब किसके लिए किया जाता है? अगर ईश्वर प्रत्यर्थ शिव प्रत्यर्थ ही किया जाए तो जाने कि कोई आदमी को पूरे अमृत के कुंज में डुबा के बाहर निकाला हो, ऐसे पूरी क्षण वो अभी आपको पाया भी नहीं है तो भी वो आनंद में ही रहता है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा मनीषा पंचक में लिखा है, यत्सौ

निवृतः। क्या कहते हैं कि ये जो आप तो पूरे समुद्र है, सागर है, उसका एक बूंद का आचमन करने से भी आनंदित हो जाते हैं, तो अगर जो ज्ञानी जन है वो तो आपके सागर के अंदर ही पड़े हुए, वहीं तैरते हैं, वहीं सब कुछ क्रीड़ा करते हैं, तो उनके आनंद की तो मैं अवधि की बात ही क्या कर सकूं, मैं बोल भी नहीं सकता, वो आनंद को मैं देख भी नहीं सकता, तो ऐसा आनंद मैं प्राप्त करूं, इत्येषा मनीषा मम, ऐसी मेरी बुद्धि हो। तो ऐसे जो है अनिर्वचनीय तत्व को अपने अंतकरण में याद करके आनंद का अनुभव करते हैं, वही तत्व आप हो। यानी पुष्पदंत जी यहां कहना चाहते हैं कि आपका अनुभव कहां हो सकता है, अंतकरण में हो जाता है। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। चित्त याने अंतकरण का जो भाग है वो चित्त है, जब एकाग्र होता है अंतकरण, अंतकरण की जो वृत्ति एकाग्र होती है, कोई एक विषय का चिंतन करती है, सजातीय वृत्ति प्रवाह से परमात्मा का नाम स्मरण करती है, या अपने जो स्वभाव है उसके बारे में सोचती है, तो तब उसको चित्त कहा जाता है। संकल्प विकल्प करता है तब मन जैसे कहा जाता है, ऐसे एकात्मिका अंतकरण वृत्ति को चित्त कहा जाता है, और ये चित्त में निधिध्यासन करके वो परमात्मा को प्राप्त करना है। यानी हमें क्या समझना है कि कुछ भी हो परमात्मा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, आंतर हृदय गुहा में ही मिलेगा। तैतरीय उपनिषद ने कहा है यो वेद निहितम गुहायाम। तो साधन कौन सा है, हमारे आत्म साक्षात्कार का अंतिम साधन क्या है, तो ये चित्त रह जाएगा, एक का आत्मी का ये सजातीय वृत्ति प्रवाह जो है ये प्रवाह रह जाएगा। ये प्रवाह से निधिध्यासन सतत किया तो उसकी जो अनुभूति जो है, निधिध्यासन की जो असर है, जो हवा है, वो क्या है, वो असर जो है वो आत्म साक्षात्कार है। तो ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे, श्रवण और मनन से विचिकित्सा करनी है, यानी जो मल विक्षेप और आवरण नामक जो दोष है वो निकाल देने हैं शरीर मन बुद्धि के संघात से, और शुद्ध हो गया मन, उससे वो जो चित्त जो है वो एक जगह पे ठहरने की क्षमता को प्राप्त करेगा। जो मन का जो चांचल्य है, हाँ, यहाँ यहाँ विषयों में जो घूमता रहता है, विषयों में घूमता रहता है, ये जो मन के अंदर मन का चांचल्य, यानी क्या कि दूसरों के बारे में जानने की जो उत्सुकता है, दूसरों के बारे में जानने का जो स्वभाव है, जो आदत है, भीतर जो ये छू गया है, एक व्यसन है, ये जो स्वभाव जो है ये मन का, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, हाँ, ये जानने का स्वभाव आपके भीतर है तो गलत नहीं है, पर इतना जान लीजिए कि ऐसा स्वभाव मेरा है तो आप वहां से निकल सकेंगे। इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार ही आपका अंतिम ध्येय है तो अन्यम वाचो विमुंचेत, बाकी हम पूरे जगत को कहां, आप यहां आए इतने को ही तो बताते हैं, पूरे जगत को हम कहां बताने गए कि भाई अन्य बाचा छोड़ो, यही छोड़ने में तकलीफ हो जाती है। हाँ, कितने सालों का श्रवण करके धीरे धीरे ये प्रपंच छूटता है, ये प्रपंच छूटता है क्या, हाँ, दूसरों के लिए जानने की उत्सुकता छूटती है क्या, बातें करने की उत्सुकता छूटती है क्या, यही इतना संपर्क शिव का संपर्क है, गुरु यानी शिव ज्ञानी, उनके संपर्क है तो भी बातें जानने की उत्सुकता होती है, तो बाहर की तो बात ही छोड़ो, तो उसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, पर नहीं जाना कि यह है वो गुनाह है, और जानने के बाद नहीं छोड़ा वो तो एकदम ही गुनाह है, बेटर लक नेक्स्ट बर्थ। हम तो नेक्स्ट बर्थ की बात करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम की तो बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है कि इतना शुद्ध चित्त होगा उसी में वो परमात्मा की जो स्थिति है, परमात्मा का जो ब्रह्म का रूप है, निर्गुण रूप है, वो वहीं से पता लगेगा, वहीं धारण किया जाएगा, उसके अलावा नहीं होगा। अन्यम वाचो विमुंचेत, ये सब कुछ नहीं जानेंगे तो चलेगा, एटलीस्ट शरीर मन बुद्धि का ये जो है उसका सदुपयोग करके वो परम तत्व में पहुंच जाइए। दूसरों क्या कर रहे हैं, क्या है, गलती से भी कुछ भी दूसरों को पूछिए ही मत, ये प्रश्न आपके मन में आया तो विष के समान पी जाइए, गले में रख दीजिए, शंकर भगवान को याद कीजिए, नहीं विष बाहर निकालिए, दूसरे को क्यों कलुषित कर रहे हैं, और आंतर भी नहीं रहना, भीतर जानने की चेष्टा उबलती रही तो हम जो भी कुछ बोलेंगे वो बाहर निकल जाएगा।
आप सोचिए कोई संत यहाँ आके बोलते हैं मैं नहीं, कोई भी संत यहाँ आके बोलता है तो अपनी जगह से आने का कष्ट कष्ट तो नहीं लगता। आप बहुत अच्छी तरह हमें लाते हैं और ले जाते हैं, उसकी बात नहीं है, पर आपके साथ एक घंटे के लिए बोलने के लिए 23 घंटे रुकते हैं। हाँ, इतना सोचना, इतना भी अगर विचार आ गया तो बोलना कि ये आपके लिए हो रहा है, हमारे लिए भी, सबका कल्याण हो रहा है। तो ये जो रुकना है, आप 23 घंटे जब तक आप श्रवण करते हैं जिंदगी भर, दूसरे श्रवण तक बीच में क्या है, आपको रोकना है। हमारे मन में 23 घंटे यही विचार आता है कि दूसरी सुबह 7:30 बजे बस मुझे तैयार रहना है। हाँ, एक ही लक्ष्य है, ये पूरे 23 घंटे में हमारा तो लक्ष्य ये एक ही है ना। तो अगर दूसरा प्रवचन आपको कोई भी संत का दूसरा प्रवचन में हम जाएंगे तो कोई और आएगा, उसके प्रवचन तक बीच में क्या करना है, मात्र प्रतीक्षा करनी है, मात्र इच्छा रखनी है और प्रपंच नहीं करना है। ये क्या गया, कौन गया, कैसा गया, ये कोई जीवन है क्या, क्यों बर्बादी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा करेंगे तो ये चित्त शुद्ध होगा और तो ही ये शिव कौन है वो सुनने से भी समझ में आ सकेगा। अब कहते हैं कि हे शिव जी, ऐसे अनिर्वचनीय अहम तत्व से, कठोपनिषद में इसीलिए कहा है अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। हाँ, परमात्मा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अस्ति तत्व से ही मिलेगा। मैं हूं भी नहीं हूं और फिर हूं भी नहीं आता है। अभी मैं हूं वो कहने के लिए मैं ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। सी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फीलिंग, इट इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। सिर्फ मेरा होना ही काफी हो जाता है, वो आप जो है ना वही शिव तत्व है। पर जगह तो दो उसे फील करने की, तो आप जगह छोड़ो। हाँ, कितने विषयों से, कितनी आसक्ति से, कितने प्रायोरिटी और कितने विचारों से हमने एक करके रखा है, इतनी प्रायोरिटी दूसरे को क्यों दी है। हाँ, वो भी शरीर मन बुद्धि का संगात है, उसके भीतर भी उसका अपना छोटा परमात्मा है। यो वेद निहितम गुहायाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, ऐसा कहा है ना। कोई एक ही जाति में मैं हूं, कोई एक ही देश में हूं, इसी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों में, अर्जुन जी में जाया हूं, ऐसा तो नहीं है। सब में है तो सबके भीतर वो परमात्मा है, वो उसका ख्याल रखेंगे ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा संपर्क बढ़ा दिया है अपने चित्त में, उसे आप निकाल दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, तो वो परमात्मा अहम वृत्ति से अंदर स्वयं स्फुरित जो है वो आपको दिखने लगेगा। आप अपने जो आवरण जो है, पंचकोशात्मक आवरण जो है, उसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिए। तो कहते हैं शिवजी जो है परमात्मा, आप जो अहम बुद्धि से, अंतकरण वृत्ति से भीतर शुद्ध चैतन्य रूप से बैठे हैं, वो हमें पता नहीं लगे तब तक क्या करना है। मैंने बोला ना कि 23 घंटा हम रुकते हैं, तो हम सबको जब रुकते हैं तो क्या करना है, तो बोले कि शिवजी की अनेक मूर्तियां बाहर, बाह्य रूप से शिवजी यानी शिव तत्व, ब्रह्म तत्व जो उनका प्रगटीकरण किया है, बस उन्हीं की आराधना, उनको देख के वो परमात्मा का स्मरण करना है। भाई पूरा दिन तो, पूरे दिन, पूरे घड़ी तो हम वो ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकते ना, आप कहते हैं तो पूरा दिन 24 घंटे हम निधिध्यासन कैसे कर सकते हैं, कौन कहता है आपको करने के लिए। पर करना क्या है, इतनी इतनी जो शिव की मूर्तियां हैं उनको आप जब भी देखो तब तो आप शिव जी को याद करेंगे ना, और उतना ही किया तो भी आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तो हो जाएगा। तो शिव जी कहां कहां है वो हम पुष्पदंत जी के मुख से ही सुनेंगे। वो कहते हैं शिव की अनेक मूर्तियां है, त्वमर्कस्त्वम सोमः, त्वमसि पवनस्त्वम हुतवः, त्वमापस्त्वम व्योम, त्वमु धरणीरात्मा त्वमिति च। ऐसा कहते हैं कि हे प्रभो, आप ही सूर्य हो। बात खत्म हो गई। अभी सूर्य को देखा, सूर्य तो दिखता ही है ना, बिना प्रयत्न दिखता है। आप खोलो, सूर्य तो है ही, लाना नहीं पड़ता, वो है ही। सूर्य को देखा, शिवजी याद आ गए। पर हम क्या करते हैं, सूर्य को देखा अनदेखा कर देते हैं, सूर्य से जो कुछ दिखता है उसी में लग जाते हैं। वो देखने की बात ही नहीं की है आपको, कहां गए, कहां से लाए, क्या पहना, क्या ओढ़ा, कितना लिया, कितने को लिया, कूपन है, डिस्काउंट है, ये सब बातें। हाँ, क्यों, क्या क्यों करनी है। और वो बातों का भी एक समय होता है, हाँ ध्यान रखना, मलाइजा रखना। हाँ, वो देश और काल का कुछ तो ख्याल करना। बोले सूर्य ही आप, सूर्य को देख लिया और समाधि लगनी चाहिए।
सूर्य से जो दिखता है वो नहीं, सूर्य को देख के ही लगना चाहिए आ हा वो शिव है। अच्छा शिव याद आए तो उनका मेकअप याद आ जाना चाहिए, उनका मेकअप याद आया तो आ हा उनका रथ, ये पृथ्वी को देखा अरे इसे रथ बनाया था तो शिवजी इसके ऊपर तो चढ़े ना, तो ये पृथ्वी को मैं जहां छू वहां शिव के चरण मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। इतना तो काफी है आह्लाद होने के लिए, शरीर में रोमांच करने के लिए इतना तो काफी है, पर जगह कहाँ है इतना सोचने की। हाँ जगह बनाइए, आप ही चंद्र है, चंद्र को देख लिया तो भी वो याद आने चाहिए, आप वायु है, आप अग्नि है, आप जल है, आप पृथ्वी है, और आप कौन है ये सबको जानने वाला, कौन जानता है ये पृथ्वी है ये जल है, मैं जानता हूं ना, वो जानने वाले भी आप ही है। आपसे ही सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके मैं ही आपको जानता हूं, ये कोई भीतर से जानने वाला जो है ना कि ये मैं पृथ्वी तत्व को हाथ लगा रहा हूं, तो हाथ लगाने की सत्ता स्फूर्ति देने वाले ही आप हैं, हाथ आप ही लगा रहे हैं। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा हाँ, वृक्ष धरी फूली रहो आकाशे, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशे। ये कहाँ है नरसिंह मेहता हाँ, और कहां तक हमें जाना है, हमारी यात्रा ये होनी चाहिए, लगना चाहिए ये जीव, ये जो मैं हूं ये कोई छोटी घटना नहीं है कि आप ये ब्रह्म है, आप ये परब्रह्म है, भीतर वो परमात्मा को लेके बैठे हैं हाँ, उसे आप क्या धरा रहे हैं हाँ। जगत के विषय आपकी वासनाओं से मलिन हुए ये सब रूप अंदर उसको देख, तू देखिए और उसके पास से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि तू मुझे अच्छा ही दिखा, परमात्मा मुझे कभी बुरा मत दिखा, पर तूने मुझे कितना बुरा दिखाया, भीतर से तो वही देख रहा है ना, कानों से कितने प्रपंच सुना है वो परमात्मा को, अब वो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि अच्छा अच्छा मुझे सुना, पर तूने मुझे प्रपंच क्यों सुनाए हाँ, कहां कहां हम ले गए वो परमात्मा को, क्या क्या खिलाया, क्या क्या बोले हाँ। बहुत सतर्क, अगर साधक कहते हैं अपने आप को तो सतर्क रहना, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, जो चाहे वो करना। इसी प्रकार आपके विषय में जो परिपक्व बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, वो परिच्छिन्न यानी कि मर्यादित वाणी जो है वो भले कहे, फिर भी ये सृष्टि में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो आप है, यानी जो सब में परमात्मा को नहीं देख सकता, कोई कहता है यही परमात्मा है और दूसरी जगह नहीं है, ऐसे कहने वाले जो है उनकी बुद्धि परिपक्व अभी नहीं हुई है, ऐसे भले आपको कोई कोई विषय में जाने, पर मैं तो मानता हूं कि आप सचराचर सभी जगह प्रवृत्त हुए हैं। अब कहते हैं कि आपके जो सगुण स्वरूप है, वर्षों तक सूर्य चंद्र आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यानी सब कुछ में ये परमात्मा को देखने की चेष्टा की, प्रैक्टिस की, अन्यम वाचो विमुंचेथ करके साधन बनाए रख के, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता राग द्वेष छोड़कर ये सब कुछ किया, तब क्या होगा, तब परमात्मा का जो ओमकार का रूप, देखिए ये कलयुग का प्रभाव है कि ये हमें जानने को मिलता है, बाकी ये अभी सतयुग या द्वापर युग में होते ना तो गुरु दो सेकंड के लिए भी हमें सहन नहीं कर सकते, हमें बिठा ही नहीं देख सकते। जब तक ये साधन हमारा बराबर न हो तब तक रुकना पड़ा, इंद्र को 101 साल तक रुकना पड़ा, हमारी क्या बात है हाँ, रुकना पड़ता है। ये तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ये परम तत्व के जो घोड़ रहस्य है वो हमें मिलते हैं, और उसकी मर्यादा हम नहीं रखेंगे तो तत्व तो अपनी मर्यादा रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं हाँ, अपने सामने आपके पास अपने संपर्क में आते भी वो अपने महिमा को छुपाने की शक्ति रखते हैं हाँ, तो ये ध्यान रखना। अब जो बताते हैं वो शिव का परम पद ओमकार स्वरूप है, ये ओमकार मैं दो मिनट जरा ज्यादा लूंगी, आप जरा भी हिलना डुलना कोई चिंता मत करना प्लीज। ये जो शिव का ओमकार स्वरूप जो है उसका वर्णन किया, ये पूरा ओमकार स्वरूप वर्णन करने के लिए मांडुक्य उपनिषद जो है वो उद्धृत हुआ है, कठोपनिषद में भी कहा है। नचिकेता ने जब पूछा कि ये परमात्मा जो है ये आत्मा जो है आता है जाता है ये सब बातें बताई, तब यमराजा ने मृत्यु के देव ने अमर तत्व का उपदेश दिया, वहां भी क्या कहा है कि भाई ऐसे आप नहीं जा सकते, ये श्वेत केतु की तरह तत्वमसी बोल दिया और श्वेत केतु ने वो जो तत्व है वो आत्मसात कर लिया, अरे प
पर वो करने के लिए कैसी चित्त की शुद्धि होगी? तो हम जो यहाँ जो जिस प्रकार जीवन जी रहे हैं उसमें क्या वो संभवित है? सबके लिए संभवित नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर नचिकेता को भी आलंबन दिया गया तो हमारे लिए वो आलंबन है ही, वो मस्त हो गया। अभी उनके लिए हो गया तो हमारे लिए तो ये कर्तव्य हो गया। तो क्या कहा? ए

च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतद। क्या कहा? संग्रहेण। सब वेद जिस पद का आलंबन करते हैं, जिस पद को समझाते हैं, पूरा वेद हां, जिसे प्राप्त करने के लिए घर छोड़े जाते हैं, योगी बने जाते हैं, ब्रह्मचर्य बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं सिर्फ उसी को जाने के लिए, तो ये कोई तत्व ऐसा है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, जिसकी बात वेद करते हैं, वो कौन है? तो बोले बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ओम इति एतद। ये ओम के बारे में, ओम जो है वो सोच लीजिए, तो ये ओम कौन है? तो ये ओम शिवजी है। जब तक हम ओम को नहीं जानते, आप शिवजी को जानिए, उनके प्रकार को जानिए, उनके आडंबर को जानिए, और फिर धीरे धीरे वो कौन है वो जानिए। तो यहां पुष्पदंत जी कहते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है जब ओमकार रूप ये शिवजी है, ऐसा मैं बता सकता हूं। तो कहते हैं, हे शरण देने वाले महादेव, अ उ और म त्रयीम तीसरो वृत्ति ही त्रिभुवन मथो त्रिनपि सुरान अकाराद्य ही वर्ण ही, अकार उकार और मकार ये वर्ण से कहे जाने वाले, जाने जाने वाले, अकार यानी जागृत अवस्था, मकार स्वप्न अवस्था, उकार उकार स्वप्न अवस्था, मकार सुषुप्ति अवस्था, तीन वेद जो है इसी में से निकले हैं, रोग यजु और साम, तीन वृत्तियां जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन भुवन जो है भू भुवः स्वः, तीन देव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब तत्व को जो प्रदर्शित प्रकाशित करता है, ये सब तत्व जिस तत्व में से निकलते हैं, देखिए जो तत्व में से जो निकलता है वो कारण, वो तत्व उससे तो बड़ा ही होगा, उससे तो सूक्ष्म ही होगा, और वो सूक्ष्म तत्व को तुरीय कहते हैं, और ये जो तुरीय तत्व है उसमें से ये शरीर मन, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण सब भेद जो है वो व्याप्त हुए हैं, निकले हुए हैं, और उसका जो ध्वनि जो है, उसका जो प्रगटीकरण है, तो प्रगटीकरण का कुछ रूप तो होना ही चाहिए ना, तो ये ओमकार का ध्वनि है, ओमकार के ध्वनि से ये सब प्रगटीकरण हुआ है। ऐसे ओमकारमय शिव परमात्मा है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, ऐसे परमात्मा को हम भी प्राप्त कर सके, ऐसी परमात्मा और गुरुजनों से प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: नमः
1: हरि ओम।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 26. Thank you.

0: நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: லேக்கின் மிலா ஹுவா நஹி, ஔர் ஜப் தக் மிலா ஹுவா ப்ரதீத் ஹோ ரஹா ஹை, தப் தக் யே ஜோ நியம் ஹை ஜனம் ஔர் மரண, ये समाप्त होने वाला नहीं। ये कब होगा? तो कहने लगे ये तब होगा जब ये मिले हुए का भ्रम है वो नष्ट हो जाए। तो क्या होगा? तो कहने लगे फिर जन्म मरण होगा ही नहीं, सत्ता एक है। जब दूसरी सत्ता ही नहीं है तब उसके अंदर इच्छा का उदय नहीं होगा, और इच्छा का उदय नहीं होगा तो बगैर कामना के जन्म होता ही, तो फिर मैं तू आदि भी नहीं होगा। ये संकेत किया। अब इस सिद्धांत पर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना की गई, और प्रार्थना के अंत में तीन बार कहा। क्या कहा? ओम शांति शांति शांति। और जिसका अर्थ क्या किया गया? त्रिविध ताप की शांति हो। क्या कहा? त्रिविध ताप की शांति हो। तो त्रिविध ताप क्या बतलाए? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि। आध्यात्मिक तापों को कह दिया गया क्या? व्याधि रूप और आदि रूप। व्याधि होती है हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में, और आदि होती है सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर का रोग विकार और स्थूल शरीर के विकार को ही हम क्या मानते हैं? काय विकार ही दुखद हैं, यही तो दुख के कारण। तो इसको कह दिया आध्यात्मिक दुख। और फिर उसके बाद जो है आदि भौतिक, जो हिंसक आदि जंतुओं से आदि होने वाले जो दुख हैं, हैं? तो उनको क्या कह दिया? कहा वो आदि भौतिक हो गए, पदार्थ विशेषों से होने वाले। और जो है वृष्टि अनावृष्टि आदि जो ये दुख है, इनको क्या कह दिया? कहा दैविक दुख कह दिया। अब वेदांत की तो बात है ही, लेकिन सांख्य शास्त्र भी यहां पर थोड़ा स्वीकार करता। क्या कहता? दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टा सा पार्थ चेन नई कांति तो अत्यंता भावा। क्या मतलब? कहा दुख त्रयाभिघाता, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र क्या है? तीन दुखों से अविघातित है। तीन दुखों का उसके ऊपर अविघात हो रहा। उन तीन दुखों में कोई न कोई दुख उसके पीछे पड़ा हुआ, ये समझ लो। तो तीन दुखों से यह संसार का जीव जो है क्या है? प्रताड़ित हो रहा है। किसी को शारीरिक दुख, यदि शरीर से स्वस्थ है तो मानसिक दुख, मन से स्वस्थ नहीं, और इनसे भी यदि स्वस्थ है तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ये सब दुख आ जाते। या कहीं आतंकवादी है धमाका बोल देते, ये सारे दुख आ जाते। तो ये इस प्रकार के जो दुख हैं वो कहीं न कहीं इन दुखों से प्रताड़ित हो रहा। अब जो है जब दुखों से प्रताड़ित हो रहा है तो उसके अंतर्गत स्वाभाविक इच्छा होती है कि दुख मां भूत, मेरे को दुख न हो। किंतु सुख की प्राप्ति हो। इसलिए शांति मंत्र में बार बार सन्नो सन्नो है, मेरे लिए जो है समन करो देवताओं से प्रार्थना। ये किसी ने नहीं कहा कि दुख दो, दुख का समन करने के लिए सुख की प्रार्थना की। और जब सुख की प्रार्थना की और सुख के लिए कह रहे कि हमें सुख हो, तो अब ये सुख कब हो, कैसे होगा, ये समस्या आई। और जब तक ये सुख नहीं होगा, दुख की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक शांति नहीं। शांति का मतलब क्या है? जहां पर किसी प्रकार का विकार न रह जाए। जब तक लहरें उठेंगी तब तक समुद्र को शांत कह सकते हो। जहां किसी प्रकार की लहर न उठे उसे क्या कहोगे? शांत। तो शांति तभी होगी हमारे में भी जब कोई इच्छा ही न हो, ठीक है। तो जब कामना से रहित हो जाएंगे तभी जाकर के क्या होती? का शांति होती। और कामना जब तक रहेगी तो नियम बतला दिया तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। पुनः इच्छा होगी, इच्छा से हम कर्म करेंगे, कर्म से फल मिलेगा, फल का भोग होगा, भोग होने पर वो समाप्त हो जाएगा, पुनः उसकी इच्छा होगी और पुनः इच्छा होगी तो पुनः फल, और ये चक्कर चलता रहेगा, ये नियम है। अब जो है तो कहने लगे इन दुखों से कैसे निवृत्ति हो, सुख की शांति की हमें प्राप्ति हो। तो वहां सांख्यकार ने भी संकेत किया कि ये तीन दुख जो है प्रत्येक प्राणी को प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ अंशों में मतभेद भी है, लेकिन यहां पर इतना स्वीकार करते हैं तो इन दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तो उन्होंने उपायों की चर्चा की। दुखद प्रया विघाता जिज्ञासा तत् अपघात के हेतु, जो तीन दुखों का अभिघात हो रहा है उन तीन दुखों को भी अभिघातित कर देना, उनका भी अपघात कर देना। अर्थात जो हमारे ऊपर घात कर रहे हैं हम उसी के ऊपर घात कर रहे हैं तो वही समाप्त हो जाएगा, तो हम कैसे हो जाएंगे? का सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो दुख हमारे ऊपर अभिघात कर रहे हैं ऐसे उन दुखों के ऊपर हम अपघात कर सकें। तो कहा ये कब होगा, अर्थात दुखों को समाप्त कर सकें, तो ये कब होगा, तो उसके लिए उपाय बतलाए। का दृष्टा सपार्थ, सपार्थ पार्थ शब्द नहीं अपार्थ शब्द है, दृष्टा सा पार्थ ऐसा शब्द, तो संधि तोड़ देंगे तो हो जाएगा दृष्ट स अपार्थ। अपार्थ माने निवारण करना, दूर करना। तो एक तो दृष्ट उपाय है, कैसे उपाय हैं? दृष्ट उपाय। दृष्ट उपाय का मतलब जो दृष्टि का विषय है, अर्थात लौकिक उपाय। हम लौकिक उपायों के द्वारा दुख को दूर कर सकते हैं। ये संकेत किया भाई तापमान बढ़ गया, बुखार आ गया, तो बुखार की निवृत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास दृष्ट उपाय, एलोपैथिक हैं, होम्योपैथी हैं, तो इनको लेकर के हम क्या करेंगे? उस औषधि को ग्रहण करेंगे और उस औषधि के द्वारा हमारे उस ताप का समन हो जाए। तो क्या हो जाए? दृष्ट उपाय के द्वारा जो आध्यात्मिक दुख है शारीरिक आदि, उसकी हम निवृत्ति कर लें। ये आ गया। आगे संकेत किया कि ठीक है भाई, दृष्ट उपायों के द्वारा इनकी निवृत्ति हो जाएगी। कुछ दृष्ट उपाय हैं और कुछ ऐसे हैं कि उन्हीं की निवृत्ति होगी, सबकी दृष्ट उपायों से निवृत्ति नहीं। अब जैसे हिंसक जंतु हैं, शत्रु आदि हैं, उनसे दुख की निवृत्ति करने के लिए भी हम उपाय कर लेंगे। इस प्रकार के मकान बना लेंगे, ऐसी सुरक्षा कर लेंगे, अस्त्र शस्त्र रख लेंगे है? और ऐसी पुलिस जो है लगा देंगे, तो ये सब जो है क्या है? तो ये दृष्ट उपाय के अंतर्गत। अब कहने लगे जो अनावृष्टि वृष्टि आदि जो इस प्रकार से दैवी आदि हैं, उनकी निवृत्ति किससे हो? ये तो दृष्ट उपाय हो, तो उसके लिए कह दे आनुश्रविक। वहां पर उन्होंने संकेत किया उनके लिए आनुश्रविक। आनुश्रविक का मतलब है माने उपासना। उसके मतलब क्या है? उपासना। जो दृष्ट उपाय है वो तो कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, पराक्रम के द्वारा होने वाली, तो पराक्रम के द्वारा अपने पुरुषार्थ से हम अपने दृष्ट उपायों से हम उन दुखों की निवृत्ति कर लेंगे। लेकिन जो ऐसे दैवीय है वृष्टि अनावृष्टि आदि, कहा उनका हम क्या करेंगे, उनसे निवृत्ति कैसे करेंगे? तो कहने लगे आनुश्रविक, और भी दैवी जो हैं, तो उनके लिए आनुश्रविका माने उपासना। उनकी निवृत्ति किससे हो जाएगी? का उपासना के द्वारा, उन देवों की हम उपासना करेंगे, और देवों की उपासना करेंगे तो देवा देव जो है हमारे ऊपर अनुकंपा करेंगे तो उनकी निवृत्ति हो जाए। इसलिए यज्ञ विशेषों के द्वारा यदि वृष्टि नहीं हो रही है तो वृष्टि करा लेना, और अधिक वृष्टि हो रही है तो वृष्टि को न्यून कर लेना, ऐसे ऐसे यज्ञों का भी विधान है। और आप तो सुनते ही हो, महाराज जनक ने भी यज्ञ की, और कब की? अनावृष्टि को लेकर, और जब यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हुआ तो वृष्टि हो गई। ये सब चर्चाएं आती। तो अब यहां पर जो है ये सब उपाय बतला दिए, लेकिन वहीं पर सांख्य शास्त्र कहने लगा कि आत्यंतिक निवृत्ति करने में यह उपाय भी असमर्थ हैं। वेदांत तो मानता है, लेकिन सांख्य ने भी यह स्वीकार किया। क्या कहा? कि आत्यंतिक निवृत्ति करने में ये उपाय भी असमर्थ। निवृत्ति तो कर सकते हैं, लेकिन एक कालिक कर सकते हैं, एक अवधि तक कर सकते हैं, सर्वथा ये निवृत्ति कर सकते नहीं। अरे वही हमने टेबलेट आज ले लिया, आज बुखार चला गया, अब कोई नियम तो है नहीं कि कल नहीं आएगा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, फिर आ सकता है। और इसी प्रकार से वृष्टि अनावृष्टि ये भी सब। तो कहने लगे कि आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। हमने यज्ञ आदि कर्म करके स्वर्ग आदि को भी प्राप्त कर लिया, सुख मिला, शांति हुई, लेकिन वो भी कैसी है? काल में बंधी हुई। आत्यंतिक निवृत्ति सर्वदा वह निवृत्ति नहीं, क्योंकि गीता तो कहता ही है छीड़े पुण्डे मर्त्यलोकम विसंति, लेकिन वहां सांख्य शास्त्र ने भी कहा छायत्वं च स्वर्गादे। ये स्वर्ग आदि भी क्या है? छह सील है, क्योंकि इनमें भी छह सील के वो नियम विद्यमान है। अज्ञान कृत माया कृत जो नियम की जिस चर्चा की, वो नियम वो व्यवस्था वहां पर विद्यमान, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग के पश्चात फिर जो है मृत्युलोकम विसंति, फिर मृत्युलोक में क्यों? वो बैलेंस आपने कर दिया, लेकिन बैलेंस कब तक रहेगा? आप बैलेंस का वो करते रहोगे तो किसी न किसी दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। है भाई कुबेर का ही खजाना क्यों न, एक एक पैसा यदि रोज निकालते रहो तो धीरे धीरे न्यूनता को प्राप्त हो जाए, और न्यून हो गया तो आप सभी चाहते पूर्ति हो, तो कामना ज्यों की त्यों बनी रहेगी और जन्म मरण भी ज्यों का त्यों। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति संभव नहीं, लेकिन यहां संकेत क्या करते हैं? तीन बार कहा शांति से, माने तीनों तापों की हमारी क्या हो जानी चाहिए? निवृत्ति। उदाहरण याद आ गया, ये सुख स्वर्ग सुख यज्ञ आदि उपासनाओं से होने वाला वो कितना है? तो अवंतिका का राजा बड़ा ही धार्मिक था, वो अवंतिका मानी ही ऐसी गई परंपरा ही उसकी थी, उसने इतने यज्ञ किए, उन यज्ञों के प्रभाव से वह जो है इंद्रलोक पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंचा, इंद्रलोक में पहुंचा, और वहां के सुख को उसने प्राप्त किया, काफी समय तक वो वहां रहा। लेकिन जब काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन इंद्र ने उसे बुलाया, और इंद्र ने बुला करके कहा कि भाई तुम्हारे पुण्य तो अभी हैं, बाकी बैलेंस तो आपका है, लेकिन समय बहुत व्यतीत हो गया है, ये बैलेंस तुमको तभी प्राप्त होगा और यहां तभी तक रह सकते हो। कब तक? कहा बैलेंस भी होना चाहिए और बैलेंस का कोई साक्षी होना चाहिए, बगैर साक्षी के तुम यहां रह सकते? जब ऐसा कहा तो उसने कहा वाह, हमारे लिए साक्षी कौन नहीं होगा, हमने जो है इतने यज्ञ किए कि उन्होंने यज्ञों के प्रभाव से चरवणवती नाम की नदी प्रवाहित हो गई, जिसे चंबल कहते आज, उसका पहले नाम था चरवणवती। यज्ञ प्रवाहित होगी तो मुझे कौन नहीं जानता? तो कहा ठीक है, फिर गवाही को लेके आओ। वो आए और जब आए पृथ्वी लोक में, देखा जहां जाए तो जहां पर जंगल था वहां नगर खड़ा हो गया, जहां नगर था वहां खंडहर खड़े हुए, और अब देखने लगे परिचित कोई मिले, कोई परिचित मिला ही नहीं, जिससे कहें उस वही कह दे कि मैं नहीं जानता। चारों तरफ घूमते घूमते ढूंढते रहे लेकिन कोई गवाही नहीं मिला, क्योंकि संसार का नियम है चलायमान गतिमान। अब जब कोई नहीं मिला तो बेचारे परेशान हुए, परेशान होकर के उसी नदी के किनारे जाकर के मस्तक पकड़ करके बैठ गए, और जब बैठ गए तो वहां चर्चा आती कि वहां से एक कछुआ रेंगता हुआ दिखाई दिया। उस कछुए ने संकेत किया कि भाई तुम दुखी क्यों हो, तो उन्होंने अपने दुख को अभिव्यक्त किया कि साक्षी चाहिए और कोई साक्षी हमें मिल रहा नहीं। हजारों वर्ष बीत गए, उसने कहा चिंता न करो मैं साक्षी दूंगा। क्या कहा? मैं साक्षी दूंगा। कहा आप साक्षी कैसे दोगे? कहा जब तू यज्ञ करता था तो मेरी पीठ जो है और ये सर्वत्र चर्चा आती है कि समुद्र में भी किसने आश्रय दिया, तो कहा उसी कच्छप ने। ठीक है, अवतार भी कच्छप हुआ, और मानस में जहां कल्पना तुलसीदास ने की तो वहां भी क्या कहा, परम रूप में कच्छप सोई, ये शब्द दिया। वहां तीन प्रकार के मंथनों की जहां चर्चा की उन्होंने, तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि सारे साधन तो अलग अलग बदल दिए गए लेकिन जो है एक चीज नहीं बदली, सारे साधनों में परिवर्तन हुआ, प्रवाह हुआ लेकिन एक चीज में परिवर्तन नहीं हुआ। कहा किसमें नहीं हुआ? तो कहले कछुआ बहिरा, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे जो है सीता की छवि का मंथन हो, चाहे वो भरत रूपी समुद्र का मंथन हो, और चाहे जो आरण्यक कांड के अंतर्गत जिसको जो है ब्रह्म पयोज मंदर ज्ञाना करके जहां संकेत किया वहां ब्रह्म का जो है मंथन किया हो, वहां पर भी उन्होंने संकेत किया कि परम रूप में कच्छप सोई, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तब जो है वहां पर ये जब संकेत आया, तो आगे कथा छोड़ो इतना ही सार लेना है, तो अब जो है उसने कहा जब कछुए ने, तो इसका मतलब क्या, उस कच्छप से संकेत क्या किया, जो सारे विचारों की आधारशिला है। हमारा अंतःकरण विचार करने में मंथन करने में कब समर्थ होता, यदि वो चेतना न हो, वही कछुआ है, वही आत्मा ही कछुआ है, उसके बगैर ये कोई भी क्रिया चल सकती नहीं। प्रकृति भी कोई भी क्रिया करती है तो प्रकृति में भी कार्य करने की सामर्थ्य नहीं, जड़, लेकिन कब करती है, तो कहने लगे करती उसी के आश्रय को लेकर, बगैर उसके आश्रय के अंधकार की सिद्धि भी प्रकाश के बगैर हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया, और वो कच्छप कौन है, तो कहा आत्मा ही है, वो कोई और दूसरा नहीं, वही आश्रय है। अब ऐसे उस आश्रय का जब हमें बोध होता है तो वो हमारा साक्षी बनता है। इसलिए कहा भी गया है कि सुसुप्ति के ज्ञान की स्मृति कराने वाला कौन है, सुसुप्ति में, क्योंकि वहां ये बुद्धि तो थी नहीं, मन भी नहीं था, इंद्रियां भी नहीं थी, फिर सुख से सोया ये किसने कहा, तो कहा तो बाणी ने और इंद्रियों के और संतकण के बल से कहा, लेकिन कहा ये तो प्रसुप्त पड़े थे, इनको तो ये ज्ञान हुआ ही नहीं, फिर जो है ये किसने कहा, तो क्या कहा, कहा इनका जो आश्रय, इनको जो चेतना देने वाला है, जो संकेत किया केन उपनिषद में कि मन जिसका मनन करने में असमर्थ, लेकिन मन को मनत्व प्रदान करने वाला कौन है, एन मनसा न मनते एन आहोरम मनोमतम तदेव है, उसको ही क्या है विद्धि माने जानो, वो ज्ञान की तरफ संकेत। तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं कि इस प्रकार से जब जो है हम जब उस आत्मा को जो मूल है निष्का सबका, जिसके आश्रय में रह करके ये सब प्रवर्तमान होते हैं और जिसके आश्रय के बगैर ये सब प्रवर्तमान नहीं हो पाते, तो वो जो है वो क्या है, वही है मूल, लेकिन उसी मूल को लेकर के प्रवृत्ति में हमें क्या हो गया, कहा उसी के स्वरूप को हमने नहीं जान पाए, उसके स्वरूप को हम प्राप्त नहीं, और उसके स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए तो स्वरूप उसका क्या, सतचित आनंद। तो सतचित को तो हम जान रहे हैं, सामान्य ज्ञान तो है लेकिन विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान का न होना यही क्या है, अज्ञान है। और इसी अज्ञान की मिलित अवस्था को लेकर के ये सारे संसार का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, ये सारा नियम चल रहा है। अब कहने लगे इस अज्ञान की यदि निवृत्ति हो जाए तो जो है क्या होगा, तो ये जो तीनों तापों की शांति कही गई तो आत्यंतिक जो है शांति प्राप्त। तो अंत में जो हम आत्यंतिक शांति चाहते हैं तो उपनिषद का उद्देश्य भी है, इसलिए प्रारंभ में ही संकेत करते कि हमको कहां जाना है, लक्ष्य क्या है, तो आत्यंतिक शांति की प्राप्ति करना, तीनों दुखों की सर्वथा निवृत्ति करना, ये जो है चर्चा यहां आई। अब जब ये प्रसंग आया शांति पाठ के द्वारा, तब प्रश्न यही हुआ अपने कि कर्म से कौन सा कर्म करें जिससे ये शांति मिलेगी, यह कौन सी उपासना करें जिससे यह शांति मिलेगी। तो जहां तक मायिक प्रवाह है वहां तक नियमबद्धता है, वहां तक कर्म भी फलीभूत होता है, उपासना भी फलीभूत होती है, लेकिन वो फलीभूत होते हैं वो आत्यंतिक शांति दे पाते नहीं। उनका उनकी उपादेयता है, कर्म की उपादेयता, उपासना की उपादेयता व्यावहारिक पक्ष में है, मायिक पक्ष में है, लेकिन जहां पर आत्यंतिक शांति की बात है वहां इनका कोई उपयोग नहीं। ये भाष्यकार उठाने जा रहे हैं भूमिका के अंतर्गत, क्यों, नियम ये है। वार्तिककार आचार्य श्रेष्ठ ने लिखा वार्तिक के अंतर्गत, उन्होंने चर्चा की अर्थो अर्थी दच्छो दुजो हम बुद्ध इति मतिमान कर्म सूत्रोधिकारी, संकेत किया जब तक इस प्राणी के अंतर्गत यह है कि मैं अर्थी हूं, अर्थात मैं पदार्थवान हूं, और अर्थात अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैंने पदार्थों को प्राप्त किया, मैं पदार्थों वाला हूं, ये बोध है। अर्थी दक्षो, मैं ज्ञानवान हूं, मैं निपुण हूं, बुद्धिमान हूं, ये ज्ञान प्रवीणता का ज्ञान है, और ये भी अहम बैठा हूं। और कहने लगे अर्थी दक्षो दुजो हम, मैं उत्तम कुल में दुज परिवार में जो है पैदा होने वाला उत्तम कुल का व्यक्ति ये, और कहने लगे इतना ही नहीं बुद्ध इति मतिमान, और मैं विद्वान हूं, ऐसी यदि मति है, ऐसी अंतःकरण की वृत्ति है, ऐसा यदि अपने को मानता है तब तक वो व्यक्ति कर्म का अधिकारी है, तब तक उसे कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कर्म की जो है उपादेयता यहीं तक बतलाई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य, कब तक, ये स्थिति जब तक है, लेकिन जब तक यह स्थिति नहीं रहेगी तब तक उसके लिए एक ही श्लोक में कह दिया, दो श्लोक वहां पर किए, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, ऐसा जो है उसके लिए कोई कर्म की बाध्यता नहीं। तो ये संकेत, तो वही यहां पर उन्होंने कहा कि अर्थी दक्षो दुजो हम बुद्ध इति मतिमान कर्म सूत्रोधिकारी, तब तक वो है कर्म का उसे परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कहा कि कर्म का परित्याग मत करो अर्जुन, और कर्म का परित्याग ये तुम्हारे लिए फलदायी नहीं हो, लेकिन कर्म में से किसका त्याग करना है, तो आगे संकेत कर दिया कामना, ये कामना ही कर्म करवाती है, और कामना यदि नहीं रहेगी तो कर्म होते हुए भी वो कर्म कोई सुख दुख नहीं किंतु शांति प्रदान कर देगा। तो इसलिए यहां पर संकेत किया कि ऐसा जब तक है तब तक वो कर्म का अधिकारी। आगे संकेत किया आत्मा रामो परमो परिब्राण उपरति ब्रह्म विद्याधिकारी, ये संकेत किया, जो आत्मा राम हो चुका है तो ऐसा जो, और संसार से जिसकी उपरति हो चुकी है, परिब्राट जो हो चुका है, परिब्राट का मतलब है परितः, भ्राज्यते इति परिब्राट, चारों तरफ जिसकी गति है वो परिब्राट कहलाता, तो ऐसा जो है और सर्वत्र से वो उपरम हो चुका है, कहीं पर भी अर्थात उपरम तभी होगा तो इच्छा रहेगी नहीं जब उपरमता हो जाएगी, जब तक हमारी उसमें राग की स्थिति होती है तब तक इच्छा होती, लेकिन जहां से उपराम हो जाएंगे तो उसके प्रति कोई इच्छा ही नहीं होगी। और ऐसा जो है कहने लगे वही है ब्रह्म विद्या का अधिकार। और ये सब कहकर के क्या बता, इत्थम भेदे विवक्षन मुभयोर वह सह, कहने लगे इस प्रकार से इन भेदों को बतलाते हुए आगे संकेत किया, नारम नीरम सुशीतम वैश्वानरंच, माने अग्नि को और शीतल जल को, किस लिए, त्रिशोच्छेद कामः पिवेश, कोई प्यास बुझाने के लिए क्या करे, अग्नि और ठंडे जल को मिलाकर के पिए तो उसकी प्यास बुझाएगी नहीं बुझेगी। ऐसे ही संकेत किया कि कर्म और ये ज्ञान दोनों मिलकर के मिलाकर के तुम चाहो कि इस प्रकार से कर्म भी बना रहे ज्ञान भी बना रहे, ये दोनों रह नहीं सकते। जहां वो ज्ञान होगा तो वही ज्ञान जो है अज्ञान करता है, इस संकेत में। तो वहां पर जो है जैसे अग्नि और जो है ठंडे जल को पी करके जो है शांति नहीं मिल सकती, पिपासा हमारी शांत नहीं हो सकती, ऐसे ही कर्म आदि को लेकर के उपासना आदि को आचार्य शंकर संकेत करते हैं। तब इसका उपाय क्या है, तो वो संकेत कर दिया गया कि जब जो है हम अधिष्ठान रूप आत्मा का विशेषतया बोध प्राप्त कर लेते हैं तभी ये तापों की शांति होती, ऐसा यहां उद्देश्य है। इसको लेकर के ही यहां जो अंत में सब संकेत किया, ओम शांति शांति, पहले तो देवताओं के लिए वो बल मांगा कि ऐसे ज्ञान तक हम कब पहुंचेंगे, तो वहां तक नियम का प्रवाह चला, तो नियम के अंतर्गत देवताओं से प्रार्थना करना, उनकी अनुकंपा को स्वीकार करना अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और वो जब हो जाएगा तब जाकर के जो है मुख्य जो लक्ष्य था उसके लिए संकेत किया कि हमें जो है शांति प्रदान करें, समय हो गया अधिकतर सब आगे कर। ओ
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन श्वेताश्वतर उपनिषद प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री उमेशानंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। देखो यहां क्यों ऐसा बोल रहा है, बारहवां अध्याय में गीता के बारहवां अध्याय में बतलाया भगवान ने, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निश्य मत्परः अनन्येव अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामिन शिरस्पार्थ मय्यावशित चेतसाम। वहां भगवान ने क्या बतलाया, ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्निश्य, सब कर्म मेरे को त्याग मेरे ऊपर छोड़ देता है, सन्यास्त माने त्याग देता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्निश्य मत्परा मत्परायण हो जाता है, अनन्य व जोगे न माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, उनका मैं उद्धार करता हूं मृत्यु संसार सागर से। वहां प्रश्न ही हुआ मृत्यु संसार से आप कैसे उद्धार करते हो, तो उद्धार तो ज्ञान से ही होता है, बिना ज्ञान से तो होगा नहीं। तो बोले हमने पहले तुमको बतलाया, ये श्लोक आया हुआ मैंने पहले ही बतला दिया कि ज्ञान के द्वारा ही मैं अज्ञान का नाश करता हूं, अज्ञान के नाश होने से ही जीव की मुक्ति होती है, यही बात है रहे। देखो यत्र जस्मिन पुरुषे मच्छते स्वदेह मरणेम कृत्वा इत्यादि न पूर्वोक्त ध्यान निर्मथन न वायु यत्र अधिरुध्यते शब्दम अव्यक्तम करोति रेशकादि कारणा। देखो यत्र जस्मिन पुरुषे, यत्र वायु अभिरुध्यते है ना, इसका अर्थ करते हैं यत्र माने जस्मिन पुरुषे, हाँ जिस पुरुष में स्वदेह मरणेम कृत्वा प्रणवांश उत्तरारणिम, वो श्लोक ले लेना, स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवांश उत्तरारणिम ध्यान निन्मथनाभ्यासा देवम पश्य निगुड़वत, ये श्लोक कहाँ आया? पहले अध्याय में। यत्रा तस्मिन् पुरुषे, जिस पुरुष में स्वदेह मरणिम कृत्वा मिच्छते, आपने देह को अरणी बना करके, स्वदेहम अरण्यम कृत्वा,

हाँ तो पहले क्या चाहिए, ये ध्यान से योग दर्शन आया है ना, योग दर्शन में हाँ चित्तवृत्ति निरोध तो है, पर पहले का धारणा ध्यान फिर समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगा, योग आठ अंग है योग का, याद रखना। एक कमी हो जाए तो अंगहीन माना जाता है, योग नहीं होगा। जैसे समझो हमारा शरीर है पूर्ण अंग है, इसमें कान नहीं है तो बहरा कहेगा, नाक नहीं है तो नकड़ा कहेगा, आंख नहीं है तो अंधा कहेगा, एक आंख नहीं है तो काना कहेगा, हाथ नहीं तो लूला लंगड़ा कहेगा, पैर नहीं तो लंगड़ा कहेगा, क्यों अंगा भंगा अंगहीन कहेंगे। ऐसे योग में आठ अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि, समाधि है नहीं बात। तो यम क्या चीज है, इंद्रिय निग्रह। यम कहते अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाहा, ये इसका कितना हुआ, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच हुआ यम। नियम क्या चीज है, शोष संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आने नियमा, यम नियम। इसके बाद आसन आता है, तुम आसन बना लगा करके बैठ गया, जम नियम है नहीं तो योग होगा क्या। हाँ कोई समा कोई बगीचा में जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं, नाक दबाना शुरू कर देते, मालूम पड़ता मैं बड़ा भारी योगी हूँ, ऐसा योग अभ्यास करता रहता है। इसका नाम योग नहीं होता है। पहले अहिंसा वृत्ति तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए, अहिंसा सत्य आना चाहिए, सच्चाई आना चाहिए, अहिंसा सत्य अस्त्य आना चाहिए, धोखा देने का चोरी करने का बेईमानी करने का नहीं आना चाहिए। फिर परिग्रह से रहित होना चाहिए, ये सब तो हाई नहीं है एक भी। फिर संतोष संतोष शोष शोष पवित्रता तो है नहीं, शोष संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नहीं हमारे जीवन में तो है ही नहीं। चला गया कहा समाधि लगाने के लिए, प्राणायाम करने के लिए लग जाएगा। हिंगी गार्डन में योग करता है बहुत से, हमने पहले पहले घूमते थे ना, हेंगे गार्डन में या नाना नानी में भी कभी कभी जाता हूँ ना, देखता हूँ ऐसे बैठते हैं, ऐसे आंख ऐसे ऐसा कर देखता, हमको कोई देखता है कि नहीं दिखता है, हम तो योग कर रहे हैं हमको दिखता है कि नहीं दिखता। वो कल बताए ना कैसे ध्यान करना चाहिए, आंख बंद करके आंख खोल करके, ये आधा आंख बंद करके आधा आंख खोल करके कैसे करते हो, मंत्र मैंने कहा। तो कहने का मतलब शोष संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम कितना नंबर का आता है, प्राणायाम कुंभक। प्राणायाम तीन प्रकार का, बाह्य प्राणायाम अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक अभ्यंतर कुंभक, रेशक पूरक कुंभक, रेशक करो पूरक करो। अभी यहां से प्राण अभिमिच्छते यात्रा, इसमें पहले आया था प्राण अभिमिच्छते यात्रा, वायु मानी प्राण, जहां वायु मथन होता है ऊपर नीचे जाना बंद हो जाता है, बिल्कुल सीमा होती है, तो कहां होता है ऐसा, उसमें ध्यान करो गाया था। तो इसमें बाद प्राणायाम पूरा क्रेशा कुंभ के बाद धारणा प्रचार आएगा, वो प्राणायाम में आएगा, प्राणायाम प्रचार फिर धारणा। तो धारणा कहाँ, देशबंध चित्तस्य धारणम, किसी एक देश में चित्त को लगा देने का, समझे कि नहीं। अब कहाँ लगाओगे, नासिकाग्र में लगाओगे कि ललाट में लगाओगे कि सहसा में लगाओगे कि सामने दीपक रखा उसमें लगाओगे और कि आपने जिसको छोड़ करके आया उसमें लगाओगे, वो तो बढ़िया है। आज्ञा सक

समय शासनाधर में नहीं, अनाहत में नहीं, भ्रिकुटी में नहीं, मूलाधार। देखो हमारे शरीर में षट चक्र होता है, मूलाधारम स्वाधिष्ठानम मणिपुरम अनाहतम विशुद्धाक्यम अज्ञान षट चक्राणि भावयेत। ये योगियों के लिए है, यो सबके लिए नहीं। हाँ, जो योगी होगा ना उनके लिए मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधारम गुदा उत्तरी वर्तते, गुह्य स्थान में ऊपर स्थान में, गुह्य के ऊपर स्थान में मूलाधार चक्र रहता है, लिंगा मूल में मणिपुर रहता है, मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र रहता है, नाभि में मणिपुर चक्र रहता है, हानिबा हृदय में अनाहत चक्र रहता है, कंठ से विशुद्धाक्य चक्र रहता है, भ्रिकुटी में अनाहत यह रहता है, भ्रिकु आज्ञा चक्र रहता है और सहस्रार्थ चक्र। अब सहस्रार्थ चक्र भेद करके योगी लोग जाता है, हाँ ब्रह्मलोक में जाता है, योगी लोग जाता है, सब नहीं जाएगा। और आता है तो जाता था योगी लोग यहां से, पर जीव जब प्रवेश करता है माता के गर्भवास में, ये सहस्राक्ष से ये माता से यहां से इसको कहते रंध्र, ब्रह्म रंध्र, रंध्र माने छेद, इधर एक छेद होता है, वो छेद के अंदर से प्रवेश करता है जीवात्मा। तो जीवात्मा जब जन्म लेता है तो देख लेना टक टक टक टक टक पीलता रहता है, तो इसमें तेल मालिश करके, तेल लगा लगा करके माँ इसको कड़ा कर देता है, क्यों इसे भाग न जाए, नहीं तो जीव भाग जाता है। हाँ, ये कड़ा करते, और जाते वक्त जीव कहां से कौन से दरवाजा में जाएगा। हाँ, नव दरवाजा से किसी एक दरवाजा में जाएगा। अब जिसका जथा कर्म जथा श्रुतम जथा साधनम, जिसका जैसा कर्म होगा, जैसा श्रवण आदि ज्ञान का उपभोग मनन निर्ध्यासन होगा, जैसा उसका उपासना आदि होगा, उसी के अनुसार उसका रास्ता तय होता है। कोई मुख से जाता है, कोई नासिका से जाता है, कोई आंख से जाता है, कोई कान से जाता है, कोई मलमूत्र से जगह में जाता है, कोई ब्रह्मरंध्र छोड़कर के योगियों के जैसे जाएगा। जाने के रास्ता तो अनेक है, पर आने का रास्ता एक ही है। तो मूलाधारम स्वाधिष्ठानम मणिपुरम अनाहतम हाँ विशुद्धाख्यम हाँ आज्ञा चक्र, फिर सहस्राक्ष। तो तुम ध्यान किसमें करोगे, योगी लोग नाभि में करेगा, हृदय में करेगा, आज्ञा चक्र में करेगा, भ्रू चक्र में करेगा, जिसको जितना सुविधा होती है ना ऐसा ध्यान करने का होता है। अधारणा पंचनाडिकम, धारणा करके जिस स्थान में तुमको लगता है ना चित्त वृत्ति लग जाती है उसमें लगाओ, तो कितना देर तक लगाना चाहिए कम से कम। हा? तो कहा धारणा पंचनाडिकम, पांचनाडी माने दो घंटा, दो घंटा तक धारणा करो। ध्यानम षष्ठी नाडिकम, साठ नाडिका कितना हुआ, हाँ षष्ठी साठ साठ सिक्सटी धारणा, ध्यान षष्ठी नाडिकम, समाधि दिन दिनद्वार पर्यंतम, समाधि बारह दिन के लिए, ये योग दर्शन बताते हैं। तो कितना देर तक धारणा करते हो, ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, तो ये अभ्यास करने के लिए, यो अभ्यास करता है योगियों के लिए है। तो आपका ध्यान करना बैठोगे तो कहां भी ध्यान करोगे, तो नाभि कमल में करोगे, हृदय कमल में करोगे, एक अंतर कहां करोगे, हाँ हृदय कमल में करो। हाँ, भगवान हृदय में रहते हैं ना। अहम आत्मा गुडा के सर्वभूताश्रय, अहम आदेश मध्यम से भूताना मंत्री वश, ईश्वर हो सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ा निमाया, कहे के नहीं। तो ये मतलब कहने का धारणा ध्यान, धारणा के बाद ध्यान, तो धारणा के परिपक्व अवस्था का नाम ध्यान है। यह तक ध्यान अलग चीज नहीं है, आपने जहां चित्तवृत्ति को लगाया
वो उसमें आकर परिपक्व 5 घंटा हो गया, जिसके बाद धारणा ध्यान आएगा और ध्यान के परिपक्व अवस्था को नाम समाधि। तो समाधि में क्या होता है, समाधय चित्त वृत्ति निरोधः, जिसमें अवस्थायाम जिस अवस्था में चित्त के तमाम वृत्तियां समाहित हो जाता है, समाहितायाम सति चित्त वृत्तो, हाँ तो समाहितायाम सति चित्त वृत्तो, तमाम चित्त वृत्तियों जहां जाकर समाहित हो जाता है, एक साथ याद रखना, एक साथ समाहित हो जाता है, उसका नाम समाधि। समाधि माने कब्रिस्तान, बताया था कल क्या लगे नहीं, समाधि माने कब्रिस्तान। महात्मा का समाधि देखा कि नहीं देखा, महात्मा लोगों का समाधि, महात्मा मरने की बात भी पूजा होते हैं, महात्मा की हड्डियों की पूजा होती है, जिंदा की पूजा होती है, मरने के बाद भी पूजा होते हैं, समाधि की पूजा होती है महात्माओं की। पंजाब में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, ज्ञानेश्वर का समाधि पूजा होती है ना, जीवित, हाँ वो जीवित समाधि थे। हाँ अच्छा चलिए, यत्र जस्मिन् पुरुषे मिथ्यते स्वदेह मरणं कृत्वा इत्यादिना पूर्वोक्त ध्यान निर्मथनेन वायुर् यत्र अभिरुध्यते शब्दं अव्यक्तं रेषकादिकरणात्, वागे ना, सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोम सोम माने चंद्रमा, सोम माने सोमरस, सोम माने शांति, सोम माने कमल, आनंद, अतिरिच्यते अरेक धर्म सेवया तत्र तस्मिन् जगदानतभ प्राणायाम समाधि विशुद्ध अंतकरणेन संजायते। देखा, सोम यत्र अतिरुच्यते, इसी का अर्थ कर रहा है, अनेक जन्म सेवया जन्मांतर सहस्रशु तपो ज्ञान समाधि भी, ये आगे आएगा, अनेक जन्म संसित ततो जाते परांगते, आया कि नहीं गीता में, अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाते परांगति, परम गति को प्राप्ति कब होगा, अनेक जन्म जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी, नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रसायते, जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी, क्यों तप ज्ञान समाधि, यज्ञदाना तप कर्म पावनाने मनीषी ने बतलाएगी नहीं, गीता के 18वां अध्याय में भगवान ने बतला दिया, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणां, जब तक यज्ञ दान तप आदि निष्कम भाव से याद रखना, करोगे नहीं तो अंतकरण शुद्ध होगा नहीं, यज्ञदान तप कर्म पावनानि मनीषिणां, मनुष्यों को पवित्र करता है, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम, ये त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, अग्नि जत्र मिथ्यते अभिमिथ्यते, उसी का ये जत्र अग्नि मंथन होता है, यह मंथन के बिना अग्नि प्रकट नहीं होगा, अभी अग्नि प्रकट नहीं होगा, आहुति डालोगे नहीं, आहुति डालोगे नहीं, तुमको स्वर्ग कौन ले जाएगा, स्वर्ग ले जाने के लिए आहुति डालना पड़ेगा कि नहीं, अग्नि अग्निकर्म, अग्निकर्म यज्ञ कर्म को अग्निकर्म कहते हैं, तो कहते हैं अनेक जन्म सेवया, अनेक जन्मों से तुमने तपो ज्ञान समाधि यज्ञदाना तप कर्म आदि करते आए, यज्ञदाना तप कर्म आदि करते करते तत्र तस्मिन् यज्ञदाना तप
प्राणायाम प्रत्याहार समाधि लेना, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि।